0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: सुप्रभात, घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरीशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरीशस द्वारा जारी ताजा आंकड़ा।

उसे पता चलता है। वैसे साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। और यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने इस गुरुवार फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। और यूनियन के सचिव आलन किस्नन ने यह भी अफसोस जताया कि सामूहिक समझौते पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, जबकि इस पर बातचीत 2 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। और कैबिनेट ने नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा, ताकि गणेश चतुर्थी पर्व 2026 अब बुधवार 16 सितंबर 2026 की जगह मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है। और फेडरेशन ने बताया कि पहले 15 सितंबर 2026 की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को बेहतरीन साझेदार बताया और कहा कि भारत जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमेरिका बेचने को तैयार है। अपनी पहली भारत यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। और अंत में मौसम का हाल।

0: मस्कारीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर चल रही है। साथ ही दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात्रि के समय दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंटर पातू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में। वैसे सूर्योदय आज 6:34 पर और सूर्यास्त शाम के 5:39 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti.
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ दीजिए, नमस्कार।
3: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.

गीत और संगीत में दिलचस्पी रखने वाले सभी दोस्तों को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। ये आप ही लोगों का मनपसंद लोकप्रिय राष्ट्रीय चैनल AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। शुभ प्रभात, भोर के इस बेला में सभी का स्वागत है। आज है शनिवार 23 मई साल 2026। परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी के लिए अच्छी तरह से बीते। चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को। गहलोत

0: वैदिक नाथ
1: वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रोताओं, पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगोल का सादर सप्रेम नमस्ते और गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस वैदिक नाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विषय माँ का स्थान और महता। श्रोताओं, शास्त्रों में मिलता है माँ की ममता और महिमा का वर्णन। माँ का स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि हमारी संस्कृति में माँ की तुलना ईश्वर से की गई है। यहाँ तक वेद में भी माँ की ममता का गुणगान किया गया है। तैतिरीय उपनिषद में लिखा गया है मातृदेवो भव। माँ देवताओं से भी बढ़कर होती है। माँ जननी है, जन्म देने वाली, जिसका स्थान संसार में सबसे ऊपर है। प्रेम करुणा भाव और वात्सल्य, प्रेम स्नेह का दूसरा रूप यदि कोई है तो वह माँ ही है। उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि माँ देवता के समान है। वेदों के अनुसार माँ का स्थान पिता और गुरु से भी ऊपर है क्योंकि जन्म देने के साथ साथ पहले शिक्षक के रूप में संस्कार देती है। अर्थात दैनिक जीवन में माँ को पिता से हजार गुना अधिक सम्माननीय माना गया है। माँ की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि वह खुद प्रकृति का पर्याय है जिनसे सृष्टि की रचना हुई। माँ ही है जो प्रेम त्याग और संस्कारों से बच्चों को शिक्षित करती है और सुंदर समाज के निर्माण में सहयोग करती है। माता गुरु तरा भूमि। वेद व्यास जी ने वेदों के आधार पर माँ का चित्रण किया है, माँ की विशेषताओं को उजागर कर रहा है। यदि पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो माँ का स्थान ऊंच मिलेगा। महाभारत में भी माँ की महिमा का उल्लेख किया गया है। संसार में माता का स्थान सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। महाभारत में माँ की महिमा बहुत ही गहरा और भावनात्मक चित्रण किया गया है, जहाँ माँ न केवल जन्म देने वाली अपितु संस्कार, मार्गदर्शन और कठिन समय में ढाल बनने वाली शक्ति के रूप में दिखाई गई है, समाज और धर्म की रक्षा के रूप में दिखाया गया है। माँ का प्यार, त्याग और तपस्या ही है जो महाभारत के किरदारों को उनके कठिन समय में शक्ति देती है। महाभारत के अनुसार ही युधिष्ठिर जी यक्ष को बताते हैं कि माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है। यह भी कहता है कि माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। महाभारत के इन प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि माँ का स्थान सर्वोच्च है। अपनी माता की सेवा तथा उसे सुख देने से ही कोई भी संतान स्वर्ग के समान सुख प्राप्त कर सकते हैं। माता को दुख देकर कोई संतान सदा के लिए सुखी नहीं हो सकती। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। यह शाश्वत सत्य सिद्धांत है, इसको सबको स्मरण रखना चाहिए। माता के गौरव पर आर्य समाज के विद्वान ब्रह्मचारी नंद किशोर जी ने मातृ गौरव के नाम से एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने माता के गौरव विषयक शास्त्रों के अधिकांश

प्रमाणों का संकलित पर प्रस्तुत किया है और स्पष्ट किया कि मनुस्मृति के अनुसार माता का गौरव एक आचार्य से 1,00,000 गुना और पिता का गौरव 100 आचार्य के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण का वह प्रसंग याद आता है कि जब दशरथ नंदन लक्ष्मण उन्नत व समृद्ध सोने की लंका को देखकर आकर्षित हो गए थे, उस समय उनके मन में यह विचार आया कि अयोध्या की तुलना में लंका में निवास करना अच्छा हो सकता। उस अवसर पर श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी है परंतु यह मुझे प्रिय नहीं है, मेरे लिए तो जन्मदात्री माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वह बात अक्षरक्षह पूरी तरह सत्य भी है, अतः हमें भी माता और मातृभूमि के महत्व व गौरव को कम नहीं आंकना चाहिए। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वैदिक साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत श्लोक है जो मनुष्य के समग्र विकास में माता पिता और आचार्य की भूमिका को रेखांकित करता है। जिस संतान को माता पिता और आचार्य ये तीनों उत्तम शिक्षा देने वाले मार्गदर्शक हों वही वास्तव में ज्ञानवान होता है। यह श्लोक बताता है कि एक व्यक्ति का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उसे जीवन के तीन प्रमुख चरणों में उचित पथ प्रदर्शक मिले। माँ से बालक संस्कार कोमलता आत्मीयता और प्रारंभिक भाषा सीखता है, पिता से अनुशासन कर्मठता व्यवहार कुशलता और बाहरी दुनिया का ज्ञान मिलता है, आचार्य से विद्या ज्ञान विज्ञान नीति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जिससे चरित्र का निर्माण होता है। इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि माता पिता और आचार्य के संयुक्त प्रयासों से ही बालक सभ्य ज्ञानवान और गुणवान बनता है। केवल धन या पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं अपितु संस्कार युक्त शिक्षा जो इन तीनों से मिलती है वही सच्चा ज्ञान है। यह श्लोक माता पिता और गुरुओं के कर्तव्य को भी याद दिलाता है कि वे बालकों को उत्तम शिक्षा देकर समाज का एक सभ्य नागरिक बनाएं। उपनः सुनव गिरः श्रीन्वत्व मृतस्य ये सुमृदिका भवन्तु नः। अर्थात जो हमारी संतान है वे अमृत स्वरूप परमेश्वर की वेद वाणियों को गुरु चरण में बैठकर या ज्ञानी वेदज्ञ उपदेशक के समीप बैठकर श्रवण करें जिससे कि वे हमारे लिए सुखकर हों। इस मंत्र से एक उपदेश हमें यह भी मिलता है कि वेद स्वाध्याय को अपना परम धर्म मानकर नित्य प्रति उसका स्वाध्याय श्रवण मनन करें। इस प्रकार आचरण करने वाली संतति निःसंदेह हमारे लिए यशकर होगी। पारिवारिक जीवन में वेद परस्पर व्यवहारिक जीवन पर प्रकाश डालता है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः। वेद ने यहाँ अनुव्रतः शब्द दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि उसके पिता के जीवन में जो व्रत हों श्रेष्ठ कर्म या उनके जो आदेश हों उन्हीं के अनुकूल चलना मानना ही पुत्र का धर्म है। इसी प्रकार पुत्र एवं पुत्री अपनी माता के मन से अपना मन एक करके उनकी मनोभावनाओं का यथेष्ट सम्मान करते हुए व्यवहार करें। जहाँ माता पिता अपनी आने वाली संतान से यह आशा रखें वही उनका स्वयं का भी कर्तव्य है कि उनके सम्मुख जीवन में पग पग पर अपने व्यवहार द्वारा ऐसा आदर्श स्थापित करें जिससे देखकर उन्हें बालकों को अपने माता पिता पर गर्व

अनुभव हो और यह दिव्य व्यवहार आने वाली संतति के लिए भी जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनाता रहेगा। पुत्रो मातर विचरण नुपावसी प्रश्नी रोदसी उभे, अर्थात संतानों को अभिमान और मत्सरता ईर्ष्या रहित प्रीतिपूर्वक माता पिता की मन वाणी और कर्म से यथावत सेवा करें और वृद्ध जन

और सुख आता है। पावकः वर्चः शुक्रवर्चा अनून वर्चा उदीयर्षि भानुना। यजुर्वेद अपने माता पिता की विशेष रूप से सेवा करने का आदेश देता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाकर ईश्वर भक्त नहीं बन पाता। श्रोताओं, संसार के सभी प्रकार के धन व वैभव माँ की अच्छी सेवा के सम्मुख तुच्छ है। हमें इस जीवन में जो सुख मिले हैं उसमें हमारे पूर्व जन्म व इस जन्म के कर्म तो कारण रूप में है ही, इसके साथ साथ माता का योगदान प्रमुख है। उन सभी सुखों के लिए हम अपने माता पिता के ऋणी हैं। सारांश, मातृत्व मानवीय गुणों में सर्वोपरि है। यही विराम देते हैं ध्यान के लिए। धन्यवाद। ओम शांतिश शांतिश शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता।
2: सुबह के 6:19 और 50 सेकंड सहोरे आप हमें सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस की लहरों से। और अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। Morcellement Thelme, Morcellement Devoyenne, Morcellement Mounayenne, Morcellement Mourabi, Morcellement Hosseini, Cambombay, Morcellement Piat, or Con le Juge, Derby Street, or Résidence Saint-Luc, Bourg, La Brasserie, La Colombe, Jasmine, Atelier, or Aspas Medjugalien. Hein, wahan ke logon ko sujit kiya jata hai ki kal raviwar 24 mai ko subah ke 8:30 baje se शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मौसलमों और वाकवा मौसलमों वीओएस कोमापू ओरिएटा के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 24 मई को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और एक विज्ञप्ति है सीबी की ओर से। जी हाँ, मॉड ऑस्ट्रेलिया और पॉम्प फ्रासलैंड, मॉड ऑस्ट्रेलिया और पॉम्प फ्रासलैंड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 23 मई को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
3: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6
4: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह के 6:20 हो रही है और आप सुन रहे हैं AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। कहते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं, और सुख में बहुत से लोग प्रभु का नाम लेना भूल ही जाते हैं। अगर हर क्षण हर पल हम प्रभु का नाम लें और प्रभु का गुणगान करें तो शायद हमारे जीवन में दुख ही ना आए, है कि नहीं। तो जब भी आप संकट में पड़े या जब भी आपको समय मिले तो प्रभु का नाम जपन ज़रूर कीजिएगा। प्रभु का गुणगान करने से मन शांत होता है और पवित्र विचार आते हैं और जीवन में हम अच्छा कर्म करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप कीजिएगा हर क्षण हर पल और आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।

इस कृष्ण भजन के बाद हम आपको छोड़ जाएंगे एक भावगीत के साथ शर्मा बंधु की आवाज में, और वही भावगीत लेकर जाएगा सुबह के ठीक 6:30 बजे, जहां पर आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल। फिर उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 7 बजे मस्त मॉर्निंग शो में, सुबह का नजराना कार्यक्रम में। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:30 बजे है। समाचार। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है। इसी श्रम बाजार में सुधार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन और सुरक्षा क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। यूनियन ने बसों की कमी और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों का मुद्दा उठाया। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बेहतरीन साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत को उसकी जरूरत के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अरब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है। साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। ये गिरावट कई आर्थिक क्षेत्रों में फिर से बढ़ती गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में सुधार का संकेत देती है। कुल मिलाकर ये एक उत्साहजनक स्थिति मानी जा रही है, जो देश में रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। लेकिन जमीनी स्तर पर खासकर युवा डिग्री धारकों और कुछ कामगारों के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं दिखती। कई लोगों को नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है और कुछ को ऐसी नौकरियां मिल रही है जो उनकी पढ़ाई और योग्यता के अनुरूप नहीं है। ज्यादा जानकारी अशिता रघु के साथ।
2: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार मॉरिशस में लगभग 5,56,400 लोग रोजगार में हैं, जबकि बेरोजगारों की संख्या

0: लगभग 32,800 आंकी गई है। वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% पर आ गई है, जो पहले 5.9% थी। अर्थशास्त्री मनीषा दुकुनी के अनुसार वास्तव में इसमें गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
1: Premièrement, pour les 16 à 24 ans, le taux de chômage est beaucoup plus élevé. C'est presque
0: 16 से 24 वर्ष के बीच के उम्र वालों के लिए बेरोजगारी की दर कहीं अधिक है। पांच में से एक युवक के पास नौकरी नहीं। दूसरा, बेरोजगारी का प्रभाव महिलाओं पर भी बहुत पड़ता है, इसीलिए वैश्विक गिरावट निरंतर असमानता को दर्शाता है। हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां युवाओं और महिलाओं का एकीकरण अभी भी कठिन है, विशेषकर ऐसी कई प्रतिभाशाली व क्वालिफाइड महिलाएं हैं जो बच्चा होने के बाद वापस नौकरी पर जा सकती थी, पर इनके लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी की तलाश, अस्थाई अनुबंध और कभी कभी योग्यता से मेल न खाने वाले रोजगार, इन सब के बीच वास्तविक स्थिति अब भी मिश्रित बनी हुई है। हालांकि रोजगार बाजार के संकेत तक सुधार दर्शा रहे हैं, लेकिन स्थिर और योग्यता के अनुरूप नौकरी तक पहुंच अब भी आबादी के एक हिस्से के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
2: मॉरिशस और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक नया समझौता हुआ है। इसी के तहत मॉरिशस पुलिस और अमरीका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। और अमरीकी डेलीगेशन की मौजूदगी में एसएमएफ द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की तकनीकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह मॉरिशस और अमरीका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस और अमरीका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच तय इस समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे सेक्टरों में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की गई है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: यह अभ्यास डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अफसरों की प्रतिभा को दर्शाता है। ये ड्रिल एक इमारत के ध्वस्त होने से संबंधित है। यह अमेरिका और मॉरिशस के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते में शामिल एक क्षेत्र है। ये न्यू मेक्सिको के राष्ट्रीय रक्षा दल और मॉरिशस की पुलिस फोर्स के बीच लंबे समय की साझेदारी से संबंधित हैं। मेजर जनरल मिगेल आगिला ने कहा, आपात स्थिति से निपटने और प्रशिक्षित होने के लिए आदान प्रदान का फायदा उठा पाएंगे, इस साझेदारी से एक दूसरे से सीख पाएंगे। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजबाली ने कहा, सुरक्षा को लेकर और साथ में क्लाइमेट चेंज की सभी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उनके पास उचित साधन और उपकरण हैं, हमारी मदद करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस और एसएमएफ के जवान भी उनकी तरह ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित हों।
4: एसएमएफ और पुलिस भी फॉर्मे दान मेम कैपेसिटी की बनना फेयर वन ऑपरेशन।
3: राष्ट्रों के साथ साझेदारी प्रोग्राम एक अमेरिकी सहयोग पहल है जो कि 30 सालों से स्थित है। इस संधि के बदौलत मॉरिशस इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वाला 24वां अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास के शौशिद आफेर ने कहा, यह प्रोग्राम कई दशकों तक चलेगा। ये दीर्घावधि की संधि है जिसका मकसद समझबूझ, साझेदारी और दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करना है। गृह मामलों की सचिव फंगवन पुरन ने कहा, ऑपरेशन की एक योजना बनाएंगे जहां सुरक्षा और आदान प्रदान को केंद्र में रखेंगे। इस सहयोग की बदौलत मॉरिशस आपदा की स्थिति में हस्तक्षेप और तैयारी की अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है ताकि जनता की बेहतर सुरक्षा की जा सके।
2: जी हाँ, मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी में एसएमएफ द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की तकनीकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। याचना मिश्रा को सुनते हैं।

0: स्थिति तनावपूर्ण है। एसएमएफ के ये जवान एक उग्र भीड़ को शांत करने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में बुलाए गए। चेतावनियों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार रहे। उनका सामना करने के लिए इस विशेष इकाई के सदस्य एकजुट हुए। वे प्रदर्शनकारियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए समन्वित कार्रवाई अपनाते हैं। आर्मर्ड वाहनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है। SMF पुलिस का अंतिम विकल्प है। हम अंत में आते हैं आर्मर्ड वाहनों के साथ। कुछ अभियानों में विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होती है। कई बार बचाव दल को कठिन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ती है। रस्सियों के सहारे नीचे उतरने वाले इन अभियानों को अंजाम देने के लिए लगभग रोजाना प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ अभियानों का सवाल है, मोशन पुलिस का हस्तक्षेप समूह नियमित रूप से आरसू की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।
1: यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने इस गुरुवार फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर रोजगार और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। यूनियन के सचिव आलन किस्तन ने यह भी अफसोस जताया कि सामूहिक समझौते पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, जबकि इस पर बातचीत 2 सालों से अधिक समय से चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यूनियन का मानना है कि इसी कारण ड्राइवरों और कंडक्टरों की कार्य परिस्थितियों में सुधार रुक गया है। वे असुरक्षा और ठोस कदमों की कमी के कारण निराशा और उत्साह की कमी का सामना कर रही है। उनको सुनते हैं।
2: Un manque d'autobus, ils tous tout mal compagnés en général. Deuxième cause TBS, UBS.
3: बसों की कमी पाई जा रही है, जो आमतौर पर सभी बस कंपनियों से संबंधित है। इसमें TBS, UBS, रोजिल ट्रांसपोर्ट, मॉर्शन तथा NTC भी शामिल है। यहां बस कंडक्टर और चालक को भरपाई करनी पड़ रही है, जहां लगभग हर सप्ताह ये हिंसा के शिकार हो रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं, और ऐसे में कौन इस क्षेत्र में अपने बच्चों को नौकरी के लिए भेजना चाहेगा? कोई नहीं। कारण है सुरक्षा की कमी। जहां कौन अपने बच्चे को इस परिवहन उद्योग में काम के लिए भेजेगा, जब 7 से 8 साल बाद उसे लोकल लीव तथा सिक लीव प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हमने इस उद्योग को अपनाया नहीं है। इस तरह का बर्ताव भी अस्वीकार्य है। हमने मांग की थी कि हर 2 महीने पर स्थिति का जायजा लेने के लिए हम परिवहन मंत्री से भेंट करें, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या गलत होगा कि पुलिस हमसे भी आके पूछे कि हॉटस्पॉट, खतरों इत्यादि के जगह कौन कौन से हैं? हम सबों के बीच बातचीत जरूरी है, क्योंकि हम इस उद्योग से अन्यों की तुलना में भली भांति परिचित हैं। इससे विश्वास बढ़ेगा और इससे संबंधित आने वाले 2 नए कानून भी सराहनीय हैं।
1: और इस बैठक में मौजूद जनरल वर्कर्स फेडरेशन के अश्विन गुदाई ने भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में हो रहे कथित दुरुपयोग की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कों पर बसों की कमी अब भी रोजाना यात्रियों को प्रभावित कर रही है। उनको सुनते हैं।
3: परिवहन स्थिति को देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोग बस के इंतजार में रहते हैं और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। ये जरूर

0: जरूरी है किचन बस सर्विस कंपनियों को समय रहते उचित सावधानी बरतनी होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है और ये अस्वीकारनीय है कि छात्रों, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, पर फिर भी उन्हें बस स्टॉप पर छोड़े जाते हैं। कई बार बुजुर्ग लोगों, विकलांग व कमजोर तथा छात्रों को बस में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनसे बस मालिक को पैसे नहीं प्राप्त होंगे, जबकि उन्हें पहले ही इसके लिए पैसे चुकाए जा चुके हैं।
1: और यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स का कहना है कि मुफ्त परिवहन को लेकर किए गए कई वादे, खासकर चुनाव प्रचार के दौरान, अब तक ठोस कदमों में नहीं बदले गए हैं। यूनियन ने भी अफसोस जताया कि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की लगातार समस्याओं पर अधिकारियों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यूनियन ने मॉरिशस के कामगारों को बेहतर मान्यता देने की भी मांग की है। यूनियन का कहना है कि कुछ विदेशी कर्मचारियों को स्थानीय कर्मचारियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां मिल रही है। और कैबिनेट ने नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा, ताकि गणेश चतुर्थी पर्व 2026 अब बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है। फेडरेशन ने बताया कि पहले 15 सितंबर की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता को कम करना एक ज़रूरत और तत्काल आवश्यकता है, ये बात जनरल वर्कर्स फेडरेशन के अश्विन गुदाई ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में हो रही कथित दुरुपयोग की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कों पर बसों की कमी अब भी रोजाना यात्रियों को प्रभावित कर रही है। और विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को बेहतरीन साझेदार बताया और कहा कि भारत जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमरीका बेचने को तैयार है। अपनी पहली भारत यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। मास्करेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है, साथ ही दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय मौसम सुहाना रहेगा। रात्रि के समय दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और ऊँचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी लगूनों में और दक्षिणी लगूनों में। सूर्योदय आज 6:34 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:39 पर होगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए आज की प्रमुख खबरों को दोहराते हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है। इसे श्रम बाजार में सुधार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन और सुरक्षा क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। यूनियन ने बसों की कमी और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों का मुद्दा उठाया।

0: निभाया। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बेहतरीन साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत को उसकी जरूरत के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Cotillon Street, Cité Madeleine. Trangbormi, Cotillon Street, Cité Madeleine, Trangbormi, 40 साल के 40 years old के श्री जगदीश्वर किस नारायण जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर कोचियों स्ट्रीट सिटी मादलैन थ्रोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। नंबर 59 डोंडवेकास्टू स्ट्रीट पोर्टवीमी, नंबर 59 डोंडवेकास्टू स्ट्रीट पोर्टवीमी 96 साल की 96 years old की श्रीमती कृष्णावती केडू पैदाइशी नाम देवी दयाल और जो मौसी केडू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर नंबर 59 डोंडवेकास्टू स्ट्रीट पोर्टवी से उठाकर दफनाने के लिए लिसालिन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे 8:02 PM। रामदू रोड बोनाकई में 92 साल के 92 years old के श्री दोदिलमुनि संका जो रामननन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल रविवार को शाम के चार बजे उनके बेटे श्री बेबे संका के घर रामदू रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:04 PM। एरोसलेन प्लैनेट पापाई में 47 साल के 47 years old के श्री सुरेंद्र बिकारी जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के साढ़े दस बजे उनके घर एरोसलेन प्लैनेट पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लैनेट पापाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:10 AM। रॉय रोड बायाश मोंटाइलोंग में 68 साल की 68 years old की श्रीमती नालिनी बहुरा पैदाशी नाम पदारत और जो नालिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री सुभाष बहुरा के घर रोड बयाश मोंटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफ गया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। नंबर 14 होट प्रिजों मोंगोश बुबासामी, नंबर 14 होट प्रिजों मोंगोश बुबासामी 75 साल की 75 years old की कुमारी विद्यावती सीता जो प्रतिभा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके और वो नंबर 14 रोतप्रिजों मोंगोश बुबासा रहने वाली है, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे उनके बेटे श्री सुबे बेबी संद्रागासन के घर नंबर 14 रोड प्रिजों मोंगोश बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:11 AM। पेटिट काबान रोड कांडमास पावे में 63 साल के 63 years old के श्री केवल भट्टू जो अनिल शुफर बुस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी

अच्छा दिन के 11:30 बजे, आज दिन के 11:30 बजे उनके घर पचित का बैंड्रो कौंदमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। टेम्पल रोड बुबुआ मुकामी, टेम्पल रोड बुबुआ मुकामी 58 साल के श्री देवानंद भट्टू, श्री देवानंद भट्टू जो पुघये नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे, आज दिन के 2 बजे उनके भाई श्री प्रीतम भट्टू के घर टेम्पल रोड बब्बा मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कुंस्तांस एम्पिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:02 PM। नंबर 22 रू इंडिपेंडेंस पोर्ट हुई, नंबर 22 रू इंडिपेंडेंस पोर्ट हुई 80 साल की 81 साल की श्रीमती साबित्री दालू, श्रीमती साबित्री दालू जो अमृता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनके भतीजे श्री अश्विन दालू के घर नंबर 22 रू इंडिपेंडेंस पोर्ट हुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रोड बासन कैथोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय कुमार करमचंद जब्बू, श्री अजय कुमार करमचंद जब्बू जो कुमार नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। और वे एवेन्यू कोलविल बेलरोज रहते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी वैसे वे कैथोबो नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी भी थे। उनकी अर्थी आज सपहर 3:30 बजे, आज सपहर 3:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुचिता जब्बू के घर रोदबासन कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:56 और 22 सेकंड हुए। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज से ठीक 19 दिन बाद 11 जून की रात मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम द स्टाडियो अज़्तेका में मेक्सिको का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये विश्व कप का उद्घाटन मैच होगा, ओपनिंग मैच। मेक्सिको के अलावा ये टूर्नामेंट यूएसए और कनाडा में भी लग रहा है, यानी कि तीन देशों में। और इस 48 देशों 48 कंट्रीज और उनके स्क्वाड की घोषणा जारी है। मॉरिशस का चहेता देश इंग्लैंड इस दफा पूर्ण तैयारी के साथ आया है। कोच टोमा टुरेल ने 26 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान कर सबके होश उड़ा दिए। न हैरी मैग्वायर, न फिल फोडेन, न कोल पाल्मर और न ही ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। द इंग्लैंड स्क्वाड एक बड़ा गैम्बल है, किंतु कोच टोमा टुरेल को अपने चुने 26 खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है। हमारे साथ हमारी टीम में 26% कमिटेड प्लेयर्स हैं, ऐसा कहा टोमा टुरेल ने। जो इस प्रकार हैं, गोलकीपर्स हैं जॉर्डन पिकफोर्ड, डीन एंडरसन, जेम्स ट्राफोर्ड, डिफेंस में मार्ग्वेही, डैन बर्न, रिस जेम्स, टिनो लिवरामेंटो, एजरी कोंसा, निको ओरेली, जारेल

Kwanzaa, Jed Spence or John Stones. Midfield med Jude Bellingham, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jordan Anderson, Kobe Mainoo, Declan Rice or Morgan Rogers. To attack med Harry Kane ke saath, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Noni Madueke, Ollie Watkins or Ivan Toney. जो 31 साल की आयु में सबसे बड़ा सरप्राइज पिक बनकर आया है, साथ में है कोबी माइनू, जेड स्पेंस, एजरी कोंजा और लिवरपूल का पुराना कप्तान जॉर्डन एंडरसन, ये भी सरप्राइज के रूप में आए हैं। लिवरपूल का एक्स जारेल क्वांसा भी टीम में है। याद रहे कि इंग्लैंड का पहला मैच 17 जून को है क्रोएशिया के विरुद्ध, फिर 23 जून को इंग्लैंड वर्सेस गाना और 27 जून की रात पनामा के खिलाफ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। सो इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर, इंग्लैंड में ही रहते हैं। किंतु एफए प्रीमियर लीग की बात करें, कल रविवार को इस सीज़न के आखिरी हफ्ते के मैच खेले जाएंगे और इस प्रकार अब कोई खास सस्पेंस न रहा। आर्सेनल चैंपियन बन चुका है बिना खेले ही, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं। एक पांचवा स्थान बचा है जो हर हालत में हर संभव बहुत संभव है कि इसमें बेजान लिवरपूल के पास ये जगह, ये पांचवी जगह जाएगी या ये स्थान जा सकता है, क्योंकि वो बोर्नमुथ से 3 अंक आगे हैं और 6 गोलों का अंतर भी है। लिवरपूल 6 गोलों से आगे भी है, 3 अंक भी आगे है, इसलिए एडवांटेज लिवरपूल, किंतु ऑनेस्लॉट का समय है इसलिए जमाना खराब है। यूरोपा लीग स्पॉट के लिए भी जमकर लड़ाई होगी और खास तौर पे टोटेनहम हॉटस्पर और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच द बैटल ऑफ रिलेगेशन। लंदन की एक टीम अवश्य गिरेगी क्योंकि लंदन इज फॉलिंग। और इस बीच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उम्मीद के मुताबिक माइकल कैरिक को अपना परमानेंट हेड कोच बना दिया है। 44 वर्षीय 44-year-old कैरिक ने कल अपने 2 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 16 मैचों में 11 विंस, तीसरा स्थान चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द सीजन अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। और क्या चाहिए माइकल कैरिक को। और बता दें कि कल के जो फिक्स्चर्स हैं वो इस प्रकार हैं, कल एक ही समय पर सभी मैच खेले जाएंगे। कल रात 7 बजे ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, बर्नले वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स, क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला आर्सेनल से, ट्रॉफी उठाई जाएगी क्रिस्टल पैलेस के सिलहर्स्ट पार्क में, फुलहम टक्कर लेगी न्यूकासल यूनाइटेड से, लिवरपूल का मुकाबला एनफील्ड में ब्रेंटफोर्ड से है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एस्टन विला, नॉटिंगहम फॉरेस्ट टक्कर लेगी बोर्नमुथ से, सन्डरलैंड चेल्सी, टोटेनहम हॉटस्पर एवर्टन, वेस्ट हैम यूनाइटेड खेलेगी अपने होम मैदान पर लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध। ये 2 मैच बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। और न्यूकासल यूनाइटेड, एस्टन विला हालांकि क्वालिफाइड हो चुकी है कल उसकी हार की स्थिति में, और लिवरपूल की जीत की स्थिति में गोल डिफरेंस पर अभी भी कुछ भी हो सकता है। सो लिवरपूल को चाहिए कम से कम 5वां स्थान, लेकिन 4था भी उसके हक में आ सकता है। बोर्नमुथ को चाहिए 1 जीत और उसको उम्मीद करनी है कि लिवरपूल हार जाए। बहुत कुछ कहना देखना बाकी है। बोर्नमुथ, ब्राइटन, चेल्सी, इनके लिए भी लड़ाई जारी है, खासतौर पे यूरोपा लीग के लिए। और उधर पेप गार्डियोला कल मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना आखिरी मैच खेलेगा। कल पेप गार्डियोला 10 साल की यात्रा समाप्त हुई, जिसके दौरान गार्डियोला ने 17 ट्रॉफीज जीती, जिनमें 6 प्रीमियर लीग टाइटल और 1 चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी है। अब क्लब को नई दिशा, नई स्फूर्ति, नया जोश, नई एनर्जी चाहिए, कहा पेप गार्डियोला ने। चेल्सी का पुराना मैनेजर एवं गार्डियोला का एक्स असिस्टेंट एंजो मारेस्का फ्रंट रनर है उसको रिप्लेस करने के लिए, इसलिए गार्डियोला जा रहा है, पर आ रहा है संभवतः एंजो मारेस्का। और बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर एवरीथिंग मूसाला, एक और लेजेंड जा रहा है। शायद वो कल अपना आखिरी मैच खेल भी ना पाए, ऐसी खबर है कि ऑनेस्लॉट ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार किया कि कल आखिरी मैच के लिए एनफील्ड में मोहम्मद सलाह खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ कहा क्लब को, मैं नई जान, नई शक्ति लाने की बात मोहम्मद

0: मोहम्मद सलाह ने कही और जिसको जिसको और ये बात ऑनेस्ट को पसंद नहीं आई। कुछ नतीजे सुनिए। इटली के सीरिया में कल फ्योरेंटिना और अटलांटा ने मैच ड्रॉ किया 1-1। कुप दे फ्रांस में रेसिंग क्लब दे लांस ने निस को 3-1 से परास्त किया। आज इंग्लैंड की लीग चैंपियनशिप के प्रमोशन प्लेऑफ का फाइनल खेला जाएगा हल सिटी और मिडल्सब्रो के बीच। स्कॉटिश कप का फाइनल भी आज ही खेला जाएगा, सेल्टिक वर्सेस डनफर्मलाइन। फिर स्पेन के लालीगा में आज लगभग सभी मैच खेले जाएंगे। आखिरी सप्ताह है आज। रियल मैड्रिड का मुकाबला एथलेटिक से, एफसी बार्सिलोना एवे जाएगी वेलेंशिया के मैदान पे, बार्सिलोना चैंपियन बन चुकी है। जर्मनी के डीएफबी पोकल का फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। बायर्न म्यूनिख का मुकाबला आज वीएफबी स्टुटगार्ट से है। और इटली के सीरिया में दो मैच, बोलोनिया वर्सेस इंटर मिलान, एसएस लाजियो का मुकाबला पीजा से है। और टेनिस की बात करें तो कल रविवार से फ्रेंच ओपन रोलां गारोस भी शुरू हो रहा है। ऐसे में टॉप खिलाड़ियों ने वादे के मुताबिक अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 मिनट में ही रफा दफा कर दिए। ये 15 मिनट उस 15% रेवेन्यू का प्रतीक है, सिंबल है, जो इस टूर्नामेंट से उन खिलाड़ियों को प्राइज मनी के रूप में मिल रहा है। इन खिलाड़ियों को प्राइज मनी से मिल रहे हिस्से को लेकर आपत्ति है। विश्व नंबर 1 अरीना सबालेन्का और यानिक सीनर सहित 4 बार फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक और कोको गाउफ ने भी सामूहिक कलेक्टिव एक्शन में हिस्सा लिया, किंतु पूर्व चैंपियन नोवाक जोकोविच इस विवाद से इसलिए दूर रहा क्योंकि वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं था। और क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉप टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 55 रनों से हरा दिया। ईशान किशन के 79 रन और कुल 255 टीम के 255 रनों के सामने आरसीबी की पूरी टीम 200 रनों पर ही सिमट गई। ऐसे में 55 रनों से उनकी हार हुई। अब इन दोनों के बीच केवल 2 अंकों का अंतर है। आज इसी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग से हैं। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:05:23 विकास रामधनी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आज की सूचनाएं।
3: रुद्रनाथ मंदिर सुल्फरिनो, सनातन सभा तुलसी भवन और भारत से आए श्री अजय याग्निक ग्रुप के सहयोग से 1 महीने का रामायण पाठ और प्रवचन का आयोजन 16 मई से हो चुका है। 31 मई तक का कार्यक्रम कुछ इस तरह रामायण पाठ और प्रवचन मॉरिशस रामायण मंडली द्वारा, जिसके बाद आरती होगी और महाप्रसाद भी दिया जाएगा। समय रहेगा 7:00 से 9:00 के बीच। जगह रुद्रनाथ मंदिर तुलसी भवन सुल्फिरिनो No. 1 वाकवा। और फिर 1 जून से 13 जून रामायण पाठ और प्रवचन श्री अजय याग्निक और ग्रुप द्वारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रीमती स्नेहा याग्निक द्वारा जो भारत से आए हैं। समय रहेगा 7:00 से 9:30। 14 जून को समाप्ति श्री रामयज पूर्णाहुति और आशीर्वाद के साथ। समय रहेगा 9:00 से 12:00, जिसके बाद महाप्रसाद भी दिया जाएगा। उमानाथ मंदिर मोताई ब्लॉश अखंड रामायण गान का आयोजन कर रहा है। शनिवार 23 में 5:00 से 24 में 11:00 तक। शनिवार 23 मई से रविवार 31 मई तक यहोदे रोड लालमाची में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। व्यासवाचक होंगे पंडित सुधाकर शर्मा महावीर। इस कथा के अंतर्गत हिंदू धर्म के गहन विषयों पर चर्चा की जाएगी। समय है 7:30 से 9:30 तक। रविवार 31 मई को पूर्णाहुति का समय रहेगा 9:00 से 12:00 तक।

इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश बातोहर खाते नुथा वाई नुलावेनिया सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग साव्य विजेता लिमिटेड जुनबूत क्यूपिप में हक खोजत बंजा 10 गो मेल या फीमेल मशीन ऑपरेटर साथ में 10 गो मेल या फीमेल असिस्टेंट फैक्ट्री वर्कर एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5433508 पर या 5923-6382 पर या अपन सीवी विदा करिए बाई मेल sariva@itnet.mu पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 मई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जुनास इंडस्ट्रीज लिमिटेड जुनास इंडस्ट्रीज सेंटर विलो स्ट्रीट पोर्ट लुइस में हक हो जाता दुगो मेल कैबिनेट मेकर जे ग्रेड 9 ले पहर लेबा 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा साथ में चला एगो मेल पेंटर जे ग्रेड 9 ले पहर लेबा 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा और 5 गो मेल मेटल शीट वर्कर जे ग्रेड 10 ले पहर लेबा 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा। याद रखिये की तुहर एप्लीकेशन चाहेना रजिस्टर्स पोर्ट द्वारा विदा करेगी तुहर कॉपी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट बचाना विदा करेगी जुनास इंडस्ट्रीज लिमिटेड जुनास इंडस्ट्रीज सेंटर 1 विलो स्ट्रीट पोर्ट लुइस। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 21 मई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिजी ग्लास कंपनी लिमिटेड जून रॉयल रोड कालबास में हक खोजत बंजा 10 गो मेल फैक्ट्री ऑपरेटर्स 10 गो मेल वेल्डर और साथ में 10 गो मेल पेंटर एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 24-33-406 पर या अपन सीवी विदा करिए shaolin.lando@riziglass.mu पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग चुकामाकामिश कंपनी लिमिटेड जून रॉयल रोड बनाके में हक खोजत बंजा ड्राइवर गुड्स व्हीकल दुगो मेल और साथ में तोहरा चाहना एक बरिस के एक्सपीरियंस रहेगी एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5-4-5-9-5-8 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 6 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट ब्लू आक्वा वर्ल्ड लिमिटेड जुन लुमा ओ थ्रू दो दूस में हको जाता एगो मेल या फीमेल कुक जे फॉर्म थ्वाली पहड़ लेबा एगो मेल या फीमेल वेट या केशियर जे फॉर्म कत या एससी ले पहड़ लेबा एगो मेल या फीमेल रेस्टोरेंट सुपरवाइजर जे एससी या एचएससी ले पहड़ लेबा साथ में एगो फीमेल केशियर जे एससी या एचएससी ले पहड़ लेबा साथ में चाहला हेल्पर एगो मेल और एगो फीमेल जुन के सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बा और साथ में एगो फीमेल सुपरवाइजर जे एचएससी ले पहड़ लेबा। एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिए बाय मेल ऑन admin@batoviki.com या m-dodon@outlook.com या तो फिर कभी भी आप लोग सकबा जाए ब्लू आक्वा वर्ल्ड लिमिटेड लुमाओ थ्रू दो दूस। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 जून 2026। सेक्टर रेस्टोरेंट हंग्री बर्ड्स लिमिटेड जन रॉयल रोड व्यू मूले कॉम्प्लेक्स रोजवेल में खोजत वंजा 3 गो मेल कुक जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन अपन सीवी विदा करिए बाय मेल ऑन hungrybirds.hr@gmail.com। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 25 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म आसू विला लिमिटेड जन कोस्टल रोड लापेलूज बिलमाओ में खोजत वंजा 5 गो मेल हाउस कीपर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 415-23-18 या 415-23-20 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म वाटर स्पोर्ट्स विलेज लिमिटेड टिया पैराडाइज कोव बुटीक होटल जन ऑसलारी कापमारी रू में खोजत वंजा 4 गो मेल हेड वेटर जे एससी या से कात कर लेबा साथ में 2 बरस के एक्सपीरियंस एगो मेल बार्टेंडर जे एचएससी ले पढ़ लेबा या तो फिर आप कर ले हव NTC 2 या NTC 3 साथ में 1 बरस के एक्सपीरियंस बा 3 गो मेल शेफ दे पाची जे एससी ले पढ़ लेबा या NC 3 कर लेबा और 2 बरस के एक्सपीरियंस और साथ में छला 3 गो मेल कुक जे फॉर्म कात ले पढ़ लेबा या कर ले हुआ NC 3 और 2 बरस के एक्सपीरियंस चाहला 2 गो मेल हाउसकीपिंग असिस्टेंट जे एससी ले पढ़ लेबा साथ में 1 या 2 बरस के एक्सपीरियंस बा और चाहला 3 गो फीमेल स्पा थेरेपी जे एससी ले पढ़ लेबा लेकिन चाहला 1 या 2 बरिस के एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिन आप लोग कभी भी सकबा जा जाए एगो वॉकिंग इंटरव्यू खातिन पता है वाटर स्पोर्ट्स विलेज लिमिटेड टिया पैराडाइज को बुटीक होटल ऑसलारी कैप मालेरे। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म एंड साइट सींग बातोविकी लिमिटेड जन लुमा ओथो दो दूस में खोजत वंजा एगो फीमेल केशिया या सेल्स गर्ल जे फोन कातले पढ़ लेबा या एससी ले और साथ में चाहेला एगो मेल या फीमेल हेल्पर जे फॉर्म दे या फॉर्म थ्वाले पहड़ लेबा एगो मेल स्कीपर जे एससी ले पहड़ लेबा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 480-07-75 पर या 58-36-87-44 पर या 57-55-87-27 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। सेक्टर एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग गाविन कोको फ्रेश लिमिटेड जुन लक्ष्मण रोड बिलविदे में खोजता 15 गो मेल ग्रेड 2 लैंडस्केपर और तोहरा चाहेला 1 बरिस के एक्सपीरियंस रहे के और आप लोग सकबज एप्लीकेशन खातिन फोन करे
59 07 24 09 पर

या तो फिर आप लोग कभी भी सकबज जाए गाविन कुकू फ्रेश लिमिटेड जन लक्ष्मण रोड बेलविदिया में है। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 6 जून 2026। सेक्टर एग्रीकल्चर नवगिरी लिमिटेड जिन बनान मिडलैंड में हक हो जाता दुगो मेल एग्रीकल्चरल लेबर जगन एक बार इसके एक्सपीरियंस बा अपनी काशो खातिन फोन करिया सकन कात 6151 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर एग्रीकल्चर ओमदत सुकन जिन कालाचंद रोड गुडलैंड में हक हो जाते वंजा 10 गो मेल एग्रीकल्चरल लेबर जिनकर एक बार इसके एक्सपीरियंस बा दुगो मेल लॉरी ड्राइवर जिनकर 5 बार इसके एक्सपीरियंस बा अपनी काशो खातिन फोन करिए 2 2 7 0 0 पर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। सेक्टर रिटेल सेल SS कलेक्शन लिमिटेड जोन की निमेरो 71 रोज गार्डन रोजबेल में है खुजाता एगो मेल और 3 गो फीमेल सेल्स पर्सन जे फोन काटले पहर लेबा एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए 627 62 30 पर या 577 78 3000 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर रिटेल सेल ईस्ट कोस्ट कस्टम्स कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड रिविया जगह पाओ में है खुजता दुगो मेल या फीमेल शॉप असिस्टेंट जे फोन काटले पढ़ ले बा लेकिन चाहला कम से कम 6 महीने के एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 6 67 66 75 14 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर रिपेयर एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स साही ऑटो लिमिटेड जनरल रोड को रांची में है खुजता दुगो मेल ऑटोमोबाइल स्प्रे पेंटर जिनका 3 बरस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 6 67 68 63 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। सेक्टर रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स किशन ऑटोमोटिव सर्विसेज लिमिटेड जिन ब्रांच रोड खुशनुआ में है खोजाता 4 गो मेल मोटर मैकेनिक जिनकर 3 बरस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन तोरा चाहना फोन करे के 6 7 69 09 74 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 20 मई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन AM Zugu and Sons Contracting Limited जिन ब्रांच रोड लालमाची में है खोजत 53 गो मेल इलेक्ट्रिशियन जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाद 3 गो प्लम्बर मेल जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 5946 22 31 पर या तो फिर कभी भी आप लोग सकबज जाइए AM Zugu and Sons Contracting Limited ब्रांच रोड लालमाची फोन नंबर है 5946 22 31 और आप लोग खातिन अर्जी भेजे के आखिरी तारीख रखल गल बा 7 जून 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन लियोनेल क्रिश्चियन लुलियेवर इक्विपमेंट्स लिमिटेड जन मोटरवे लोअर वेल में है खोजत वंजा ग्रेड 2 मेंटेनेंस ऑफिसर यानी कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट खातिन और चाहला 2 गो मेल जिनकर 12 महीने के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन आप लोग फोन करिए 5906 09 03 63 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 22 मई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन आविया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जुन बसंत राय स्ट्रीट लाहौजा में है खुजत 4 गो मेल मेसन जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 4 गो मेल कॉपेंटर जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 7 7 7 3 2 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन स्क्वायर डील मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जुन सीबे रोड गुडलैंड में है खुजत 200 मेल मेसन जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 50 गो मेल स्टील फिक्सर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 100 गो मेल कॉर्पेंटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल बिल्डिंग पेंटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल फोरमैन जिनकर 5 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 5 गो मेल GCB ऑपरेटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 3 गो मेल एक्सकावेटर ऑपरेटर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 10 गो मेल मैकेनिक जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा 7 में 10 गो मेल हैवी व्हीकल ड्राइवर जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बा और 5 गो मेल कुक जिनकर 3 बार इसके एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए 23 77 77 पर या तो फिर अपन CV विदा करिए बाय मेल shravan@squadcalms.com पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 29 मई 2026। पब्लिक सेक्टर में तुर खातिन जुन काम रखल गल बा चेला दिखिला जा लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन लोकल गवर्नमेंट सर्विस खोजता कॉर्पेंटर और एप्लीकेशन खातिन तुहरा चाहला जाए कि http://lgsc.gov.org पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 18 मई 2026 जबकि म्यूनिसिपल टाउन काउंसिल ऑफ बुबास खुजिल खुजता ड्राइवर रोस्टर बेसिस पर और एक खातिन जइया आप

application khatin http://lgsc.govmu.org par arzi bheje ke aakhri tarikh 25 mai 2026 ab dekhila ja private household ki taraf tahi yahan par chahla housemaid रिजो हा रोजबिल और एप्लीकेशन खातिन तुहरा चाहला कॉल करे कि ई आई सी रोजबिल

0: 412 69 25 पर। रेजियो नोवेल फ्रांस में भी चाहेला मेल हाउस मेड एक खातिन आप लोग के चाहेला कॉल करे के ई आई सी रोजबेल 627 48 33 पर। तो ई रहल नु थावाई नु लाविनिया जो तोहर खातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।
1: सुबह के 7:18 हो रहे और आप जुड़े हुए हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस चैनल के साथ। लीजिए सुनिए ये सूचना। मौताबा कैलाशनाथ मंदिर जनता को आमंत्रित करता है आधिक मास पूजा में भाग लेने के लिए। और मौताबा कैलाशनाथ मंदिर पाया जाता है शिवालालीन मौताबा, जी हाँ, और वहाँ पर आधिक मास पूजा का आयोजन किया गया है। रविवार 17 मई से लेकर सोमवार 15 जून तक, यानी एक महीने तक पूजा प्रार्थना की जा रही है। दैनिक कार्य इस तरह से है, पूजा विधि शाम के 6:30 बजे फिर कीर्तन भजन कथा और आरती, और 8:30 बजे पूजा समाप्त हो जाएगी और फिर पूर्णाहुति होगी सोमवार 15 जून को। पूर्णाहुति महाप्रसाद का वितरण होगा शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक। व्यासवाचक होंगे श्री आचार्य लवकुश त्रिपाठी जी। सो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जनता आमंत्रित हैं इस आधिक मास पूजा में भाग लेने के लिए और इसका आयोजन किया गया है मौताबा कैलाशनाथ मंदिर की ओर से। इस समय आप सुन रहे हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस, घड़ी में आ लीजिए 7:20 हो रहे हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और कहीं कहीं पर धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। सर्दी का मौसम आ ही गया जी। हम जानते हैं कि नींद से जागने का मन तो नहीं कर रहा है, परंतु क्या करें, जागना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस, और जय प्रताप सिंह के साथ हमारा प्यार भरा नमन स्वीकार करें। हम हैं आप लोगों के साथ इन द मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। एक छोटी सी कहानी, प्यारे प्यारे गाने, दिलचस्प म्यूजिक, बॉलीवुड न्यूज एंड सो मच मोर। तो इस प्रोग्राम में सभी का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि रात आपको अच्छी से नींद आई होगी और अब नींद से जागने का समय आया है। और आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी है स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, परिवार में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहे, रिश्तों में प्यार है, मिठास है, यही होना चाहिए। न टेंशन लेने का, न टेंशन देने का, प्यार से जीने का, है ना। ऐसा मोटो अगर हर किसी का हो तो क्या बात है। और इस संसार में हर किसी को हक है अपना जीवन जीने के लिए अपने स्टाइल में। किसी पर कोई दबाव न डाले, किसी को फोर्स मत करें कि ऐसा जीना चाहिए या वैसा जीना चाहिए। हर इंसान का हक है कि वो जिए अपने तरीके से। ऑलराइट, ठीक है। 7:20 चलिए शुरू करते हैं मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ।
3: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: अपनी उन्नति और शत्रु का विनाश, यही दो नीति की बातें हैं। उन्हीं दोनों को अंगीकार करके कुशल पुरुष अपनी वाक चतुरता का विस्तार करते हैं।

आज दुनिया में हर प्राणी सुख ढूंढ रहा है और सच्चा सुख कहां पर है, चलिए इसी पर हम आपको सुनवाते कहानी। कहानी का शीर्षक है सच्चा सुख। एक नगर में मोहन नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़ा घर, गाड़ियां और बहुत धन था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। वह सोचता था कि शायद और अधिक पैसा मिलने से उसे खुशी मिल जाएगी। एक दिन अपने पुराने मित्र राघव से अपनी परेशानी बताई। राघव एक साधारण शिक्षक था, उसकी आय कम थी, फिर भी वह हमेशा प्रसन्न रहता था। मोहन ने पूछा, तुम्हारे पास न धन है न बड़ी संपत्ति, फिर तुम इतने खुश कैसे रहते हो? राघव मुस्कुराया और बोला, सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष और प्रेम में होता है। मोहन को उसकी बात समझ नहीं आई। अगले दिन राघव उसे अपने घर ले गया

वहाँ छोटा सा घर था, वहाँ छोटा सा घर था, साधारण भोजन था, लेकिन परिवार के सभी लोग हंसते बोलते हुए साथ बैठकर खाना खा रहे थे। घर में अपनापन और प्रेम भरा हुआ था। उसी समय बाहर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति मदद मांगने आया। राघव ने बिना सोचे उसे भोजन करा दिया। बूढ़े के चेहरे की खुशी देखकर मोहन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। धीरे धीरे मोहन समझ गया कि वह जीवन भर केवल धन कमाने में लगा रहा, लेकिन उसने रिश्तों, दया और संतोष को महत्व नहीं दिया। उसने फैसला किया कि अब वह जरूरतमंदों की सहायता करेगा और अपने परिवार के साथ समय बिताएगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिल सकती है। कुछ महीनों बाद मोहन पहले से अधिक खुश रहने लगा। अब उसे समझ आ गया कि सच्चा सुख महंगी चीजों में नहीं बल्कि प्रेम, संतोष और दूसरों की मदद करने में छिपा होता है। सो कहानी की जो सीख है वो ये है कि सच्चा सुख हमेशा धन से नहीं बल्कि अपने विचार, प्रेम और संतोष से मिलता है। और अब चलिए एक प्यार सा गीत सुनते हैं। दो लफ्जों की ये कहानी है, ये भी कहानी है पर ये कहानी गीत में ढली है। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना, हमें यकीन गीत आपको पसंद आएगा।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: जी दोस्तों, ये हम सभी की जिंदगी एक जीती जागती कहानी तो है। इसका इसकी शुरुआत है, फिर कहानी है और इसका अंत भी एक दिन होना है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है यहाँ पर, है कि नहीं। सुबह के 7:35 और अब लीजिए सुनिए हमारे MBC TV प्रोग्रामों की झलकियाँ।
1: MBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पे पलटवार हुआ। कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है।
3: मुझे रोहन चाहिए।
4: तुम मिस्टेक कर रहे हो,
5: तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
6: 8 साल के बच्चे को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए।
7: सारा जहां मेरा हुआ।
1: 23 मई को शनिवार MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म मद्दारी 2016 की ये फिल्म इरफान खान और जिमी शेरगिल पर फिल्म आई गई मद्दारी। MBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
8: अरमान अली उर्फ हमारे अब्बा, कोई लोग अब्बा को चौक से समझाए।
9: ये कौन है? पुतला।
10: पुतला नहीं, ये तुम हो।
8: तो कोई डंडे आरोप जमाए।
11: वेल डन अब्बा।
12: वेल डन अब्बा, अब्बा, अब्बा, अब्बा।
13: सुन जरा आया है फ्री का संदेश।
1: शनिवार 23 मई को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म वेल डन अब्बा 2010 की ये मूवी बुमन ईरानी और मनीषा लांबा पर फिल्माई गई वेल डन अब्बा।
14: नुसते श्वास घेत बसू नका।
15: इमारत दणदणीत आहे।
16: त्या वयात प्रोफेसर साहेब उपास करायचे खजूर खाऊन।
14: सांग मला, तुमच्याशी वाद घालायचा नाही।
15: 6,000 कोटीचा चिटफंड घोटाळा केलेला आहे म्हणजे आता हे चाललंय स्वित्झर्लंडला।
16: आपल्या देशात 6,000 कोटी रुपये खाल्ले तर डायरेक्ट इंटरनॅशनल फ्लाईटचं तिकीट, पण 6,000 रुपये खाल्ले

0: Saturday, 23rd of May, on MBC 8 at 9 p.m. Marathi Chitrapat, me, Shivaji Park. MBC TV, Rangeen Programo ka khazana.
1: Tum har saal Ravan ko isliye jalate ho. क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता।
2: तुम्हें विलन अच्छे लगते हैं ना, तो मैं आज जाकर एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसमें विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो।
3: रावण गेम के बाहर कैसे आ सकता है?
4: रावण को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जीवन।
0: रविवार 24 मई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म रावण 2011 की मूवी। इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान और करीना कपूर। रावण, एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियां।
5: घनश्याम तिवारी आज सुबह दिल्ली मुंबई मालगाड़ी की बोगी में अपने ऑटो रिक्शा के साथ पाए गए।
6: अगर ऑटो वाले आम आदमी को तंग करना बंद नहीं करेंगे तो अगली बार उनको एक ऐसी जगह भेजेंगे जहां जाने के लिए वीजा भी लगता है और प्लेन की टिकट भी।
7: ओ, बाकी सारे।
0: रविवार 24 मई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म उंगली 2014 की ये मूवी इमरान हाशमी और कंगना रनौत पर फिल्माई गई उंगली।
8: अब जी सुनिए हमारे रेडियो प्रोग्रामों का झरोखा। रेडियो मॉरिशस पर कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं आज? सभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम 8:15 बजे ज्ञान सरोवर हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से, 8 बजे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार पढ़े जाएंगे, 8:10 पर सुबह का नजराना पार्ट टू डेडिकेशन टाइम, 9 बजे फ्लैश न्यूज, 9:02 पर पीक टाइम मैगजीन किरण के साथ, 10 बजे फ्लैश न्यूज, 10:03 पर अनवर के साथ उर्दू प्रोग्राम, दिन के 11:02 पर सिरिवनेलम तमिल कार्यक्रम, दिन के 12:15 बालनंदम तेलुगु प्रोग्राम वंदना के साथ, दिन के 1 बजे प्रीति के साथ मराठी प्रोग्राम, दिन के 12:45 गीत बहार अमिता के साथ गुजराती भाषा में, आपके वसन प्रोग्राम 2:15 से शाम के 4 बजे तक देवीना की पेशकश में, शाम के 4 बजे अंजू की पेशकश में होगा प्रोग्राम साहित्य दर्पण, शाम के 5 बजे रोशन भाई से आप सुनेंगे प्रोग्राम खेल खिलाड़ी, शाम के 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, शाम के 6:30 बजे डेविड से सुनेंगे चाइनीज प्रोग्राम हाई गेलियन गाइना, रात के 7 बजे युवरसन से तमिल प्रोग्राम, रात के 7:30 बजे गिरिशालिनी प्रस्तुत करेंगी तेलुगु कार्यक्रम, रात के 7:50 पर बापू भाई से सुनेंगे प्रोग्राम गीत गंगा मराठी भाषा में, अनिता के साथ प्रभु भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम 8:10 पर, महफिल शब प्रोग्राम सईदा के साथ रात के 8:40 पर, भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रत्ना पदारत के साथ रात के 9 से 11 बजे और रात के 11 बजे सुनहरे पर रितुषा के साथ और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक नॉन स्टॉप फिल्मी तरानी और रेडियो मनोरंजन पर हमारी आपकी मुलाकात होगी आज शाम के 5 से 6 बजे प्रोग्राम पुरानी नगमे कार्यक्रम में। सो ये थी हमारे रेडियो प्रोग्रामों का झरोखा और आशा करते हैं कि दिन भर आप रेडियो के साथ जुड़े रहेंगे और हरी भरी वादियों में आज ये गीत गूंज रहा है, मेरा एक सपना है कि हम भी देखें तुम्हें सपनों में, सपनों की बात सपने ही जाने।

इसी गीत के साथ ही सुबह का नजराना इस प्रोग्राम का पहला भाग यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। ठीक पौने 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से कार्यक्रम ज्ञान सरोवर, और ये लेकर जाएगा हमें सुबह 11 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। समाचारों के बाद सुबह 11:10 पर हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इन द मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना पार्ट 2। सुनते रहिए प्यार से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: ज्ञान सरोवर हिंदी संगठन अर्थात हिंदी स्पीकिंग यूनियन की प्रस्तुति में इस साप्ताहिक ज्ञान सरोवर कार्यक्रम के हिंदी प्रेमी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। आज हम भारत के महान कवि, लेखक और दार्शनिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्मदिन इसी महीने में 7 मई को मनाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर नाम से आप जिन्हें जानते हैं, उनके जीवन, कार्यक्षेत्र एवं उपलब्धियों से इस वार्ता में परिचित होंगे। मेरे साथ इस विशेष चर्चा में उपस्थित हैं श्रीमती डॉक्टर वर्षा भागीरथ कालीचंद जी। नमस्कार बहन जी।
1: नमस्ते।
0: आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने भारत के विश्वविद्यालय में स्नातक व पर स्नातक पूरा करके मॉरिशस के मुक्त विश्वविद्यालय से पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की

0: हैं।
1: जी हाँ।
0: इस समय न्यू एजुकेशनल कॉलेज बेलेयर में हिंदी अध्यापिका हैं, पिछले 18 वर्षों से छात्रों को हिंदी पढ़ाती हैं।
1: जी।
0: सर्वप्रथम हमारे श्रोताओं को अवगत कराइए कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे और आज के समय में वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं।
1: रविंद्रनाथ टैगोर जी एक महान कवि, लेखक और विचारक थे। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को पूरी तरह बदल दिया। सन 1913 में वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने और मानवता पर उनके विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं।
0: उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं?
1: उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा वे दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी लिखी रचनाएं दो देशों का राष्ट्र गान बनी, भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला।
0: जी। उनके संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है, इसकी क्या विशेषता है बहन जी?
1: क्योंकि इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का बहुत सुंदर तालमेल है। इनके गीत प्रकृति, प्रेम और ईश्वर की भक्ति से जुड़े होते हैं। यह आज भी बंगाली संस्कृति की आत्मा है।
0: टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया था।
1: जी हाँ।
0: उनके स्कूल शांति निकेतन के बारे में कुछ बताइए।
1: जी, वे बच्चों को चार दीवारों के भीतर बंद करके पढ़ाने के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में खुले आसमान के नीचे एक अनूठा स्कूल शुरू किया। यही आगे चलकर प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय बना।
0: डॉक्टर वर्षा जी, अभी तक आपने भारत में टैगोर जी के योगदान के बारे में बताया, लेकिन क्या मॉरिशस के धरती में भी उनका योगदान है?
1: जी हाँ माधव जी, बिल्कुल। मॉरिशस में इलुत दिपिने गांव में रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग आरटीआई कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। यह संस्थान भारत और मॉरिशस की सरकारों की एक साझा पहल है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। वहाँ पर आप श्रोताओं को पता है एक माध्यमिक विद्यालय और एक इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था भी है।
0: मॉरिशस में बने रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट अर्थात आरटीआई की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या इतिहास है बहन जी?
1: इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौंडा जी से जुड़ा है। 4 फरवरी 1997 को अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान देवगौंडा जी उत्तरी मॉरिशस के इलुत गांव पहुंचे थे और गांव की सुंदरता देखने के लिए और गांव वासियों से मिलने के लिए वे पूरे गांव पैदल चले और इस प्रकार लगभग 7,000 लोगों से उनका बहुत भव्य मिलना और लोगों ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। इस तरह सभी लोगों का प्यार देखकर देवगौंडा जी भावुक हो गए और उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं से पूछा कि भारत सरकार इस क्षेत्र के लोगों को क्या भेंट दे सकती है। और हमारे स्थानीय नेताओं ने मांग की कि जैसे मॉरिशस के केंद्र मोका में महात्मा गांधी संस्थान है, वैसे ही उत्तरी हिस्से के लोगों के लिए भी एक सांस्कृतिक केंद्र होना चाहिए। देवगौंडा जी ने उसी शाम इस बात को स्वीकार करते हुए एक नए सांस्कृतिक परिसर यानी कि कल्चरल कॉम्प्लेक्स की घोषणा कर दी। वैसे तो माधव जी

0: मॉरिशस और टैगोर जी का रिश्ता बहुत ही पुराना है और गर्व की बात यह है कि मॉरिशस में उनकी विरासत को संजोने के लिए भारत और मॉरिशस की सरकारों ने एक ऐतिहासिक पहल की। इस प्रकार 12 मई 2000 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी ने संयुक्त रूप से पॉम्पलमुस के ईलुत गांव में इस संस्था की आधारशिला रखी थी और 2024 में रविंद्रनाथ टैगोर संस्था में गुरुदेव टैगोर जी की भव्य प्रतिमा की भी स्थापना हुई। श्रोताओं को यह जानकर खुशी होगी कि यह प्रतिमा भारत के भोपाल में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा उपहार में दिया गया था।
1: यह एक अद्भुत प्रसंग है।
0: जी हाँ।
1: तो हे बहन जी, इस संस्थान को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन को मॉरिशस में बढ़ावा देना है। यह संस्थान महात्मा गांधी संस्थान यानी कि MGI के साथ मिलकर काम करता है। यह मॉरिशस वासियों को टैगोर जी के विचारों और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है।
1: हमारे श्रोता यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस इंस्टीट्यूट अर्थात संस्थान में किस तरह के कोर्स, विषय या पढ़ाई होती हैं।
0: जी, यहाँ उच्च शिक्षा यानी कि जिसको हम लोग टर्शियरी एजुकेशन कहते हैं, इसका एक बेहतरीन विकल्प है। मॉरिशस के विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ फिल्म प्रोडक्शन यानी कि BA हॉनर्स इन फिल्म प्रोडक्शन और थिएटर नाटक यानी कि BA हॉनर्स इन ड्रामेटिक आर्ट की डिग्री जिसको हम लोग स्नातक कहते हैं की शिक्षा पाई जा सकती है। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसको हम लोग हॉबी कोर्सेज कहते हैं, ये भी हैं जिसमें हारमोनियम है, गिटार है, लोक नृत्य है, योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, मधुबनी पेंटिंग, रामायण पाठ आदि।
1: यानी कि टैगोर जी की तरह ही यहाँ कला और रचनात्मकता को बहुत महत्व दिया जाता है।
0: जी हाँ।
1: क्या वहाँ आम लोग भी घूमने जा सकते हैं बहन जी?
0: जी बिल्कुल, वहाँ आम जनता के लिए एक स्थायी टैगोर गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में टैगोर जी के जीवन, उनकी यात्राओं और उनकी दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ प्रवासी समुदायों के इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों पर शोध करने वाला विभाग है। इसके अलावा वहाँ पर एक भव्य पुस्तकालय है जिसमें क्षेत्रीय विरासत, लोकगीत और शैक्षिक साहित्यिक संबंधित एक बड़ा संग्रह है। एक आर्ट गैलरी और एक बड़ा ऑडिटोरियम भी है जहाँ सांस्कृतिक कला उत्सवों और कार्यशालाओं के कार्यक्रम होते रहते हैं।
1: यदि श्रोताओं को टैगोर के जीवन से कोई एक सीख लेनी हो तो वह क्या होगी?
0: मन की स्वतंत्रता और निडरता। उन्होंने अपनी एक सुप्रसिद्ध कविता में लिखा था कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां मन में कोई डर ना हो और सिर हमेशा ऊंचा रहे।
1: वाह, क्या बात है बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्षा जी, मॉरिशस में टैगोर जी की इस खूबसूरत विरासत के बारे में बताने के लिए। मुझे विश्वास है कि टैगोर जी के निडर विचार, कविताएं, गीत व कलात्मक रचनाएं हमारे नवयुवकों को भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित करेगी, अतः वे अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम ज्ञान सरोवर

0: यही समाप्त होता है। आशा है कि हमारे श्रोताओं को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम को सुनते रहिए, ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाते रहिए। अगले सप्ताह इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।
1: सभी श्रोताओं को नमस्ते और शुभ दिन।

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस
1: ये वक्त पर चिर की आदत चल बात है. नमस्ते, भोजपुरी में समाचार सुना जा. मॉरिशस के श्रम बाजार में सुधार देखे की मिलता. ई स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस देने से जारी ताज़ा आंकड़ा से पता चलता साल 2025 के तीसर काटी माही में बेरोजगारी दर घट के 5.6% हो गल बातें, जबकि ये कर लिया कि 5.9% के रहर ई गिरावट कई गो आर्थिक क्षेत्र में पीनों से बढ़ रही गतिविधि और रोजगार के मौका में सुधार के संकेत देवता. कुल मिला के ये गो उत्साहजनक स्थिति मानल जाता जुन देश में रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के दर्शावता. किंतु जमीनी स्तर पर खासकर के युवा डिग्री धारक लोग के और कई गो कामगार खातिन स्थिति उतना आसान नहीं दिखता. कई गो जना की नौकरी पावे में कठिनाई होता और कई गो के नौकरी मिलता जुन कर पढ़ाई और योग्यता के अनुरूप नई बातें. मूसलाधार बारिश और तेज बारिश के बखत एगो राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल अब पूरा मॉरिशस में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र पर लागू करल जाए. ई फैसला कल मंत्रिमंडल की बैठक में लेवल गल. श्रम मंत्री रिजाउद्दीन मक की अध्यक्षता में होल कैगो अंतर मंत्रालयी बैठक के बाद तैयार करल गल ई नवा ढांचा. अब सब मॉरिशन कर्मचारी और शिक्षा क्षेत्र पर बिना कोनो भेदभाव के लागू हो. अब नियम स्पष्ट बातें और सब कर्मचारी पर लागू हो, चाहे वो फुल टाइम पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करी लंजा. अब जब वाकुआ मौसम विभाग दिने से तेज बारिश की चेतावनी जारी कर जाए तो आधिकारिक निर्देश सब पर समान रूप से लागू हो. खाली राष्ट्रीय संकट समिति के अधिकार रही कि वो आधिकारिक घोषणा से जगह के खाली करे के घरे रहे के या यात्रा पर सख्त रोक लगावे के आदेश दियंजा. ये गो जरूरी कदम मानल जाता जेकर उद्देश्य सबके सुरक्षा सुनिश्चित करे के और उद्देश्य के आर्थिक गतिविधि के जारी रखे के बातें. कैबिनेट नोट कर लग के सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 के सूची में बदलाव कर जाए, जिमें गणेश चतुर्थी पर्व अब बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर की मनावल जाए. ई बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर कर गल बातें. फेडरेशन बोलन की पहले 15 सितंबर 2026 की तारीख गणना में होल गलत व्याख्या खातिन प्रस्तावित करल गल रहा. मॉरिशस और अमेरिका अपन सहयोग की जस्ती मजबूत करता. मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर

0: सरल गलबाते ई साझेदारी आपदा प्रबंधन सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित बाते मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारी एगो अभ्यास में हिस्सा ले लंजा जेकर में एगो इमारत के गिरे नियन स्थिति बनावल कर रहा जेकर बखत वो आपातकालीन हालात में अपन कार्रवाई की क्षमता के प्रदर्शन कर लंजा। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के बेहतरीन साझेदार बतैलन और बोलन कि भारत जितना ईंधन खरीदे खोजता अमरीका बेचे के तैयार बाते अपन पहल का भारत यात्रा के बारे में वो बोलन कि ई यात्रा उनकरा क्वाद देश के मंत्री से मिले के मौका देवता। तो ये रहल भोजपुरी में समाचार, आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Haute-Bassin 4 bonnes, 65 ans, Ajay Kumar Karamchand Jabu, Shri Ajay Kumar Karamchand Jabu, जिनका लोग कुमार नाम से जानते रहन जा और जन एवेन्यू कोलविल बेल रोज रहत रहन जा और काथोबो नगर पालिका के एक पूर्व कर्मचारी रहन जा गुजर कर हवन करमाती आज दिन के 3:30 आज दिन के 3:30 उनकर पत्नी श्रीमती सुचिता जब्बू के घर खुद पास है काथोबो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थ्वा मामल के शमशान भूमि ली जा बल जाए। क्रमिशन टूडे 3:30 PM। Number 22 rue Indépendance pour 8000, number 22 rue Indépendance pour 8000, Baris qui 80 ans qui Kumari Sabitri Dalu, Kumari Sabitri Dalu, jinkara log Amrita naam se ranja guzargal hawan karmati aaj din ke 1 baje aaj din ke 1 baje unka bhatija Shri Ashwin Dalu ke ghare number 22 rue Indépendance pour 8000 Thakian tim sanskar khatin Thongbo ki shamshan bhumi di jau will jai cremation today at 1 PM. Temple Road Bobwa Mukami 58 baris ki 58 ans ke Shri Devanan Bhattu jin kara log Bogriye naam se jan ranja guzar gal hawan karmate aaj din ke 2 baje aaj din ke 2 baje unkar bhai Shri Pritam Bhattu ke ghare Temple Road Bobwa Mukha se utha ke antim sanskar khatin Sia Constance Saint Pierre ke shamshan bhumi le jabal jaye cremation today at 2 PM. Petite cabane rôde, quand de masse pavé, mais petite cabane rôde, quand de masse pavé, mais 17 bariski, 63 ans, qui chikewel, patou, chikewel, patou, tinkralog. Anil chauffeur bus nam, zidan de chanja, gusargal hon, karmati adjadinki, yarabachki adha, jinki, yarabachki adha. Unkar ghari, petite cabane rôde, quand de masse pavé, si vous taquin, timsens karkatin, mais in quand de masque, chamchan, vous midi javel jai, commission today at 11:30 AM. Number 14. Route prison Montrouge Bobassamé number 14 route prison Montrouge Bobassamé 75 baris qui 75 ans qui Kumari Vidyautisita jinkara log Pratibha naam se janat ranja guzar gal hun karmati aaj inke 11 baje unkar beta Shri Sobe Baby Sandra Gassan ki ghare number 14 road prison Montrouge Bobassin se utha ke antim sanskar khatin Shebel ke shamshan bhumi le jawal jaye cremation today at 11 AM. Rai Road Bayash Montagne Longme Rai Road Bayash Montagne Longme 67 baris ki 68 ans ke Shemati Nalini Baora Paidashinam Padarat, jinkara log Nalini naam se jandar ranja guzar gal hawan karmati aaj inke ek baje unkar beta Shri Subhash Bauha ke ghare Rai Road Bayash Montailon se utha ke antim sanskar khatin Crèvecœur ke shamshan bhumi le jawal jaye cremation today at 1 PM. Eros Lane Plaine des Papayes 47 baris ki 47 ans ke Shri Surendra Bikari jinkara log Ajay naam se jandar ranja guzar gal hawan karmati काल दिमास के दिन के दस बज के आधा उनकर घरे हौसलेन प्लेंडे पापाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेंडे पापाई के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM. रामजू रोड बोना कर्मी 92 बरिस के 92 ans के श्री दोदिलमोनी संका

0: जिनका लोग राम नंदन नाम से जनक रंजा गुजर कर हवन करमाती उनकरमाती काल डी मास के सांझ के चार बजे उनकर बेटा श्री बेबी शंकर के घर हम टू रोड बोनाकर से उठा के अंतिम संस्कार का दिन बोनाकर के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुमरो एट 4 PM। नंबर 59 डॉन्टवेयर कास्टू स्ट्रीट पोट्री में, नंबर 59 डॉन्टवेयर कास्टू स्ट्रीट पोट्री में 96 बरिस की 86 ans की श्रीमती कृष्णावती केडू, श्रीमती कृष्णावती केडू जिन पैदाइशी नाम देवी दयाल जिनका लोग मौसी केडू नाम से रंजा गुजर गल हवन करमाती आज दिन के दो बजे उनकर घर ही नंबर 59 डॉन्टवेयर कास्टू स्ट्रीट पोट्री से निकाल के दफनावी खातिन लिसालीन के शमशान भूमि ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे 2 PM। कोचियों स्ट्रीट सिटी मैडलेन थ्रांगबॉमे 40 बरिस के 40 ans के श्री जगदीश्वर कृष्ण नारायण जिनकर लोग जगदीश नाम से जाना रंजा गुजरगर हवन करमाती आज दिन के एक बजे उनकर घरे कोचियों स्ट्रीट सिटी मैडलेन थ्रांगबॉ से उठा के अंतिम संस्कार का दिन थ्रांगबॉ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवार संगे हमने की सहानुभूति बातें।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: होने को जिंदगी में कुछ भी हो सकता है ना? इसलिए कहते हैं कि जो भी पल है उस पल को आप आज ही जी रहे, पता नहीं आने वाले पल में हम रहे या ना रहे। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। ये है एमबीसी रेडियो मॉरिशस AM2 मीडियम वेव 7.9 किलोहर्ट्ज़ पर, और आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमारे टिकटॉक पेज पर, एमबीसी की रेडियो मॉरिशस टिकटॉक पेज पर आप हमें लाइव देख रहे हैं। थैंक यू जी डेडिकेशन टाइम। मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना पार्ट 2, सुबह 11:16 मिनट और अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक प्यारे प्यारे गाने, और आप अपने नाम जोड़ सकते हैं 4028085 पर। अगला गाना परिज के नाम, हेलो जिया। यस राज करी यादव, ये गीत आपके नाम भी, तारिक भाई आपके नाम, सुनीता ये गीत आपके नाम भी हम करेंगे, फ्रॉम द मूवी शकलाका बुम बुम, थारे वास्ते दे देंगे जान रे। ऑलराइट, बहुत प्यारा सा गाना, और यही गीत हम चलाएंगे संजय की ओर से, उनके मामू देवदत्त, मामी मुनिया और सब शिवरतन परिवार जो मिडलैंड्स रहते हैं। ऑलराइट, ऑड्री फैमिली के सभी दोस्तों के नाम और सैटोबे ऑड्री फैमिली के सभी फ्रेंड्स के नाम जो हमें सुन रहे हैं। एंजेलो भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी एंजेलो। दिस सॉन्ग आप लोगों के नाम भी, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं टिकटॉक पेज पर, साम सुब करण जी, फिर मरिश्का जी और संजीव, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। जितने लोग हमें रेडियो पर सुन रहे हैं ऑनलाइन या लाइव टिकटॉक पर हमें फॉलो कर रहे हैं, सो यह गीत आपके नाम भी, थारी वास्ते दे देंगे जान भी, और यही गीत चलाएंगे, ये गीत हम चलाएंगे संगीता मीरन के नाम, अप्रीति राहोजा, रीता सीतालुज के नाम बहुत प्यार से, और आप उन्हें कहते हैप्पी मदर्स डे एंड हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, रीता जी, रीता सीतालु अपना बर्थडे मना रही हैं मंडे 25 मई, सो बधाइयाँ हैं संगीता मीरन की ओर से, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद, एंड ऑल दोज पीपल जिनका जन्मदिन है, सो यह गीत आपके नाम भी। विकास रामरेखा, हेलो विकास भाई, आपका स्वागत है, एंड नेक्स्ट गाना फॉर यू रोज में, गीत आपके नाम भी। प्रवेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, थारे वास्ते।

0: दे देंगे जान बे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना था। मैं यकीन है आपने इस गीत पर झूमे होंगे जरूर, और झूमेंगे आपके साथ। एक बार तू इंडिया जाके देखना, किसी इंडियन से दिल लगा के देखना। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है, फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए। प्रीतम राम यह गीत आपके नाम, शीला जी यह गीत आपके नाम भी, एंड गीता बाई जी है नोवेल फॉन्स से। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो गीता बाई, नमस्ते।
1: नमस्कार, कैसे हो बेटा?
0: मैं ठीक हूँ गीता बाई, आप कैसी है?
1: मैं भी ठीक हूँ, बच्चे सब घर पर ठीक है ना?
0: सब ठीक ठाक। और आप सुनाइए।
1: हाँ, कौन सा गीत डालेंगे
0: अभी? आएगा एक बार तू इंडिया आके देखना।
1: दिल अभी मेरा बंद है दिल देने को।
0: नहीं, मैंने कहा एक बार तू इंडिया जाके देखना, आपने समझा? हाँ, नहीं, ध्यान से सुनिए।
1: तब सुनाई देता है।
0: हाँ, ओके ओके, एक बार तू इंडिया जाके देखना। और ये हाँ, गीत किसके लिए?
1: ये गीत डालना मेरे बच्चों के लिए। आपको नाम नाम याद है?
0: बोलिए नाम, नाम जोड़ दीजिए।
1: शिवाजी मेरा बेटा का नाम।
0: हाँ,
1: का नाम है श्वेता बाई।
0: हाँ,
1: मेरी बेटी शीला बाई, तीन छोटे बच्चे हैं, विश्वी बाई, दिया बाई और मेरे

0: सारे मालहार के लिए।
1: ओके जी, जरूर चलाएंगे
0: आपको।
1: ओके जी, शुभ दिन, हैव अ नाइस डे, बॉन वीकेंड। और एक दोस्त लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पापा बाबू।
1: नमस्ते जी, आपका नाम?
2: हम नमस्ते, ग्वालियर से मेरा रामन बोला था।
1: आपका स्वागत है।
2: हाँ, और बेटा के एनिवर्सरी भाई आज।
1: कौन नंबर बेटा के?
2: बेटा के संजय। संजय का पापा गुलाब चंद,
1: उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं।
2: हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ, पत्नी वीना, ओकर बेटी आंसी, ओकर बेटा अंकुश।
1: हाँ
2: हाँ, सब चाचा चाची फूफू बहन लोग से, बहन सबके बधाई देव सा, सबके अच्छी से रामन परिवार।
1: ओके
2: ओके, बधाई देव सा, एक गीत डाल दी।
1: एक बहुत ही प्यारा सा गीत आएगा फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए।
2: हाँ,
1: ठीक है,
2: आले आले बाबू।
1: ओके, और एक दोस्त लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
1: नमस्ते जी, आपका नाम?
3: हम बसों से देवयानी।
1: हाँ देवयानी, आपका स्वागत है, बोलिए।
3: हमारे बहू के लानी वैसा रहा भाव समय के लाइन नहीं मिला।
1: बहू का क्या नाम है?
3: लीना। ओकर पति किरण।
1: हाँ,
3: बेटी आशनी, बेटा सोहम, हम उनके सासू माँ है, और तीन देवर है, आतिश, किशन, प्रीतिश, और ओकर माँ सत्यानी गांगो प्रहलाद जीवन, और उनके भाई आसमिन एगो जोली गीत जन्मदिन के डाल दिया, और हमारे नातिन के लानी वैसे रहल।
1: ओके, उनका क्या नाम है?
3: निशिला, उनके पति राजेश, ओकर माँ वीना, ओकर नानी राधिका, मांगू रहेला एगो जोली गीत डाल दिया।
1: ओके जी, यस, एंड यही गाना कनाडा से हम लियोन जी के नाम से, कनाडा से आप हमें फॉलो करें। हेलो लियोन जी, फिर यह गीत विमला देवी के नाम भी, राजन भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिर बहुत से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं हमारी रेडियो मॉन्स्टर्स की टिकटॉक पेज पर, थैंक यू जी। और यह जो टिकटॉक पेज है यह एक्टिवेट हो चुका है कई दिनों से, सो अब हम जब प्रोग्राम करेंगे तो समय समय पर हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट आप हमें देख भी सकते हैं टिकटॉक पर, और रेडियो पर सुन भी सकते हैं। योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली MBC रेडियो मॉरिशस। सुनीता जी, आपका हम स्वागत करते हैं। ये अगला गीत आपके नाम, आशना जी, यह गीत आपके नाम भी, और 28159, ऑलराइट, जो कोड है यहाँ आप ये हो रहा है टिकटॉक पेज पर, सो ये गीत आपके नाम भी। एंड जितने भी लोगों का जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे, जितने लोगों की शादी की सालगिरह है कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो बधाई, और जिन्हों की हाल ही में मंगनी हुई है, सो दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और जितने भी लोग इस समय घर पे है या काम पे है या कहीं जा रहे हैं, कहीं से लौट रहे, या फिर गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं और हमारे गीतों को एंजॉय करें, सो यह गीत आपके नाम भी, ऑलराइट, बहुत प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए।

0: बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। हाँ, आप लोगों का साथ, आप लोग हमारे साथ झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। यस, ओके। और अगला गीत फेविकॉल से, फिल्म दबंग का गाना है और ये गीत खासम खास अजय पांचू जी के नाम, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी एक दो से लाइन पे उनसे मिलेंगे। सुनंशी टंकी, गीत आपके नाम भी। हेलो हेलो
1: हेलो भाई जी, प्रणाम।
0: प्रणाम, आपका नाम?
1: मैं हूँ रीता भिखारी, लालोगा से।
0: ओके।
1: हाँ, मेरे नातिन का जन्मदिन था, गत सप्ताह लाइन नहीं मिला, उसीलिए एक गीत मांग रही हूँ। मेरी नातिन का नाम है कृतिका, उसका एक बहन है श्वेतिका, और उसका चार भाई है, आयुष, कैसी, खस, क्रिस्वी, और छोटी बहन है कृषिता। और उसके लिए और भिखारी परिवार, बंधु परिवार के नाम से सबके एक अच्छा सा गीत डाल देना,
0: एक प्यारा सा गीत। ओके, ऑलराइट,

0: सो चलाएंगे एक प्यारा सा गीत, आप सुनते रहिए। और एक दोस्त है लाइन पे है। हेलो लीलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते प्रताप जी, कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ। मेरा दीदी का जन्मदिन है आज।
0: क्या नाम है दीदी का?
1: धर्मावती काली चरण।
0: ओके।
1: उसका ओकर बेटा के भी आज के दिन बा।
0: सो हैप्पी बर्थडे कहते हैं।
1: कमलेश काली चरण। एक सुंदर सा गीत डाल देना।
0: हाँ जरूर, प्यार सा गीत।
1: बेटी के नाम से ओकर बहू, ओकर नाती नातिन, ज्यादा नाती नातिन बोकर।
0: ओके।
1: चार गो बेटी, दामाद, चार गो दामाद, ओकर नाती नातिन ढेर बा। एगो बहू, एगो बेटा, और ओकर बेटा के जन्मदिन बा आज कमलेश के।
0: ओके, सो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद
1: तरफ से, लीलो की तरफ से।
0: ओके जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
1: धन्यवाद।
0: And the next gana nanan photo ko sine se yaar chapka lo yahan fevicol se. Yes, fevicol se yeh geet hum chalayenge zarur aap sabhi logon ke naam jo hamare saath jure hue hai. Aur phir Madhav ki or se yeh geet unke papa Kavi, mama Tina, dadi Mala, Pupurina and all Bairab family ke naam. और श्यामा भिखारी जी, ओके, श्यामा भिखारी जी का जन्मदिन है। सो श्यामा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आपके पति रोशन, बेटे हैं जेसन, धनिन, केशव, सासू माँ, ससुर जी, मामा, पापा, दीदी, भाई, फिर भाभी, ब्रदर इन लॉ। और राइट, सो श्यामा भिखारी जी सुबह होल रोज बेल रहती है, आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे, लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस योर वे। और यही प्यार सा गाना हम आरश के नाम करेंगे, और वासा भी हमारा साथ दे रही है। और राइट, इसी के बाद हम चलाएंगे, अभी हम चलाएंगे गीत दबंग टू। यस, फेविकोल से। चलिए एक साथ इस गीत को सुनते हैं और उस गीत पर थोड़ा सा ठुमका लगाते हैं।

0: ओह यस, तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लूंगा मैं फेविकॉल से. Angelo Hans, this song will be for you and for your girlfriend also. And Angel, this song will be for your son Akshay Siudari. Yes, okay, गीत आपके बेटे अक्षय सिउदारी के नाम. फिल्म का नाम है धड़कन. धड़कन का गाना आ रहा है और हंस एंजेलो बहुत खुश है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड के नाम चलेगा ये गीत. यस, ओके, यू कैन शेयर दिस टिकटॉक पेज विद मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इन मॉरिशस दे कैन वॉच अस एंड लिसन एंड वॉच अस लाइव. हाउ डू वी डू अ रेडियो शो. राजा, यू आर वेलकम ऑन रेडियो मॉरिशस. उर्वशी सुकी, इट्स योर बर्थडे. Okay, happy birthday, Urvashi. Lots of love, happiness, best wishes to you. Dhey sara pyar, aashirwad, Urvashi Sukhi. Dil se hum aapko dua dete ki aapki zindagi mein pyar ho, khushiyan ho, bahar hi bahar ho. Aslam Batu, ye geet aapke naam bhi hum chalayenge. Aur yes, Subhi ji, ye geet aapke naam bhi aur yehi gana hum chalayenge. अर्चना के नाम. संगीता अमीरन, दिस गाना फॉर यू. आपकी मामा, फिर सब अमीरन मोहन परिवार. दान आजी, आपकी मामा है कास्टेल में. बहन हेमा, शांति एंड यस एंड ऑल अमीरन एंड मोहन परिवार, ये गीत आपके नाम जाएगा. और जितने लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको लाइन नहीं मिल रही, आपके नाम भी अगला गीत करेंगे. एक दो से लाइन पर उनसे मिलेंगे. हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते.
1: नमस्ते.
0: आपका नाम?
1: I'm
0: sorry?
1: Ramalingam Thailam.
0: Yes.
1: Wedding anniversary.
0: Okay. Happy wedding anniversary. Yes. Okay.
1: Ramalingam Thailam, Loga, Marvin, Marvin, Punam, Kitika, Tashana, Ishwari, Ishwari, Vijayan, Dixon, Karini.
0: Okay.
1: Thank you very much.
0: Thank you, Ji. Happy wedding anniversary. Hans Agent Angelo, आपकी girlfriend भी live है TikTok पर और मैं देख रही है. Thank you for watching me. Hi, Minu. Next gana for you. Hi, Shini. Hi, Tahim. चलिए एक साथ सुनते हैं फिल्म धड़कन का गाना. Yes, ना ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे.

हाय ये प्यार भी ना ये प्यार हमें सपने दिखाता है, प्यार में लोग मजबूर हो जाते हैं, प्यार में लोग रोते हंसते हैं, दैट्स लव, इट्स ग्रेट टू बी इन लव, है ना? यस, एंड यूं ही प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए और मसाला देते रहिए एमबीसी रेडियो की लहरों पे। नेक्स्ट गाना मेरी चांदी तू मेरा सोना तू फिल्म सिलसिले का गाना है। ये गीत ज्योति लक्ष्मी जी के नाम, श्वेता जी के नाम भी, और फिर यही प्यारा सा गीत हम अर्चना जी के नाम भी चलाएंगे। अनिता अपनी कॉम्प्लेक्स से, हाय अनिता जी, दिस विल बी फॉर यू। उमा जी है, उमा जगन्नायकलू, ये गीत आपकी बेटी दृष्टि, दामाद और सब बहादुर और जगन्नायकलू परिवार के नाम। सरोज आपिया, एंजल, श्वेता एंड यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे इन लोगों के नाम भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फ़ोन कर रहे हैं। हेलो फातमा न्यू ग्रोव से है, हेलो दिस गाना फॉर यू। एंड आज शाहीन अमीरवाला का जन्मदिन है, आपने पंजाब से, सो ढेर सारा प्यार फातमा न्यू ग्रोव विशिंग टू शाहीन अमीरवाला, हैप्पी बर्थडे। और यही गीत मौदाबे के अनितालाल जी के नाम, माता जी गीत आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। रियाज जीतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो, चलिए साथ सुनते हैं प्यारा सा गाना। यस, थोड़ा सा डांस करते हैं, सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा ठुमका लगाते हैं। लेट्स डांस ऑन द वेव्स ऑफ एमबीसी रेडियो मॉरिशस।

छम्मा छम्मा गाते रहिए और छम्मा छम्मा में इजाजत दीजिए। चाइना गेट फिल्म का गाना चल पड़ा और ये अंतिम गीत आप सभी के नाम। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। 9 बजे का न्यूज, उसके बाद 9 बजे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद किरण जानकी से स्पीक टाइम मैगजीन, आज की चर्चा, हमारी आपकी मुलाकात होगी आज शाम के 5 से 6 बजे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर पुराने नगमों के प्रोग्राम में। हमें टिकटॉक पर देखने के लिए और रेडियो मोशन पर सुनने के लिए शुक्रिया। इट्स टाइम टू से गुड बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। प्रताप सिंह की ओर से नमस्कार।

0: संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी है टीना। नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरीशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरीशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है। साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। ये गिरावट कई आर्थिक क्षेत्रों में फिर से बढ़ती गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में सुधार का संकेत देती है। मॉरीशस और अमेरिका ने अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए मॉरीशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित है। मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारियों ने एक अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें एक इमारत गिरने जैसी स्थिति बनाई गई थी। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन हालात में अपनी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया। सरकार अब खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए एक ही रणनीति अपना रही है। मूसलाधार बारिश और तेज़ वर्षा के समय के लिए एक राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल अब पूरे मॉरीशस में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों पर लागू किया गया है। ये फैसला कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। श्रम मंत्री रिजा उद्दीन की अध्यक्षता में हुई कई अंतर मंत्रालयी बैठकों के बाद तैयार किया गया ये नया ढांचा अब सभी मॉरीशस कर्मचारियों और शिक्षा जगत पर बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। अब नियम स्पष्ट है और सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट में काम करते हों। कैबिनेट ने यह भी नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडे 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा, ताकि गणेश चतुर्थी पर्व अब बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरीशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है। फेडरेशन ने बताया कि पहले 15 सितंबर की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। और 9 बजे के इन समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में आज ड्रग से जुड़ी समस्याओं पर बात की जाएगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे डॉक्टर नीतीश संत, कोऑर्डिनेटर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल से। तो ज़रूर सुनिए रेडियो मॉरीशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम। और विदेश में ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सेवा शुल्क वसूलने की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरीशस।

0: आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा पर आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वह है मॉरिशस में ड्रग्स और ड्रग्स की समस्या, उसका क्या असर है हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवारों पर, और किस तरह से इन सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नितीश संत। नमस्कार डॉक्टर जी।
2: नमस्कार जानकी जी।
1: और डॉक्टर संत एक मेडिकल अफसर हैं, साथ में आप ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन के कोऑर्डिनेटर हैं, जो नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल का एक विभाग है। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम को आप इस समय रेडियो मॉरिशस

0: मॉरिशस पर सुन रहे हैं, साथ में हमारे फेसबुक पेज पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, और इसके अलावा एमबीसी के टीवी के तीसरे चैनल पर भी आप इस प्रोग्राम को इसी समय लाइव देख सकते हैं। सबसे पहले जब हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपने समय निकालकर इस प्रोग्राम में भाग लेने की स्वीकृति दी। आप हमें ये बताइए कि ड्रग्स जो आज हर बच्चे के लफ्ज में है, हर एक व्यक्ति को पता है कि ड्रग्स से क्या, इसका क्या परिणाम होता है, क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। एक समय था जब ड्रग्स के बारे में बात करते थे तो बहुतों को लगता था कि ये हमारी समस्या नहीं है, लेकिन आज घर से बाहर निकलते ही आपको ड्रग्स की समस्या साफ साफ नज़र आ रहा है, लोगों के चेहरे से, लोगों के चाल चलन से, और फिर जो समस्याएं समाज में हो रही हैं, चोरी, खून खराबा, ये सारी समस्याएं हम सबको छू रही हैं, और फिर क्यों ना कहें हमारे घर में भी आजकल ये समस्याएं उपस्थित हो चुकी हैं। तो फिर ये ड्रग्स हैं क्या चीज़, क्यों अपनी जान को दांव पर लगाकर लोग ड्रग्स के पीछे भाग रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताइए।
1: सबसे पहले हम शुरू करते हैं ड्रग्स क्या है, इसको समझना चाहिए। ड्रग्स वो सब्सटेंसेस हैं जो शरीर, दिमाग और व्यवहार, द बॉडी, द माइंड एंड द बिहेवियर, तीनों को प्रभावित करता है
0: जी।
1: तो पहले के ज़माने में इस पर ज़्यादा विज्ञान ने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, लेकिन पिछले डिकेड्स से वो बहुत एविडेंस बेस रिसर्चर्स हो रहे हैं,
0: मतलब इस तरह के रिसर्च जहाँ पर हमको साफ साफ प्रमाण मिल रहा है,
1: प्रमाण मिल रहा है क्या है ये ड्रग्स। ड्रग्स एक सब्सटेंस है। पहले माना जाता था, जाते थे कि ड्रग्स एक आदत है, एक बुरी आदत है
0: जी, आदत है, नशा है, ये समझते थे,
1: डिजीज ऑफ चॉइस। लेकिन आज के रिसर्चर्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बीमारी है। सो ड्रग्स एडिक्शन को पैदा करते हैं, और एडिक्शन इज अ क्रोनिक ब्रेन डिजीज। ओके, और ये साइंस, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि डिजीज है, और इसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसी कारण जो व्यक्ति लोग, वो जैसे आपने कहा था, ये सारे सामाजिक इफेक्ट्स होंगे, जैसे चोरी, खून, वायलेंस, ये सब होते हैं। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हमें
0: तो यहाँ जब आप कह रहे हैं कि ड्रग एक एडिक्शन है, एक बीमारी है, और इस बीमारी से बचने के लिए आपको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि ये जो बीमारी है ये लोगों, मतलब कुछ लोगों में है पहले से ये प्रवृत्ति कि वो एडिक्टेड हो जाए, और कुछ लोगों में नहीं है, या कोई भी इस समस्या से जुड़ सकता है, कोई भी इस एडिक्शन में पड़ सकता है?
1: इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इसका कारण मालूम होना चाहिए। तो क्या कारण है, क्या मॉडल हम प्रयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं बाय साइकोसोशल मॉडल।
0: ओके,
1: इसका एक सीधी जवाब नहीं है,
0: नहीं है।
1: ओके, बायोसाइकोसोशल मॉडल है। कुछ लोगों के लिए ये एक बीमारी है, जेनेटिक हो सकता है, और जैसे मैंने कहा, शरीर, दिमाग और सोशल, तीन फैक्टर्स हैं। शरीर में कोई डेफिसिट है, कोई बीमारी है, तो इसीलिए वो लोग ये लेते हैं। और जो मानसिक फैक्टर्स होता है, मेंटल फैक्टर्स, वो बहुत कमन है, और स्टडीज़ ने ये प्रूव किया कि यही सबसे ज़्यादा कारण होते हैं कि क्यों लोग ड्रग्स लेते हैं।
0: मतलब कि मानसिक, जब आप कह रहे हैं
1: मेंटल कॉजेस,
0: स्ट्रेस हो सकता है,
1: यस,
0: परेशानी,
1: चिंता, परेशानी, मानसिक बीमारियां जैसे साइकोसिस, एंग्जाइटी, वो भी। और बच्चों में स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज, वो जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं, वो भी कारण हो सकता है क्यों एक, जब एक व्यक्ति बड़ा होता है तो ड्रग्स को यूज़ करता है। अब हमें ये पता करना चाहिए ये कॉजेज हैं, लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो पुश करते हैं व्यक्ति को ड्रग्स लेने के लिए।
0: आपने तीन कहा,

0: था, एक शारीरिक, एक मानसिक
1: और तीसरा सामाजिक, सोशल फैक्टर्स. सामाजिक फैक्टर्स,
0: गरीबी,
1: या गरीबी,
0: बेरोजगारी,
1: बेरोजगारी, लैक ऑफ एजुकेशन, नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस,
0: मतलब कि आपके चारों ओर लोग ड्रग्स ले रहे हैं, आप भी इसका इससे प्रभावित हो सकते हैं.
1: हमें ये समझना चाहिए जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं. पहले प्रकार जो मेंटली फिट हैं, रेजिलिएंट हैं, उसका एजुकेशन ठीक हुआ, कोई बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी नहीं है, कुछ फ्रेमवर्क है, एनकैडरमेंट है. तो डिस्पाइट सामाजिक फैक्टर्स होंगे तो वो व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेंगे, रेजिलिएंट होगा. लेकिन अगर आगे से ही, जैसे मैंने बताया, बायो और साइको सोशल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, तो सामाजिक फैक्टर्स उसको बढ़ावा देते हैं, फिर ये एडिक्शन पैदा होता है.
0: मतलब व्यक्ति जितना कमज़ोर होगा, व्यक्ति में जितनी कमियां होंगी, शिक्षा को लेकर, पारिवारिक जो माहौल है उसको लेकर, मानसिक स्थिति है उसको लेकर, जितनी भी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, और उसके साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द लोग ड्रग्स ले रहे हैं तो इसका असर बहुत जल्द पड़ता है. बहुत लोग इस स्थिति में इस एडिक्शन की ओर बढ़ सकते हैं.
1: हाँ बिल्कुल, हमें ये डिफरेंस करना चाहिए. जब जैसे आपने बोला, बहुत क्वेश्चन है हमारे समाज है में, क्यों ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स को बंद करना चाहिए, एंट्री को बंद करना चाहिए, या शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, या फैमिली में कोई खोट है, कोई कमी है, या व्यक्ति में कोई कमी है. लेकिन हमें एक, वी कॉन्ट ब्लेम वन फैक्टर, या हमें एक फैक्टर को, लेट्स गो,
0: हम सारी जिम्मेदारी
1: नहीं बना सकते.
0: जी हाँ, एक कारण पर नहीं, हाँ. नहीं
1: तो, जैसे मैंने बोला, हमें ये समझना चाहिए कि एक बायोसाइकोसोशल अप्रोच है, भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो इस एडिक्शन को पैदा करते हैं, और कैसे पैदा होता है वो एक, जैसे एक दफ़ा एक आदमी एक ड्रग्स लेंगे, हीरोइन, ब्राउन शुगर लेंगे, वो एडिक्टेड नहीं होंगे, ओके, लेकिन समय के साथ एडिक्शन का फेजेस होता है, उसका सेवेरिटी बढ़ता है. और मैं ये यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इसमें चार चरणों हैं, फोर स्टेजेस. पहले उत्साह, जैसे आपने बोला रिक्रिएशनल यूफोरिया, ओके, वो एक आदमी लेंगे तो वो एडिक्टेड नहीं होगा. फिर जो दूसरा चरण है वो है विस्तार, कंटिन्यूएशन. अगर वो जो आदमी बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स के वजह से ड्रग्स रेगुलरली लेता है, रिक्रिएशनल ओकेजन्स में होता है, तो वो विस्तार, एक कंटिन्यूएशन को पैदा करता है. फिर वो आता है तीसरा चरण, हाँ, नकारात्मक नतीजे, निगेटिव कंसिक्वेंसेस होता है. वो डिस्पाइट वो आदमी निगेटिव कंसिक्वेंसेस को पहचानता है, उसके पैसे नहीं होंगे, वो चोरी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू करता है ड्रग्स यूज़ के लिए
0: लेना.
1: हाँ. और फिर जो अंतिम चरण है वो है मजबूरी, कंपल्शन. और ये करैक्टरिस्टिक, ये विशेषता है, साइकेट्रिक एक करैक्टरिस्टिक है. जब ये प्रेजेंट होता है, ये जो मजबूरी, द कंपल्शन ऑफ टेकिंग ड्रग्स, तब हम ये बता सकते हैं कि द डिजीज हैज बीन एस्टैब्लिश, वो बीमारी है,
0: वो उसको लत लग चुकी है, एडिक्टेड हो चुका है.
1: और इस समय उस व्यक्ति को एक ट्रीटमेंट
0: की
1: जरूरत है, और ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा कैसे.
0: जरूर. आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ड्रग्स की समस्याओं पर बात कर रहे हैं. जैसे ही ड्रग्स का नाम हम लेते हैं तो हज़ारों सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं. आज के प्रोग्राम को शुरू करने में ही हमने बहुत नियमित रूप से सवाल तय किए थे कि हम किस तरह से डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे. लेकिन जैसा कि आपने देखा, ड्रग्स की समस्या, जैसे ही इस समस्या पर बात करते हैं तो हज़ारों सवाल हैं इससे जुड़ी, जिसके जवाब हम पाना चाहते हैं. और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतीश संत, जो कि नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल से हैं, और वहाँ के रिहैबिलिटेशन सेंटर डिवीज़न के ये कोऑर्डिनेटर हैं, और आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, और आज हमारे सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं ड्रग्स से जुड़ी. और इस विषय पर हम गहराई के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज हम ड्रग्स की समस्याओं पर बात कर रहे हैं और हमारे मेहमान हैं मेडिकल अफसर जो कि ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल से हैं और आप हैं डॉक्टर नितीश संत और आप हमें इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जो कि ड्रग्स की समस्याओं से जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब आप मानेंगे कि ये जो ड्रग्स की समस्या है आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, राष्ट्रीय सभा हो, चाहे वो समाज में हो, सड़क पर हो, कोई भी रेडियो का चैनल आप चुन कीजिए, आज कल इसी पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये सच में दिमाग की तरह हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। अभी आपने एडिक्शन की बात की, आपने तीन चरणों की बात की जिससे कि एक व्यक्ति इस समस्या से जुड़ सकता है और वह है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कमज़ोरी। और लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वह व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे वह व्यक्ति कामकाजी हो, किसी भी अच्छे ओहदे पर क्यों ना हो, आप मानेंगे कि इस समस्या के शिकार सभी हो रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो हमें आप इस स्थिति के बारे में बताइए, ये जो वर्तमान स्थिति है जिससे सभी लोग परिचित हैं, आप एक डॉक्टर के हैसियत से जो कि एक रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट डिवीजन से हैं, आप इस हैसियत से इस पर प्रकाश डालिए।
2: जैसे आपने बोला, आपने ठीक बोला, जो ड्रग का समस्या है वो ऑल लेयर्स ऑफ द सोसाइटी पर प्रभावित हुआ है
1: जी।
2: लेकिन जो इल इफेक्ट्स हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, वो हमें ओल्ड लेयर्स में दिखाई नहीं देता
1: दे,
2: क्योंकि हमने समझा कि एडिक्शन क्या होता है, वो ड्रग्स क्या होता है, सब्सटेंसेस क्या होती हैं, और जो प्रभाव हैं, जैसे हमने बोला चरण हैं, स्टेजेस हैं, वो शुरू में आ सकता है या बाद में आ सकते हैं। इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए मैं रिफरेंस करूंगा जो अध्ययन मॉरिशस ने किया, स्टडीज़ ने किया। स्टडीज़ बोलते हैं कि हमारे समाज में, हमारे टापू में लगभग 55,000 लोग ने एक ड्रग का प्रयोग किया एक बार उनके जीवन में,
1: इसको चखा है
2: उसके। हाँ, मैंने नहीं बोला कि एडिक्टेड है, हमने ये समझा, ये डिफरेंट बात है। वो उसको लिया है, जो इसका प्रयोग किया है ड्रग्स, और जो स्टैटिस्टिक बोलते हैं वो 11% हमारे जो युवक संघ में प्रेजेंट हैं, युवकों वो यूज़ करते हैं, चाहे वो एडिक्टेड हो या नहीं हो, वो यूज़ करते हैं 11%। और हमने देखा कि लगभग 7-8% महिलाओं में भी प्रेजेंट हैं
1: जी।
2: और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो फिगर्स हैं वो 2-3 साल से हैं, और नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल, हमारे एजेंसी और भी फ्यूचर अध्ययन, फ्यूचर स्टडीज़ का में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने शुरू कर दिया यह काम। तो मैं बोलना चाहूँगा जो स्टडीज़ आ रहे हैं हमारे नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल से, वो हैं स्टडीज़ अमॉन्ग सेकेंडरी स्टूडेंट्स टू नो द प्रिवेलेंस ऑफ ड्रग्स एंड कप सर्वे, और जो तीसरा स्टडीज़ हैं वो हैं हमारे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो हम बाद में बात करेंगे, वो उसका इफ़ेक्टिवनेस, उसका वो इफ़ेक्टिव है, उसका प्रभाव क्या है, नतीजे क्या हैं, उस पर भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण में हम जा रहे हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं पिछले अध्ययनों से कि ये, जैसे आपने बोला, ये जो ड्रग का समस्या है वो प्रेजेंट है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोसाइटी में।
1: और इसका, ये जो ड्रग्स हैं, आपने कहा कि इस पर अध्ययन चल रहे हैं, साथ में जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है कि अध्ययन बहुत समय से चल रहा है, अलग अलग स्तर पर जब ये हमारे समाज को प्रभावित करता था, लेकिन आज जो हमारे सामने हैं, जो दृश्य हमारे सामने हैं, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत तेज़ी से हमारे समाज को छू चुकी है, हमारे समाज को प्रभावित करने लगा है, और जल्द से जल्द इस पर काबू पाने की आवश्यकता है। तो क्या अध्ययन के साथ साथ आप लोग इस पर इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, इसको लागू भी कर रहे हैं?
2: इम्प्लीमेंट का जो सेक्शन है वो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन, वो ट्रीटमेंट जैसे आपने बोला इस पर है, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ हमारे नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल पर। वो इस पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर नायक, और इस उसके नीचे डिविजन्स होते हैं। तो पहला डिविजन है वो ड्रग सप्लाई डिविजन, ड्रग सप्लाई रिडक्शन डिविजन। तो वो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर से काम करते हैं ताकि ड्रग्स हमारे समाज में न बढ़े,
1: मतलब कि ड्रग्स की जो समस्या है उससे निपटने के लिए न सिर्फ आपका ये जो डिवीजन है ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल का, बल्कि आपके साथ साथ बहुत से अन्य साझेदार, पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स काम करते हैं।
2: नाडेक वो एक एजेंसी है, इसमें अन्य डिविजन्स होते हैं जैसे आपने बोला, और इन अन्य डिविजन्स में हम डिफरेंट पार्टनर्स, स्टेक होल्डर से काम करते हैं एक नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन प्लान करने के लिए। जो जो पहला डिविजन है वो ड्रग सप्लाई रिडक्शन है, वो उस ये डिवीजन काम करते हैं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे पुलिस, एमओआरए, कस्टम्स। वो देखते हैं कैसे क्योंकि ड्रग्स जो आते हैं वो बाहर से आते हैं और मॉरिशस में भी वो उसका मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे सिंथेटिक ड्रग्स। तो इस पर काबू करना चाहिए ताकि ये जो ड्रग्स अवेलेबल ना हो, ये पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन है वो डिवीजन वो है पॉलिसी रिसर्च डिवीजन। पॉलिसी रिसर्च डिवीजन में हमें जैसे हमने बात किया अध्ययनों, वो रिसर्च एविडेंस बेस जो नेशनल स्टेटस है वो इस पर हमें फिगर्स होना चाहिए ताकि हमें पता चले किस दृष्टि में हमें जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। इसीलिए इसके लिए हमें एक टीम है, डिवीजन है रिसर्च के लिए, रिसर्च और पॉलिसी। जब रिसर्च हो जाएंगे तो पॉलिसी का हम डायरेक्ट इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन। फिर तीसरा डिवीजन है वो जो मेरा डिवीजन है वो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। हमें ड्रग सप्लाई रिडक्शन बोला, फिर ड्रग डिमांड रिडक्शन जैसे मैंने बोला पहले शुरू से, वो हमें अपने मॉरिशन जनता को रेजिलिएंट बनना चाहिए। तो ड्रग डिमांड रिडक्शन में दो डिविजन्स हैं, ट्रीटमेंट डिविजन और प्रिवेंशन डिविजन। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेक होल्डर्स और किन मिनिस्ट्री से हम काम करते हैं, और जो प्रिवेंशन डिविजन है वो एजुकेशन, अवेयरनेस, नेशनल करिकुलम, ये सब इन सब में काम करते हैं। अन्य भी मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा का मंत्रालय, वो टर्शियरी एजुकेशन का मंत्रालय और स्पोर्ट्स का मंत्रालय, जहाँ पर हम जनता के नज़दीक हो और हमें उन लोगों को मेंटल टूल्स दे सकते हैं, लाइफ स्किल दे सकते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो एक नाडेक एक नेशनल प्रिवेंशन प्रोग्राम की ओर बढ़ रही है, ताकि एक ही कोऑर्डिनेटेड प्लान के अनुसार से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स द सेम ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं। ओके, और जो लॉस डिवीजन है वो है HIV एंड एड्स केयर कोऑर्डिनेशन डिवीजन, क्योंकि एक कोलैटरल डैमेज है जो ड्रग यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला ड्रग्स न केवल एक बीमारी ऑफ चॉइस है, लेकिन डिफरेंट डोमेन्स का भी उसका संबंध होता है। तो HIV और जो अन्य भी इन्फेक्शस डिजीज हैं जैसे हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियों को हम देखते हैं कैसे एक नेशनल एक्शन प्लान के साथ हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज ले सकते हैं। और जो मेरा डिवीजन है इस पर हमें थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। मेरा डिवीजन है ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए ट्रीटमेंट एक स्पेक्ट्रम पर होता है, एक कंटिन्यूटी पर होता है। वो जैसे हम
1: मतलब कौन किस स्थिति पर है उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट देंगे।
2: जैसे हमने बोला सीवियरिटी ऑफ एडिक्शन, तो एक स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूटी पर होता है। पहले हार्म रिडक्शन का अप्रोचेस है। हार्म रिडक्शन क्या है वो जैसे हमने बोला कि भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं

0: जो एडिक्शन को पैदा करता है. तो एक ही मोडालिटी, एक सिंगल मोडालिटी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करना चाहिए, जैसे कि नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम, मेथड इंसेप्शन थेरापी, ट्रीटमेंट, ये सब हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज. फिर ट्रीटमेंट आता है. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में दो अंग होते हैं. पहला है वो है डिटॉक्सिफिकेशन. हमें अपने पेशेंट को जानना चाहिए. अगर ज़्यादा समय नहीं हुआ वो ड्रग्स उसने शुरू किया ड्रग्स लेने के लिए, फिर एडिक्शन सीवियर नहीं हुआ, वो इंजेक्ट नहीं कर रहा है, सोशल डैमेजेस नहीं है, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन को एडवाइस कर सकते हैं. अगर वो एक बहुत सालों से ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें एक सब्स्टिट्यूशन थेरापी पर की ओर जाना चाहिए. और तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट. अगर कोई भी व्यक्ति हालूसिनेशन हो रहा है, सोशल डैमेज, वो व्यक्तित्व में नहीं है, द रियलिटी में नहीं है, तो हमें एक लगातार उसको जीवन भर ट्रीटमेंट देना चाहिए. तो एक मेंटेनेंस थेरापी है. ये en grosso modo on the treatment modalities. Okay. And then we have the treatment modalities, we have the rehabilitation. ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन आता है. रिहैबिलिटेशन आता है क्योंकि हमें उस व्यक्ति को फिर से जीना सिखाना पड़ेगा,
1: फिर से समाज में अपनी जगह पाने के लिए उसको मौका देंगे.
0: हाँ, ले रिपेयर क्या है, इमोशनल रिहैबिलिटेशन, अपने सेल्फ व्यक्तित्व, सेल्फ नियंत्रण, कंट्रोल, अपने व्यक्तित्व को वैलोराइज करना. ओके. और जैसे जब जब हम ये करेंगे तो वो ये एक एजुकेटिव रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस है. इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, अंतर करना चाहिए ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में. रिहैबिलिटेशन में वो एक सामाजिक लेवल पर होता है.
1: जी.
0: एक सेंटर में शुरू कर सकते हैं, रेजिडेंशियल सेंटर, फिर साइकोलॉजिस्ट होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे. जैसे नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल में हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि एक सेम वेवलेंथ पर हम ये सारे सुविधाएं दे सकते हैं. वो ये है रिहैबिलिटेशन. उसके बाद रीइंटीग्रेशन होते हैं, समाज में फिर उसको
1: शामिल करना.
0: हाँ, उसको एक काम दिलाना, हाउसिंग ये दिलाना. तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में एक अम्ब्रेला में आता है. जैसे अभी व्यक्तित्व में हम ये डेवलप कर रहे हैं एक नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन.
1: डॉक्टर साहब, जब आप रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं इतने विस्तार से, तो सबसे पहले तो जो ज्वलंत समस्या है वह ये कि क्या सभी लोग रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते, उनके परिवार बहुत सी कोशिशें करते हैं उनको वहाँ भेजने के लिए, कुछ लोग जाते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन पाने के बाद वो फिर से इस समस्या में गिर जाते हैं, और उन्हें खुद इस बात का दुख होता है कि वो अपने माँ बाप, वो अपने परिवार, अपने पति या अपनी पत्नी को निराश कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने उनके नज़रों से गिर जाते हैं. उन्हें इस बात का एहसास होता है लेकिन फिर भी वो फिर से उठ नहीं पाते. क्या आपको लगता है कि एक बार कोई इस लत से जुड़ जाए तो, और अगर उसके एडिक्शन तक चले जाए, तो क्या उसके लिए उम्मीद है? बहुत सी ऐसी समस्याएं हमको सड़क पर, अगर आप अभी से निकलेंगे, अगर साउथ तक जाएंगे, तो कितने सारे लोग आपको ऐसी स्थिति में नज़र आएंगे जो कि लगता है कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है. तो आपको क्या लगता है?
0: इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, क्योंकि ताकि हमें ये जो मैसेज है वो पब्लिक को समझ में आए. जैसे हमने बोला कि एडिक्शन एक क्रोनिक रिलैप्सिंग डिजीज है, क्रोनिक ब्रेन डिजीज है जो रिलैप्सिंग है. ये एक
1: रिलैप्सिंग का मतलब
0: रिलैप्सिंग है वो बाद में आ सकते हैं. ओके. लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं वो सारा नकारात्मक नतीजे नहीं, लाइक नहीं हो सकते हैं, वो कंट्रोल भी हो सकते हैं. इसको समझने के लिए हमें कंट्रास्ट करना चाहिए नॉन क्लिनिकल डिजीजेस से, जैसे कि डायबिटीज़. जो आपको पता है, अगर हम स्टैटिस्टिक पर मॉरिशस में देखें बीमारियों पर, तो डायबिटीज़ और नॉन क्लिनिकल डिजीज

0: सबसे ज्यादा है एडिक्शन हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से. लेकिन क्यों एडिक्शन ज्यादा प्रसिद्ध है और नॉन कम्युनिकेबल प्रसिद्ध नहीं है फेमस है? क्योंकि जो एडिक्शन उसमें इल इफेक्ट है, नकारात्मक सामाजिक सोशल इल इफेक्ट,
1: बुराइयां सामने नजर आती हैं, हाँ, हमको प्रभावित करता है.
0: जैसे एक आइसबर्ग होता है, टिप्स को हम देख रहे हैं,
1: पूरी समस्या को नहीं देख पा रहे.
0: अगर हम टिप ऑफ द आइसबर्ग को टैकल करेंगे तो जो पूरा समस्या वो नहीं जाएगी. अगर हम एंटर करेंगे डायबिटीज से, ये भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक डिजीज है, रिलैप्सिंग डिजीज है. डायबिटीज एक व्यक्ति को हुआ, ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर अगर वो जाएंगे जैसे दीपावली के अवसर पर वो मिठाएंगे खाएंगे, हाँ, तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा. तो ये एक रिलैप्स है,
1: जरूर
0: एक रिलैप्स है. जैसे हमें
1: मतलब हर एक समस्या, हर एक जो बीमारी है उसमें ये जो प्रवृत्ति है वो हो सकता है.
0: हाँ, ये क्योंकि आपका सवाल है रिलैप्स होता है, पहले रिलैप्स को पहचानना चाहिए. अगर हम एडिक्शन और ड्रग्स को एक साइंटिफिक रूप से देख रहे हैं तो हमें ये रिलैप्सिंग पॉथ को समझना चाहिए. लेकिन डायबिटीज से वो भी नकारात्मक इफेक्ट्स हैं, डायलिसिस पर जाते हैं, एम्पिटेशंस होते हैं, कौजा की बीमारी होती है,
1: परिवार को तनाव होता है,
0: लेकिन हमें हमारे ओपिनियन, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नकारात्मक निगेटिव नहीं है
1: जी.
0: लेकिन हम अगर हम ड्रग्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक बायास है, न मॉरिशस में नहीं पूरे संसार में, हाँ. वो बायास है, एक रिलैप्सिंग डिजीज है. इसको कंट्रोल अब कैसे कंट्रोल करें? मैं बहुत सिंपल रूप से मैं दो तीन
1: उदाहरण
0: या से मैं एक्सप्लेन करूँगा. पहले जब एक व्यक्ति को एडिक्शन होता है तो व्यक्ति अगर नॉर्मल पेशेंट है या एडिक्टेड पेशेंट, एनी इंडिविजुअल, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके मेंटल स्टेज पर, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, रिलैप्स. हमें भी है, मुझ में भी है वो. लाइक प्री कंटेम्पलेशन में हमें आदमी उसको वो पहचानता है कि वो नहीं पहचानता है कि वो एक बीमारी है, एक रिस्क है. कंटेम्पलेशन में वो पहचानता है लेकिन कुछ भी नहीं करता. प्रिपरेशन में वो शुरू करता है करने के लिए, जैसे एग्जाम्स हैं तो शुरू किया, रिवीजन, ऑल दिस थिंग. फिर एक्शन उसका जो आधा एक ट्रीटमेंट है, आधा एक एक्सरसाइज है, उसका शुरू करते हैं. फिर मेंटेनेंस होता है, फिर रिलैप्स होते हैं. तो नॉर्मल लाइफ में, सामाजिक लाइक डेली लाइफ में ऐसे होता है. तो एडिक्शन में भी उसका ये फॉर्मेट, ये पैटर्न
1: है,
0: उपस्थित है. तो अब डिपेंड्स होता है किस सीवियरिटी ऑफ एडिक्शन पर. अगर वो सीवियर है तो ज़्यादा नकारात्मक, ज़्यादा रिलैप्स होंगे और उसका ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए. मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट. अगर वो जैसे मैंने बोला ऑल द लेयर्स ऑफ द सोसाइटी, वो एक बैंक में काम करता है, वो बाजार में काम करता है, वो काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं, तो लेकिन लत का प्रॉब्लम है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो जो ट्रीटमेंट है वो अलग रूप से होते हैं. वो ट्रीटमेंट है, रिलैप्स भी होंगे. अगर तनाव है, एंग्जाइटी है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो शायद वो फिर से सिगरेट फिर से सिंथेटिक ले सकते हैं एक या दो बार. लेकिन उसको उस व्यक्ति को फिर से ट्रीटमेंट में लाना चाहिए ताकि ये मेंटेनेंस रिलैप्स स्टेज पर ज़्यादा समय में नहीं होंगे. तो अगर हम ये साइंटिफिक रूप से ट्रीटमेंट को देखेंगे तब पता चलेंगे. क्योंकि बहुत बहुत से आपने बोला बहुत से पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो अपने बच्चों को ट्रीटमेंट पर लाता है. ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट दवाई, सोने के लिए, खाने के लिए, हैलुसिनेशंस को दूर करने के लिए
1: कुछ दिनों तक.
0: हाँ, लेकिन ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग को हम अटैक कर रहे हैं,
1: जड़
0: से नहीं. वो बिनीफ द आइसबर्ग बहुत सामान्य प्रॉब्लम है,
1: उन तक पहुँचना है, वहाँ पर सुधार लाना है
0: और उसका सोल्यूशन. काली डॉक्टर या मेडिकल पर्सनल नहीं, नहीं होता है, एक सामाजिक, एक संपूर्ण रूप से जो डिफरेंट फैक्टर्स है,
1: एक सोशल सपोर्ट चाहिए उसको।
0: तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट

0: है, हमारे जो मुख्य स्टेक होल्डर है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, और इनमें डिफरेंट ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं
1: जी।
0: तो जब हम एक पेशेंट आता है तो हमें न केवल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे मॉरिशन में टाबू है।
1: जी हाँ, लोग सोचते हैं अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपका दिमाग
0: वो
1: ठीक नहीं
0: टाबू है, लेकिन अगर ये दोनों होना चाहिए। और मॉडर्न मेडिसिन ने बोला न केवल एडिक्शन में ये होना चाहिए लेकिन अन्य भी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो शिक्षित बहुत जो एक्सेप्ट करने के लिए दवाई को से कंप्लायंस कर होने के लिए ये तब उस काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो एडिक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से होना चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेटिकल बिहेवियर थेरेपी उसको बोलता है, मोटिवेशन रिव्यूइंग, क्योंकि वो नर्व्स मैंने ट्रेनिंग किया है इन डिफरेंट इंटरवेंशन पर
1: जी।
0: और वो लाइक वेरी सक्सेसफुल होता है।
1: तो जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आप काफ़ी विस्तार में जा रहे हैं, जो कि एक डॉक्टर से हमें उम्मीद है कि आप इतने विस्तार में जाएंगे। जब आप कह रहे हैं कि एक रिलैप्सिंग की बात आप कर रहे थे कि मतलब कि फिर से इस समस्या में गिर जाना, और आपने सिगरेट की बात की, आपने सिंथेटिक की बात की, तो क्या ये जो ड्रग्स की अलग, इसके जो अलग अलग रूप हैं, ड्रग्स आज इसके बहुत सारे रूप हैं, तो क्या ये रिलैप्सिंग या फिर कोई भी ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन हो, इसका संबंध है किस प्रकार का ड्रग व्यक्ति ले रहा है? पहले तो हमें ड्रग्स के बारे में बताइए, कौन कौन से प्रकार के ड्रग्स मॉरिशस में हैं?
0: ओके, तो जो अध्ययन मैंने बोला वो उसने उस पर भी विभाजित है कितने ड्रग्स सबसे प्रसिद्ध हैं और कम प्रसिद्ध हैं। जो पहला है वो बहुत सालों से है, वो कैनाबिस है मॉरिशस में। और जब हम इस पर बात करेंगे तो वो अंतर करना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, मेडिकल कैनाबिस नहीं है। जैसे वेजिटेबल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं तो इसको ज़्यादा नशेरी बनाने के लिए उसको मॉडिफाइड किया हुआ है, क्योंकि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरेंसिक लैब से मिलता है। इस जो कैनाबिस है वो इसमें ज़्यादा THC होते हैं और ज़्यादा हालुसिनेशन, ज़्यादा नशा होता है, तो इस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो कैनाबिस वो ठीक नहीं है। ओके, वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल कैनाबिस, तो ये एक ड्रग है और इसका इल इफेक्ट है। ये पहला, बहुत सालों से पहला पर आता है। फिर दूसरा है हीरोइन, ब्राउन शुगर, वो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, अभी वर्ल्ड वाइड पर कम हो रहा है लेकिन मॉरिशस पर अभी भी है और दूसरे पोजीशन पर है,
1: महंगा भी है, सब की पहुंच तक नहीं जाता।
0: हाँ, दूसरे पोजीशन पर है। और अब तीसरे पोजीशन पर आता है सिंथेटिक ड्रग्स, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, क्यों प्रसिद्ध है वो तीसरा है, लेकिन बहुत लाइक जैसे बोला वो सस्ते भी हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर हम लोकल भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिटर्जेंट्स, डिफरेंट परफ्यूम, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से उसका वो एक गैरेज में बना सकते हैं, लैबोरेटरी क्लैंडेस्टाइन में बना सकते हैं, और जिसका दुष्प्रभाव होता है, द इल इफेक्ट्स, वो ज़्यादा शार्प होते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है,
1: मतलब उसका ज़्यादा असर पड़ता है, तेज़ी से असर पड़ता है और मतलब कि गहरा असर पड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल, जो अंतर है दो फर्स्ट और दो पोजिशन का असर है, वो कुछ समय ले सकते हैं और उन ड्रग्स से ट्रेडिशनल ओवरडोज भी हो सकते हैं जैसे हीरोइन, लेकिन सिंथेटिक हमें जानना चाहिए कि वो एक एडिक्टोलॉजी समस्या है, लेकिन न केवल एडिक्टोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी समस्या भी है, टॉक्सिसिटी करती है, तो वो जो पेशेंट है वो ICU में जा सकते हैं, वो ब्लीड हो सकते हैं,
1: अचानक मृत्यु भी हो सकती है।
0: हाँ, तो ये वो सिंथेटिक है। फिर जो अन्य भी ड्रग्स जो प्रेजेंट हैं हमारे समाज में, वो जैसे सीजनल मार्केट पर आता है, लाइक कोकाइन, मेडिकेशंस, डाइवर्शन ऑफ prescribed medication, and इन सब drug Mauritius में है।
1: अच्छा, और अभी आपने support की भी बात की कि जो लोग ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं उन्हें सच में उस समस्या से बाहर निकालने के लिए एक पूरा सहयोग चाहिए, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, राष्ट्रीय सहयोग, और फिर आप जैसे professionals भी हैं यहाँ पर जो कि उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको

0: हम रिटेट कर सकते हैं। और आजकल हम देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और फिर जो ड्रग्स ले रहा है किस तरह से उसको अपमानित किया जाता है, किस तरह से उसको शर्मिंदा किया जाता है। आपको क्या लगता है हमारे समाज को किस तरह से ऐसे लोगों के प्रति व्यवहार करने चाहिए? और वो व्यक्ति जब इस तरह के हरकतें होती हैं तो ये सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगर वो व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य होता तो क्या आप ऐसा करते? तो आपको क्या लगता है, जो कि आप ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से जुड़े हैं, जब एक व्यक्ति का बर्ताव ड्रग्स से जुड़कर समाज को अचंभित करता है तो फिर समाज को कैसे उसके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए?
1: सबसे पहले हमें एजुकेशन का अवेयरनेस रेज करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं एम्फासिस देना चाहता हूँ कि ड्रग को समझना, क्योंकि अभी भी ताबू है,
0: जी
1: अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ। लेकिन एक बीमारी है, अगर हम ये एक बीमारी के हैसियत से हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमें पब्लिक का, पेशेंट्स का मदद कर पाएंगे। अगर हमें बोला कि ये बीमारी नहीं है, ये एक सीधी एक बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो हम ताबू होंगे, स्टिग्माटाइजिंग होंगे
0: और
1: तो
0: उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे,
1: फिर मदद नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक, क्योंकि ये नई बीमारी नहीं है। साइंस ने अभी एविडेंस बेस्ड उसको प्रूव किया, लेकिन बहुत सालों से थे ड्रग्स, पास भी में थे
0: जी,
1: प्रेजेंट में है और फ्यूचर में होंगे,
0: उसका रूप बदल रहा है।
1: एडिक्शन जैसे बोलता है, वो पहले सिगरेट हुआ करते थे, अल्कोहल शराब करते थे, फिर गैम्बलिंग होते हैं, हॉर्स रेसिंग, जुआ,
0: ये सारी कुछ लत ही है, नशा ही है।
1: और मॉरिशस इंडिपेंडेंस से पहले भी जो लाइक इंडिया में होते हैं और भी डिफरेंट कल्चर्स कंट्रीज में होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इंसान होगा ह्यूमन, वहाँ पर पैरेलल वो ये एक एक एक एडिक्शन होते हैं, क्योंकि ये एक क्यूरोसिटी है ह्यूमन नेचर के यहाँ। और ये है, अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसका दुष्ट प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉल्यूशंस से आ सकते हैं। अगर हम सेंसेशंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, एक पेशेंट ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, वो रास्ते पर जा रहे हैं, वो हमें फिल्म वीडियो फिल्मिंग कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया, सबसे पहले एक ब्रीच ऑफ ए लॉ होता है।
0: जी हाँ, ये करना
1: लीगल फ्रेमवर्क में ये एक्सेप्ट नहीं है,
0: ओके, क्योंकि ये पब्लिक
1: है, ये पब्लिक है, ओके, उसके घर में नहीं है, पब्लिक में है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। दूसरे, इज इट लाइक ये सही बात है कि नहीं, सही बात नहीं, हाँ। है, क्योंकि अगर इसके हम फिल्म कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए, हमने देखा हमारे बच्चे हैं, हाँ। हमारे नेफ्यू हैं, तो कैसे, हाँ,
0: कैसे
1: लगेगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, क्योंकि ये जो आप फिल्म कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जाए, वो किसी और के बच्चे हैं समाज में, उसको लाइक लैंडिंग हेल्पिंग हैंड के वजह फिल्म कर रहे हैं,
0: उसको शर्मिंदा कर रहे हैं।
1: और जब से हमने बोला, हमने समझा एडिक्शंस क्या हैं, बीमारियां क्या हैं, ओके, अगर ये एक यूथ हैं, वो अपने जीवन को बदल चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, फिर एक बैंक में उसको काम मिला हुआ है, तब ये वीडियो सालों से सोशल मीडिया पेज पर होंगे,
0: ज़रूर,
1: तो ये ठीक नहीं है अगर हम उसके जगह में हैं। तो इसीलिए सेंसेशन क्रिएट करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम अगर ये डेफ में जाएंगे, देखेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, कैसे उसका सामाजिक रूप, जैसे हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें मदद करना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, काउंसलिंग हॉटलाइन है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हॉटलाइन है,
0: आप वहाँ फोन कीजिए, उनको संपर्क कीजिए, 800 ये हॉटलाइन है,
1: 800 8 0 0 10 और 22।
0: 800-10-22 ये एक हॉटलाइन है जहाँ पर आप फोन कर सकते हैं
1: और काउंसलिंग और कैसी डायरेक्शन, क्या ट्रीटमेंट होना, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर फैसिलिटीज हैं, ओके और डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट लोकल एरिया हेल्थ सेंटर्स पर भी जा सकते हैं. वहाँ एक जो मेडिकल पर्सनल है वो दृष्टि देंगे, डायरेक्शन देंगे कहाँ पर जाना है अपॉइंटमेंट. लेकिन अगर सीरियस एडमिट

0: होंगे, रेफरल होंगे, अगर शेष नहीं है लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट, तो वो हमारे केंद्रों में जा सकते हैं। तो ये है, ये करना चाहिए, और हमें ये ट्रीटमेंट के अनुसार, लेकिन एक सामाजिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इन सब निगेटिव प्रैक्टिसेस को हम बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अन ह्यूमन राइट्स बेस पर और बहुत साइंटिफिक रूप से जाना चाहिए।
1: ज़रूर। और फिर जब हम ऐसी समस्याओं पर बात कर रहे हैं, तो पहला सवाल यही है कि आप लोग जब ड्रग्स की समस्याओं को घटाना चाहते हैं, इसके इसके जो परिणाम है, नतीजे हैं, उसको घटाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं? चैलेंज हर क्षेत्र में है, और ड्रग्स के क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा है।
0: और भी ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं, ताबू हैं, स्टिग्माटाइजेशन है, और वो जो चैलेंजेस हैं वो ड्रग्स को का समाधान करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इनपुट ज़रूरी है, उसका कोलैबोरेशन ज़रूरी है। इसीलिए सरकार ने ये नादेक, नेशनल एजेंसी ड्रग कंट्रोल का क्रिएट किया, एक अम्ब्रेला एजेंसी है, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठित करके हमें एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स की तरह जाना पड़ेगा। ओके, एक ऑब्जेक्टिव को का
1: हासिल
0: करना पड़ेगा। ओके, तो स्टेक जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे आपको पता है डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी हैं, और डिफरेंट मंत्रालयों के डिफरेंट एनजीओज हैं, उसका उनको रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा, कोई कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में कम है, तो ये जो नेशनल एजेंसी कंट्रोल, ये सारी सुविधाएँ, जैसे आपने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये हम ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि एक नई एजेंसी है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं, दिन दुगने रात चौगुने
1: हाँ हैं।
0: ये सच है, क्योंकि हमारे काम चार पाँच बजे फिनिश
1: नहीं
0: होता, हमें घर पर भी काम करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स का, सब कोऑर्डिनेशंस का, वो निरंतर रूप से लगातार हम कर रहे हैं। और पहले में ये एक्सपेक्ट करना चाहिए ये ऐसे ही होंगे, लेकिन बाद में अगर हम रेस्पॉन्सर्स, ये जैसे हमने बोला ड्रग का प्रॉब्लम घटेंगे हमारे समाज में, तब ये सारे कोशिशें का फल हम मिलेंगे, हमको मिलेंगे।
1: ज़रूर। देखते देखते हम प्रोग्राम के अंत तक आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, आज हम डॉक्टर नितीश संत से बात कर रहे थे, और ये देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे ड्रग्स से जुड़कर, तो क्या क्या काम किया जा रहा है, क्या करनी चाहिए, और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपने ज़रूर इस बात का अनुभव किया होगा, इसका एहसास आपको हुआ होगा कि ड्रग से निपटने के लिए ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सिर्फ एक इकाई है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं, मतलब कि इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, क्यों इंसान इस समस्या से जुड़ रहा है, कैसे उसको निकाला जा सकता है, साइकोलॉजिकली कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं, फिर इसका जो कानूनी रूप है, किस तरह से इसको घटाया जा सकता है, बहुत सारे चरण हैं इस पर बात करने के लिए। तो आज रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित थे, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, और आप सुनने और देखने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ तीना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस और अमेरिका ने अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित है। मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारियों ने एक अभ्यास में हिस्सा लिया जिसमें एक इमारत गिरने जैसी स्थिति बनाई गई थी और इस दौरान उन्होंने आपातकालीन हालात में अपनी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास इस लंबे समय के समझौते के तहत होने वाले सहयोग का एक हिस्सा है जिसमें अनुभवों का आदान प्रदान और विशेष प्रशिक्षण भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने श्रम मंत्रालय को मॉरिशस कामगारों को कनाडा में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये पहल फ्रेंच भाषा बोलने वाले कामगारों की गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की गई है। इस कनाडियन परियोजना का उद्देश्य ओटावा को फ्रेंच भाषी आवृजन को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता देना है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और फ्रेंच बोलने वाले नए लोगों को अल्पसंख्यक फ्रेंच समुदायों में स्थायी रूप से बसने में मदद करना है। साथ ही मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना है और इस परियोजना का वित्त पोषण इमिग्रेशन रेफ्यूजी ए सिटोयंटी कनाडा द्वारा किया जाएगा जो इन मामलों के लिए जिम्मेदार संघीय मंत्रालय है। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। और विदेश में ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से सेवा शुल्क वसूलने की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। कुचियों स्ट्रीट सिटी मैडलेन थ्रोंगबॉमी 40 साल के 40 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश्वर किसनारायण, श्री जगदीश्वर किसनारायण जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर कुचियों स्ट्रीट सिटी मैडलेन थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना। On the hour, every hour, Radio Mauritius.

हुज्जाज कराम को किस तरह हज अदा करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू फरमाएंगे जामा मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साहब कादरी रज़वी दामद बरकातुमालिया की ज़बानी। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक की चंद आयत मुबारक की तलावत से करते हैं। बाग़ौर अदब समात करके अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ।

0: हज के 5 अयाम 8 से 12 जिलहिज्जा तक हुज्जाज कराम को किस तरह मनासिक हज अदा करना चाहिए, आइए समाप्त कीजिए नसीहत आमेज और पुरतासिर बयान मुफ्ती मोहम्मद साकादी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया की ज़बानी।
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा अल-मुज्तबा अल-मुर्तज़ा الأمين على وحي السماء أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأسعد السعداء وأكرم الكرماء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء

अल मसालिक फिल मनासिक में है, इज़ा अराद अल मुहरिम अल हज्ज मिन मक्का अन यतूफ़ व यसअ क़ब्ल अन यअती मिना व युक़द्दिम अस सअय अला तवाफ़ अल इफ़ादति बाद तवाफ़ अल ततव्वु जाज़ ज़ालिक, कि जब मुहरिम ने मक्का मुकर्रमा से हज का एहराम बांधा और हज का इरादा किया तो उसे चाहिए कि वो तवाफ़ करे और मिना आने से कबल सई करे, और ये सई तवाफ़ इफ़ादा पर, तवाफ़ ज़ियारत पर मुकद्दम हो, और ये सई नफल तवाफ़ के बाद हो तो ये जायज़ है। उसके बाद मिना की तरफ जाना और नौ की रात मिना में गुजारना ये सुन्नत है, और न गुजारना बल्कि मक्का में या कहीं और नौ ज़िलहज की रात गुजारना मकरूह है। चुनाचे लुबाबुल मनासिक में है, इन बात अब मक्कता तिलक लैलत जाज़ा व असा, अगर नौ ज़िलहज की रात मक्का मुकर्रमा में गुजारी तो ये जायज़ है, लेकिन उसने बुरा किया और ख़िलाफ़ सुन्नत किया। मिना में पांच नमाज़ें ज़ोहर असर मगरिब और इशा और फजर पढ़ना सुन्नत है। जब मिना में दाखिल हों तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिना फ़म्नुन अलैया कमा मनंता अलल औलिया। फिर पूरी रात ज़िक्र व अस्कार में, तस्बीह व तहलील में, तिलावत क़ुरान में, तौबा और इस्तिग़फ़ार में, और दुरूद व सलाम और नवाफिल में और सुजूद में बसर करें, और फिर सुबह के वक्त नमाज फजर पढ़कर हस्ब मामूल दुआओं में मशगूल हो जाएं, और सूरज निकलने के बाद अराफात की तरफ रवाना हो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक वकूफ़ अराफा के वक्त की इब्तिदा होती है जवाल के बाद से, और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक पूरा दिन वकूफ़ अराफा का दिन है, और चारों आइम्मा के इत्तिफ़ाक़ राय से ये वक्त दस ज़िलहज की तुलूए सुबह सादिक तक होता है। ये वकूफ़ अराफा हज के फ़राइज़ में से है, जैसे कि मालूम है कि फ़राइज़ुल हज सलासा इहरामुन व तवाफ़ुन व वकूफ़ुन बिअराफा। हज के बुनियादी फ़राइज़ तीन हैं, इहराम है, तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ इफ़ादा है, और वकूफ़ अराफा है। सो वकूफ़ अराफा के होने से हज होगा, ना होने से ना होगा, चाहे वो एक लहजा के लिए हो। फिर तुलूए सुबह सादिक के बाद से जो लोग मिना से रवाना हुए और अराफात पहुँचे,

दिन भर वो इबादत में और रियाजत में मसरूफ व मशगूल रहे, उन्हें यानी हाजी साहिबान को आराफा के रोज़ा रखने की इजाज़त है, और ये उस सूरत में है कि जब उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, कमज़ोरी और नकाहत ना हो, और हज के मनासिक में, हज के कामों में कोई कोताही ना हो। फुकहा ने लिखा, ला बअस बिसौम अराफा वहुवा अफ़दलुन लिमन कवी अलैहि फिस सफर वल हदर, कि अराफा का रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है और ये अफजल है हर उस शख्स के लिए जो इस रोज़ा पर ताकत रखता है सफ़र में या हजर में। मैदान अराफात में नमाज ज़ोहर और असर ज़ोहर के वक्त में पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए चार बुनियादी शराइत हैं, उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। ये शराइत हैं तो आप ज़ोहर और असर ज़ोहर के वक्त में पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। नंबर एक, नौ ज़िलहज का दिन होना। नंबर दो, मुकाम का मुकाम अराफात होना। नंबर तीन, एहराम में होना। और नंबर चार, अमीरुल मोमिनीन या उसके नायब की इख्तिदा में नमाज पढ़ना, तन्हा या अपनी जमात की सूरत में। आपको अपने औकात यानी ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में और असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ना है। फिर सूरज ग़ुरूब होने के बाद आपको अराफात से मुज़दलफ़ा की तरफ रवाना होना है, और यहाँ ये मसला ज़हन नशीं रहे कि सूरज ग़ुरूब होने तक मैदान अराफात में ठहरना और वकूफ़ करना ये वाजिब है। वो लोग जो सूरज ग़ुरूब होने से पहले मैदान अराफात से चले जाते, वाजिब छोड़ देते हैं, उन पर दम वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर वो ग़ुरूब होने से पहले चले गए और ग़ुरूब होने से पहले फिर से मैदान अराफात में आ गए, तो इस सूरत में दम साक़ित हो जाएगा। फिर मुज़दलफ़ा जाकर मग़रिब और ईशा की नमाज ईशा के वक्त में पढ़ना वाजिब है, और इसकी दलील आक़ा अलैहिस्सलाम का कौल और आक़ा अलैहिस्सलाम का फ़ैल है। चुनाचे इब्ने उमर रावी हैं कि जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल मग़रिब वल ईशा बिजमअन सल्लल मग़रिब सलासन वल ईशा रकातैन, कि अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और ईशा की नमाज मुज़दलफ़ा में एक साथ अदा की। आपने मग़रिब की तीन रकात अदा की और ईशा की दो रकातें अदा की। इससे मालूम हुआ कि हाजी मुसाफिर को मिना

जमारात को छोड़ दिया। पहले दूसरे तीसरे दिन किसी को कंकरियां न मारी, या फिर एक दिन की या फिर जमरे आकबा की, 10 ज़िलहज को रमी जमार न की, तो उस सूरत में उस पर एक बकरी दम लाजिम है। रमी जमरात के बाद, कंकरियां फेंकने और मारने के बाद, नहर है, कुर्बानी है, और उसके बाद फिर हल्क है। हल्क के बाद फिर तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती हैं सिवा बीवी के। फिर आप अहराम से निकल आते हैं और अपना आम लिबास पहनते हैं, और उसके बाद फिर तवाफ़े ज़्यारत करते हैं। तवाफ़े ज़्यारत से फिर बीवी भी हलाल हो जाती और हर शेय हलाल हो जाती। और अगर आपने पहले सही न की, तो फिर तवाफ़े ज़्यारत के बाद हज की सही है। यहाँ ये मसला अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि रमी, नहर और हल्क में तरतीब और ऑर्डर ये वाजिब है, नेसेसरी है, कि पहले रमी करें, फिर कुर्बानी करें, फिर हल्क करें। और तवाफ़े ज़्यारत में और इन तीनों में ऑर्डर लाजिम और कंपलसरी नहीं है। सो अगर किसी ने तवाफ़े इफ़ादा, तवाफ़े ज़्यारत, इन अफ़ाल से रमी, नहर, हल्क वग़ैरह से पहले किया, फ़ला शय अलैह, तो उस पर कुछ लाजिम न होगा। फिर से ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि रमी में और क़ुरबानी में और हल्क में ये ऑर्डर और तरतीब वाजिब है और नेसेसरी है। तवाफ़े ज़्यारत से फ़ारिग होने के बाद फिर वापस मिना आना है, और 11 और 12 की रात मिना में गुजारना है, और ये सुन्नत है। चुनाचे लुबाबुल मनासिक में है, अस्सुन्नतु अन यबीता बिमिना अय्याम अर्रमये, और सुन्नत है मिना में रात गुजारना रमी के अय्याम यानी 11 और 12 को। अगर किसी ने पहले दिन तवाफ़ न किया, तवाफ़ ज़्यारत, तो वो दूसरे दिन कर ले। दूसरे दिन भी न कर सके तो फिर तीसरे दिन कर ले, यानी 10, 11, 12, इन दिनों में तवाफ़ ज़्यारत करना ये वाजिब है। अगर किसी ने नहीं किया तो इस सूरत में दम लाजिम आएगा। हाँ, अगर औरत हैज़ से थी या निफास से थी, और हैज़ और निफास की वजह से वो इन दिनों में तवाफ़ न कर सकी, तो उन पर दम लाजिम नहीं आएगा। और ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि तवाफ़े ज़्यारत इन 3 दिनों में करना वाजिब है, लेकिन वैसे तवाफ़े ज़्यारत का जो टाइम है वो पूरी ज़िंदगी है। अगर आपने इन दिनों में तवाफ़ न किया किसी रीज़न की वजह से, तो आपको पूरी ज़िंदगी में जब भी मौका मिले आप तवाफ़े ज़्यारत कर सकते हैं। और तवाफ़े ज़्यारत ये भी हज के फ़राइज़ में से है। अगर किसी ने नहीं किया तो उसका हज ता वक्त है कि वो तवाफ़े ज़्यारत न कर ले, नहीं होगा, और उसके लिए बीवी हलाल न होगी। अगर किसी ने 12 ज़िलहज असर के बाद तवाफ़ शुरू किया और 4 चक्कर अदा हुए कि इतने में सूरज ग़ुरूब हो गया,

और सूरज ग़ुरूब होने के बाद उसने तीन चक्कर पूरे किए, तो इस सूरत में चूंकि उसने अक्सर चक्कर जो कि तीन चार फ़र्ज हैं, चार चक्कर फ़र्ज हैं, वो 12 को अदा किए हैं सूरज ग़ुरूब होने से पहले, इसलिए फ़ला शय अलैह, उस पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी। फिर ये दिन हैं, इनमें मुख्तलिफ़ दुआओं की कसरत की जाए, ख़ास तौर पर ये दुआ रब्बना आतीना फ़िल दुनिया हसनत व फ़िल आखिरत हसना वक़ीना अज़ाब अन्नार। और ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल्इफ़ाफ़ वल्ग़िना। और जो दुरूद व सलाम चाहें आप पढ़ें, लेकिन ये दुरूद जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी हज से मुनासबत है, मनासिक हज से और अफ़ाल हज से, अगर ये पढ़ सकें मुख्तलिफ़ मुकामात पर, तवाफ़ के दौरान, सई के दौरान और तलबिया के दौरान, हल्क के दौरान और क़ुरबानी के दौरान और हजरे अस्वद को बोसा देते वक्त, तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस दुरूद की मुनासबत इन तमाम मनासिक हज और अफ़ाल हज से है। वो दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, मत तसलतिल उयून बिन नज़र व तज़ख़रफतिल अर्दून बिल मतर व हज हाज व अतमर व लब्बा व हलक व नहर व तवाफ बिल बैतिल अतीक व क़ब्बरल हजर। हज से फारिग होने के बाद जब आप अपने अपने ममालिक की तरफ रवाना हों, तो फिर तवाफ़ सदर है, तवाफ़ वदा है, जो वाजिब है। लेकिन वो औरत जो हैज़ में हो, निफास में हो, उनके लिए ये तवाफ़ मुआफ़ है, उन पर वाजिब नहीं है। फिर बाज़ हाजी हज से पहले मदीना मुनव्वरा जाते हैं और बाज़ बाद में जाते हैं, दोनों खुश नसीब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फ़ी जवारी यौमल क़ियामा, कि जिसने कसदन और मकसूद बनाकर मेरी ज़्यारत की, कि उसका मकसूद मेरी ज़्यारत हो, तो वो क़ियामत के दिन मेरे जवार और पड़ोस में होगा, मेरे अमान में होगा। तो एक ज़ायर के लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि ज़्यारत मदीना मुनव्वरा, ज़्यारत रोज़े अतहर मुस्तफ़ा से उसे क़ियामत के दिन आका अलैहिस्सलाम का जवार और हुजूर का पड़ोस मिल सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हज को, हज के अफ़ाल को, हज के मनासिक को, हज के मशागिल को और मदीना तैयबा में हाज़िर होने को, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम के मज़ार अथर पे हाज़िर होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ज़िंदगी में ये बहारें हमें बार बार अता फरमाए, हज बैतुल्ला की सहादत और रोज़े अथर मुस्तफ़ा की और मदीना मुनव्वरा की बादम हाज़िरी, जो इश्क और मोहब्बत में डूबी हुई हो। दो चीज़ें हैं, एक है इश्क और एक है अदब। जब आप अपने ममालिक में हों तो वहाँ ग़लबा इश्क होना चाहिए, और अब जब आप इन मुकामात पर हाज़िर हों तो फिर वहाँ अदब का ग़लबा होना चाहिए। एक दूसरे का ख़्याल रखें, एक दूसरे के आराम का, सुकून का, इत्मीनान का, चैन का, और एक दूसरे की मदद करें। ख़ास तौर पे आप में से जो बीमार हैं, जो माजूर हैं, जो मजबूर हैं, जो कमज़ोर हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका बतौर ख़ास ख्याल रखा जाए। और किसी भी सूरत में ऐसा काम न करें जो ख़िलाफ़ अदब हो। करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जां।

0: जहां फ़िदा, और दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ो जहां नहीं। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों, वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: सामीन, अभी आप हज के पांच अय्याम, हज के पांच दिन किस तरह हुज्जाज कराम को गुजारने हैं और मनासिक हज के मुतालिक आपने एक बयान समाप्त किया। आइए सामीनीन उन मुकद्दस जगहों का जिक्र करते हैं जो मनासिक हज में शामिल हैं। पहली जगह मीना,

मीना हरम शरीफ से 4 किलोमीटर के फासले पर वाकई है। अरफात जाने से पहले हुज्जाज कराम यहाँ 9वीं ज़िलहिज्जा की रात गुजारते हैं और फिर अरफात व मुज़दलिफा से वापसी के बाद 11-12 ज़िलहिज्जा की रातें यहाँ गुजारते हैं। ये अयाम तशरीक कहलाते हैं, जो खाने पीने और अल्लाह ताला के जिक्र करने के अयाम कहलाते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया। अरफात।

इस मैदान में हर साल 90 जिलहिज्जा को हुज्जाज कराम वकूफ करते हुए गुरुब आफ्ताब तक दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। गुरुब के बाद फिर मुज़दलिफ़ा को रवाना हो जाते हैं। वाज़े रहे कि वकूफ़ अरफा हज के अरकान में से एक ऐसा अहम रुकन है जिसके छूट जाने से हज फौत हो जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज तो अरफा ही है, और अरफा के दिन की बड़ी फजीलत है। हज़रत आयशा रदल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को इतनी कसरत से जहन्नम से आज़ाद करते हों जितना उस दिन में करते हैं। उस दिन अल्लाह ताला करीब हो जाता है अपने बंदों से यानी हुज्जाज कराम से, और उनसे पूछता है कि ये लोग यानी हुज्जाज कराम क्या चाहते हैं। जबल रहमत।

जबल रहमत अरफात के मशरिकी सिमट में एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी के नशेब में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम में वकूफ़ फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ अपनी किस्वा नामी ऊँटनी पर फरमाया। चेहरा अनवर क़िबला रुख था और ग़ुरूब शम्स तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ मांगने में मशगूल रहे। मनासिक हज में एक जगह मुज़दलिफ़ा में ठहरना भी है।

ये मुबारक जगह मीना और अरफात के दरमियान वाकई है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने हुज्जाज कराम को मैदान अरफात से वापसी पर रात गुजारने और वकूफ़ करने का हुक्म दिया है। ये मकाम अरफात से करीब है, इसलिए इसको मुज़दलिफा कहा जाता है। और दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा रहती है, लोगों का इज्तिमा होता है, इसी की मुनासिबत से उसको मुज़दलिफा भी कहा जाता है। इस मुक़द्दस मकाम पर हुज्जाज कराम को ये हुक्म है कि वो पूरी रात ज़िक्रुल्लाह में गुजारें। इस मुबारक मुक़द्दस जगह पर दसवीं ज़िलहिज्जा की रात का क़याम हज के वाजिबात में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और ईशा एक अजान और दो इक़ामतों से अदा की। जमरात यानी कंकर मारना या फिर इसको रमी भी कहा जाता है।

जमरात हज के मनासिक में शामिल हैं। ईद उल अधा के दिन यानी कि 10 जिलहिज्जा को हाजी जमर उकबा यानी बड़े शैतान की रमी करता है और उसके बाद तीनों दिन 11, 12 और फिर 13 जिलहिज्जा में तीनों जमरात शैतानों की रमी करता है। उन तीन दिनों में रमी का ये अमल जवाल आफ्ताब के बाद करने का हुक्म है। इन कंकरियों के मारने में हिकमत ये है कि इसके ज़रिए बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता है। ये थी वो जगहें जो मनासिक हज में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे मोमिन को इनका दीदार नसीब फरमाए और हम सबको बार बार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर तमाम हुज्जाज कराम को हज मबरूर हो और अल्लाह ताला हज के अय्याम में हुज्जाज कराम को ताकत हिम्मत दे ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की सुन्नतों और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए ये अय्याम कामयाबी के साथ सर अंजाम दें। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: निंग हाँ,
4: अस्सलामुअलैकुम,
1: किम चू मॉरिशस।
5: नमस्कार श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम।
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
7: ரேடியோ மொரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபீ கா।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।
2: आपकी पसंद

हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और एक प्यारा सा म्यूजिकल हेलो आप सबों को, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ देवीना और इस खूबसूरत वीकेंड की म्यूजिकल होस्ट लेकर आ गई हूँ आपका सबका फेवरेट डेडिकेशन शो, आपकी पसंद प्रोग्राम। इस सुहाने सैटरडे दोपहर में अभी से लेकर 4 बजे तक हम बात करेंगे प्यार की, दोस्ती की, यादों की, और साथ में होंगे सेलिब्रेशंस, जैसे बर्थडे या फिर कुछ भी इवेंट हो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, अपनों को याद कीजिए, और सुनेंगे वो गीत जो आपने अपनों के लिए भेजे हैं दिल से। मॉरिशस के हर कोने से आ रहे हैं, आएंगे हम शो आपके प्यार भरे मैसेजेस, ग्रीटिंग्स और डेडिकेशंस। और अगर आपको फ़ोन करना है तो 4028085 4028085 पर।

या फिर मैसेजेस द्वारा आप हमसे संपर्क कर रख सकते हैं 5251-7005-525-7005। तो तैयार हैं आप इस म्यूजिकल सफर के लिए जहां हर गाना किसी के दिल की आवाज बनेगा। सो बस हमारा साथ देते रहे एंड हैव ए नाइस टुडे और साथ में हैव ए नाइस टाइम ऑन AM2 रेडियो।

रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं, और जब एहसास सुरों में ढल जाए तो बन जाता है आपकी पसंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम को इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। आवाज़ें होंगी इसमें हरिहरन साहब, साथ में साधना सरगम, फिल्म है तेरे मेरे सपने। प्यारा मौसम है, धूप है, कुछ ठंडी हवा है, और साथ में बहुत सारा प्यार हमारी ओर से आप सबों के लिए। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ आपके दिल ने कहा, सो बस जो आपके दिल ने कहा और जो हमारे दिल ने कहा, एक साथ मिलाकर हम बनाएंगे आपकी पसंद प्रोग्राम।

जहाँ 2:36 मिनट हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनों से, अपने लिसनर्स से, और वैसे आपकी पसंद प्रोग्राम हम चला रहे हैं 4 बजे तक। माइक पर है दिविना आप सबों के संग। वैसे सत्यदेव का दिन जो होता है फैमिली के लिए है रिलैक्सेशन और साथ में म्यूजिक का नाम करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले डेडिकेशन और रिक्वेस्ट की ओर। वैसे बुआशरी से प्यारी सी लीला जी नमस्ते जी, और वे सुनना चाहती हैं फ्रॉम द मूवी दूर का राही, किशोर दास साथ में सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में, बेकरारे दिल। ये गाना आप सबों को पसंद है आई एम श्योर, और मुझे भी पसंद है। वैसे ये गाना हम आप सबों के नाम करते हैं लीला जी की ओर से। और लीला जी कह रही हैं कि वे पूजा पाठ में कुछ बिजी हैं, और जैसे ही मौका मिले वे जल्दी जल्दी से फ़ोन करती हैं हमें। थैंक यू सो मच। अगर आप कहीं भी हो, अगर फ़ोन करने के लिए समय नहीं है, तो कोई मैसेज भेज दीजिए, और आपको तो नंबर पता ही है 5251705 7005 पर आप एक छोटा सा मैसेज भेज दीजिए, हम को

पता चलेगा कि आप हमें याद कर रहे हैं और आपके गाने भी हम चलाएंगे। सुबह से दूर करा ही ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के लिए, खासतौर पर लीला जी और आपके परिवार के लिए।

जहाँ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा का म्यूजिक वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो गाना आपने अभी पहले सुना सहगल जी की आवाज़ में, केएल सहगल जी की आवाज़ में, एक्चुअली ये था देपिने की शीला जी के लिए। उनको ये गाना अत्यधिक ही पसंद है, बहुत ही पसंद है, और सभी के लिए उन्होंने ये गाना मांगा है। और जितने लोग इस गाने के शौकीन हैं बस उनके लिए। और शीला जी, तो आई एम श्योर ये गाना आपने सुना और आपने एंजॉय किया। आपकी पसंद प्रोग्राम में हमारे जो दोस्त हैं इतने फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। सो बस अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बादशाही के धनी जी, धनी जी नमस्कार वंस अगेन। सो वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी ब्रह्मचारी, मैं गाऊं तो सो जाओ, मगर अभी सोने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त, गाने सुनने का वक्त है। ब्रह्मचारी मूवी का ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये चाहेगा यश, हिमिश और सभी जो रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, साथ में जो शमी कपूर साहब के फ़ैन्स हैं उनके लिए। आपकी पसंद प्रोग्राम।

2:55 हुए हैं और आप लोग साथ दे रहे हैं इस वीकेंड, और वीकेंड का समय है और आप सब लोग, बहुत से लोग जो हैं घर पर होते हैं, घर के कामकाज में लगे रहते हैं, और जो लोग घर पर ही रहते हैं, गृहिणी हैं या फिर होम मेकर जैसे कहते हैं, तो उनके लिए तो जैसे सैटरडे जो हैं सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि सभी लोग होते हैं घर पर, उनकी कंपनी मिलता है और सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, लंच लेते हैं, चाय पीते हैं। और वैसे चाय की बात की तो अभी चाय पीने का वक्त ही है, तो अगर आप लोग चाय चुस्की ले रहे हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, तो थैंक यू सो सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और कहते हैं ना, हर वीकेंड तभी कंप्लीट होता है जब घर में म्यूजिक और अपनों की मुस्कान हो। हाँ जी, कितनी प्यारी बात है ना। और दोस्तों, अगर आप भी भेजना चाहते हैं अपने मैसेजेस, विशेज या डेडिकेशंस, तो जुड़े रहिए MBC रेडियो मॉरिशस के साथ। अब सुनिए एक और गाना जो दिल को छू लेने वाली है, और साथ में ये गाना स्पेशल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बर्थडे था देवयानी जी का, ऑफ ग्रीष्मा ऑफ लक। तो देवयानी जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली उनका बर्थडे जो था थर्सडे को था, और देवयानी जी आपको जैसे कहेंगे ना, बेस्ट ऑफ लक, प्यार ही प्यार हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले आपको, आपको अपनों का प्यार मिले, खुशियाँ मिले, और जो भी आपको चाहिए। और जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं वैसे, सुबह से आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, और साथ में हमारा जो टीम है उनकी ओर से आप सबों को ढेर सारा प्यार। तो दिव्यानी जी को क्या गिफ्ट दें, आपको क्या उपहार दें, तो ये जो गाना आपने मांगा है आपके लिए हम चलाएँगे। ऑफकोर्स फिल्म है मिलन, सो दिव्यानी जी ये रहा आपके लिए।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। खराब मौसम से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मूसलाधार वर्षा की स्थिति में अब सरकारी, निजी और शिक्षा सेक्टर के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। ये फैसला कल कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश के रोजगार बाजार में सुधार दर्ज किया जा रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जो कई आर्थिक सेक्टरों में तेज होती गतिविधियों का संकेत है। कैबिनेट ने मॉरिशस कामगारों के कनाडा में रोजगार को लेकर श्रम मंत्रालय को हरी झंडी दे दी है। ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की जा रही है। रिफॉर्म पार्टी के नेता गुशीबादे ने सरकार पर कई चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने आज एबन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आगामी बजट को लेकर कई आर्थिक प्रस्ताव भी सामने रखे। मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अफ्रीकी विमानन जगत की दिग्गज विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस अब मॉरिशस के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन को मॉरिशस के लिए संचालन की अनुमति दे दी गई है। चीन के शानशी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर गई है। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत कार्य जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मेजोनेट रोड रिविया दिसोंगी में 80 साल के 80 साल के श्री सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रामदास

0: के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी जीसन जगनंदन के मकान रिव्या दिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ताया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। केवल नगर बेलरीव में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की धर्मराज बागेराची की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें आदू के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तुआइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।

0: 800 and 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: आपकी पसंद जो हो चुका है 3:09। गीत मिलन के गाते रहेंगे, साथ में गुनगुनाते रहेंगे, साथ में नाचेंगे गाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, यादों की दुनिया में साथ ले चलेंगे आपको, और साथ में जो प्रेजेंट वाले गाने हैं आपके नाम भी बजाएंगे। सो यह है आपकी पसंद प्रोग्राम देविदा है आपके संग 4 बजे तक। सो वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। और आज का मौसम जो है म्यूज़िक जैसा सुहाना लग रहा है ना, और ऐसे में याद आते हैं वो लोग जो हमारी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं, जैसे कि आप लोग। वैसे कहते हैं ज़िंदगी एक गीत है और अपने उसकी सबसे हसीन धुन। तो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला गाना है मुकेश साहब की आवाज़ में है, साथ में प्यारी सी आवाज़ होगी सुमन कल्याणपुर जी की। फिल्म है दिल ही तो है, हाँ जी दिल ही तो है, जो बार बार ऐसे गाने सुनने को तरस जाता है। इससे तो आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, बस ये जो रिक्वेस्ट है, मांग है गायत्री जी की ओर से, गायत्री जी। और वे कहते हैं हमेशा रेडियो मेरा साथी ऑफ कोर्स, और आप जहाँ भी हो, घर पर हो, रेडियो तो बजता रहता है, क्योंकि संगीत से ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है ना गायत्री जी। सो बस अगला गाना ये जो है भतीजियों के नाम, मेधा गिरिशा, और साथ में है मीरा भाभी, उनकी बहन है अमृता, और साथ में और जो भतीजी हैं नेहा क्षिति दिव्या, साथ में सुधीर कमलेश, और साथ में है सुधा। तो गायत्री जी आप सुहाने दिनों को याद कीजिए, साथ में आप गीतों की दुनिया में डूब जाइए, हमारा साथ दीजिए। प्रोग्राम है आपकी पसंद प्रोग्राम।

जहाँ ये था मुकेश साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना, और ये जो गाना है एक्चुअली और लोगों को बहुत ही पसंद है, और ये था ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन पॉक से विद्या जी। हेलो विद्या जी, मैसेज के लिए थैंक यू। और ये जो गाना था चाची कुमारी, बहन सती, सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति और बबिकता के लिए था। वैसे कहते हैं दोस्तों, पुराने गीत कभी पुराने नहीं होते, वो तो हर बार नए एहसास जगाते हैं, है ना। सो, अगला गीत डेडिकेट करने वाले हैं किसके नाम, और साथ में बता देते हैं आपको कि हमारा जो प्लेलिस्ट है ऑलमोस्ट भर चुका है, और अगर आपको कुछ गाना सुनना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा गाना चलाने में, मगर हम आपका नाम ज़रूर जोड़ देंगे क्योंकि एक दो मैसेजेस हैं पढ़ने के लिए। सो बस ये जो अगला गाना है सेंट जूलिया विलाज की गीता जी हैं, फिल्म है उरन कटोला, और वे ये गाना बेलवेदिया की सॉरी ये जो नाम है मुझे अच्छे से पता नहीं कौन सा नाम है, बस स्वादेका, हाँ जी स्वादेका के लिए है। सो ये गाना जो आप सुनना चाहती हैं वैसे वहाँ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मगर इसी फिल्म का गाना आपके नाम गीता जी और स्वादेका जी।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: ये रोमांटिक सधुन जो है फिल्म है, हाँ जी फिल्म है ज़मीर, और ये गाना जो है जैसे कहते हैं दिल तो पागल है, दिल तो रोमांटिक

3:33 हुए हैं और ये गाना जो आपने सुना कहाँ तुम चले गए, ये था फॉर अश्विन, अश्विन की याद में सुरागिनी जी की ओर से बाशरी की हैं। और अश्विन अब उनके बीच नहीं रहे और उनको याद कर रहे हैं पूरा फैमिली जो है आदिन परिवार और साथ में रघु परिवार। अब चलते हैं 20 साल बाद, नहीं 20 साल पहले की बात है, फिल्म है 20 साल बाद और गाना जो है हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में है और ये गाना एक्चुअली बड़े रोमांटिक है। इसको आफेज जी सुनना चाहती हैं। आफेज जी आदाब, वे कह रही है सभी लोग सो रहे हैं मगर मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। ओह आफेज जी थैंक यू सो मच हमेशा हमारा साथ देने के लिए। और सोते सोते वैसे सो रही नहीं रही है, बस लेटे लेटे ये गाना सुनना चाहती हैं, रोमांटिक मूड में है और अपने शोहर की याद में ये गाना वे सुनना चाहती हैं। साथ में इसमें नाम जोड़ना चाहेंगे फिनिक्स की रेहाना जी की, उन्होंने मैसेज भेजा है मगर जैसे हमने कहा सभी गाने हम नहीं चला पाएंगे तो अपनी अपनी पसंद के अनुसार हम आपके नाम जोड़ते जाएंगे। सो वाकवा से सुदेवी जी, कटोबोन से सरिता जी, साथ में कुंगुमा के दिलीप जी, और दिलीप जी ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगी फॉर संगीता, योगेश, मनीषा, कृष्णवी और सभी सुनने वालों के लिए। और साथ में है बंधु फैमिली ऑफ ट्रियोले, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आगे सुनते हैं।

जहाँ आपको हमारी कसम आप मुस्कुरा लीजिए ना, ऐसे प्यारे प्यारे गाने सुनकर कौन भाई नहीं मुस्कुराएगा। हम तो मुस्कुरा रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं साथ में। तो जैसे कहते हैं दोस्तों, कभी कभी एक गाना हमें सीधा बचपन या जवानी के दिनों में ले जाता है। वही कैसेट वाला ज़माना, रेडियो के पास बैठकर गाने सुनना, रिकॉर्ड करना और फेवरेट गाने का इंतज़ार करना। बस तो यहीं पर आपको मिलते हैं आपके मनपसंद गाने हमेशा के लिए AM2 रेडियो मॉरिशस पर। और यादें भी अजीब होती हैं ना, कभी मुस्कुरा देती हैं तो कभी आंखें नम कर देती हैं। और बहुत सारे ग्रीटिंग्स, बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, पोटरी से, कटबोन से, गुडलैंड से, साउथ से, बुआशेरी, शुमेगुनी, मीबर्ग, साथ में यहाँ पर है क्यूपिप और ट्रियोले। तो अब जो गाना हम चलाने वाले हैं ना, वो है फ्रॉम वाक्वा। विश्वानी दुमन जी हमेशा की तरह जुड़ी रहती हैं हमारे साथ। विश्वानी जी नमस्ते। उनका पहले मैसेज आ गया था मगर अब हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो फिल्म है सैनिक, जाम वो है जो प्यार, जाम वो है जो भर ये गीत। ओके, जाम वो है, क्या है जाम। तो बहन इंदिरा के लिए, शारदा के लिए, सहेली नीला, प्रतिभा, साथ में शोभा और साथ में गीता गजाधर के लिए। तो ये जो गाना है एक्चुअली हमें याद दिलाता है अक्षय कुमार को, साथ में थी अश्वनी भावे। और 90s के रोमांटिक गानों में, 90s के सुपर गानों में ये गाना है। सो बस आप इसको एंजॉय कीजिए।

जहाँ ये गाना जाएगा मोहताज ब्लॉश की माया जी के लिए, उनके सभी परिवार के लिए, और जितनी जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, जो अभी शादी के बंधन में बनने वाली हैं और शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, ये गाना आप सबों के लिए।

1:01 हुए हैं और दोस्तों देखते ही देखते हमारा आज का म्यूजिकल सफर अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा है। आप सबके डेडिकेशंस, मैसेजेस और प्यार ने इस सैटरडे आफ्टरनून को सच में यादगार बना दिया है ना। वैसे सुर जब दिल से निकलते हैं तो सीधा दिल तक पहुंचते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के गीतों ने आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लाई होगी, साथ में आपके जो यादें हैं ताज़े हुए होंगे और कुछ जो नए पुराने गाने हैं आपके दिल को छू लिया होगा। आप सभी लिसनर्स का दिल से शुक्रिया करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूज़िक से जुड़े रहिए। और हमारे बाद 4 बजे अंजू जी लेकर आएगी साहित्य दर्पण, तो आप उनका साथ जरूर दीजिएगा और हमेशा जुड़े रहिए AM2 रेडियो मॉरिशस पर। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको वो गाने मिलते हैं जो आप पसंद करते हैं, कुछ नए कुछ पुराने। और हमारी और आपकी मुलाकात तो होगी कल AM Free रेडियो मनोरंजन पर।

हमेशा की तरह सुहाना सफ़र प्रोग्राम के अंतर्गत 12 बजे से 3 बजे तक। सो बस आपकी जो आपका जो सैटरडे है वो शनिवार है वो हैप्पी हो, खुशगवार हो, और आज रात जो है अच्छा सा डिनर तैयार करके अपनों के साथ आप मज़े लीजिएगा, डिनर करिए और साथ में प्यारे प्यारे गाने सुनिएगा, अपनों का साथ दीजिएगा। तो ये जो गाना हम बजाना चाहते हैं आप सबों के नाम, अगला गाना जो है अंतिम गाना एक्चुअली ये जाएगा आप सब लिसनर्स के लिए, साथ में जो है ट्रियोली की आरती जी हैं पति सुरेंद्र के लिए, आनंदी, रीमा, शिमला, बिताशले ट्रियोले, साथ में है इंदिरा लॉटन ऑफ मोदालबेर और शतु बेनारेस की ज्योति जी, रेखा आशनी, सुरेखा, माधव फैमिली, और ये गाना जाएगा खास तौर पर युवानेश के लिए, बबुआ फैमिली के लिए, साथ में पूरे गुरन सिंह फैमिली के लिए और सारे सभी जो लिसनर्स हैं प्यार से साथ दे रहे हैं आप सभी के लिए। तो बस हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, ढेर सारा प्यार आप सबों को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्भरन की प्रस्तुति में।
2: सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का नाम तो आप जान ही चुके हैं, कार्यक्रम है साहित्य दर्पण। श्रोताओं, आज हमारे साथ यज हैं जो सहयोग दे रहे हैं आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में, और टेलीफोन नंबर भी आप सभी जानते हैं श्रोतागण, पर जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए 402-8085 4-0-8-5 ये फ़ोन नंबर है आपको संपर्क करने के लिए। और हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हों, आज सूचनाएं बहुत जल्दी पल भर में उपलब्ध हो जाती हैं। वहाँ केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आज के वैश्विक और ज्ञान आधारित दुनिया में केवल बौद्धिक क्षमता और सूचनात्मक जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही व्यक्ति के ज्ञान कौशल और चिंतन का संतुलित विकास भी होना अनिवार्य है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के परिपेक्ष में हमारा ज्ञान कितना है, क्योंकि आज हम मोबाइल लेते हैं,

चैट जीपीटी है, एआई है, बहुत कुछ है, ज्ञान की दुनिया का भंडार है आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर। पर कभी आप सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के निर्माता कौन रहे? आज उनमें से एक दो पर हम चर्चा करेंगे। श्रोताओं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के निर्माता पर एक पुस्तक है जो कि शुभांकर मिश्र जी द्वारा लिखी गई है, उसी में से कुछ जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। श्रोताओं, ज्ञान हमारे लिए कितना आवश्यक है आप सब जानते हैं। आज ज्ञान के माध्यम से कहां कहां लोग कहां तक पहुंच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, परमाणु बन रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ज्ञान और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पर हम जितना सोचें, गणित के जो जादूगर हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, गणित का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो जादूगर रहे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जिनका नाम था, आज कौन सी तारीख है, आज किसका जन्मदिन है, अभी कितने बजे हैं, अभी अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, 4:01 पे हमने कार्यक्रम शुरू किया, कितने बजे हमें स्कूल जाना है, कितने बजे हमें MBC पहुंचना है, कितने बजे हम काम पर जाना है, ये सब का सब दरअसल सामान्य अंकों के ज्ञान से जुड़ने का प्रश्न है, जिनका सीधा संबंध गणित की हमारी सूझबूझ से है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के समय को हम अपनी सुविधा के अनुसार बांट लेते हैं कि हमें आज 4 से 5 तक साहित्य दर्पण कार्यक्रम सुनना है, आज हमें 5 से 6 तक संगीत कार्यक्रम से जुड़ना है, और 7 बजे हमें भोजन करना है। तो हर चीज़ में समय के आधार को ढूंढना, वो गणित के माध्यम से हम ढूंढ पाते हैं। ज्ञान की वह शाखा जिसकी मदद से हम गिनते हैं, संख्याओं के विभिन्न विधियों के साथ परिकलन करते हैं, गणित कहलाता है। हमारी किताबों में गणित के जनक के रूप में यूनानी विद्वान आर्किमिडीज के याद किया जाता है। पर प्राचीन भारत की गौरवशाली इतिहास पर यदि नज़र डालते हैं तो ये सहज ही ज्ञात हो जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भारत में गणित चिंतन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने पूरे विश्व पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और ये गौरतलब है कि उन दिनों ज्योतिष को नक्षत्र विद्या और गणित को राशि विद्या के नाम से जाना जाता था। संख्या, शून्य, स्थानीय मान, अंक गणित, ज्योतिमिति, बीज गणित आदि के क्षेत्रों में अतुल्य भारत ज्ञान विज्ञान का परिचायक रहा है, जिनकी ठोस बुनियाद पर आज नित नए खोज और उन्नत तकनीकियों के मार्ग प्रशस्त हुए हैं और हो रहे हैं। उसी प्राचीन भारत में की एक कथा है जिसमें एक बेटी बाल सुलभ कौतूहल से पिता से पूछ बैठती है, पिताजी, अंतरिक्ष में ग्रह कैसे स्थिर हैं, कैसे टिके हुए हैं, बिना आधार के ये भला गिर क्यों नहीं जाते। सैकड़ों वर्ष पूर्व पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में मंद मंद मुस्काते हुए उस पिता ने अपनी पुत्री को जवाब दिया। वे वस्तुतः गुरुत्वाकर्षण के नियम की एक गूढ़ विवेचना थी। वे पिता थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक भास्कर द्वितीय, जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी पुत्री का नाम था लीलावती। प्रश्नोत्तरी का यह प्रसंग श्लोक रूप में आज भी सुरक्षित है, जो उसके लगभग 600 साल बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में दुनिया के सामने एक बार फिर से दोहराया गया। आधुनिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज का श्रेय आइजैक न्यूटन को जाता है। भारतीय गणित के जादूगर माने जाने वाले भास्कराचार्य का जन्म भारत के कर्नाटक प्रदेश में बीजापुर में हुआ था। भास्कराचार्य के पिताजी महेश्वर भट्ट स्वयं गणित के एक महान विद्वान थे, इसलिए भास्कर

भास्कराचार्य की अभिरुचि गणित की ओर होना स्वाभाविक था। भास्कराचार्य की गणित, ज्योतिष, वेद, काव्य, व्याकरण आदि की शिक्षा अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आगे चलकर इस क्षेत्र में एक नूतन इतिहास रच डाला। भास्कराचार्य का समस्त जीवन गणित और खगोल विज्ञान को ही समर्पित था। अंक गणित और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उनकी अमूल्य प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें पुरातन भारत के एक श्रेष्ठ गणितज्ञ के रूप में याद किया जाता है। विलक्षण प्रतिभा थी उनकी, बहुत ही धनी थे। भास्कराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में ही सिद्धांत शिरोमणि की रचना कर डाली थी। 1150 के आसपास संस्कृत में रचित सिद्धांत शिरोमणि गणित एवं खगोल विज्ञान का एक विशाल ग्रंथ है, जो 4 खंडों पाटीगणित, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय के विभक्त है। ग्रंथ की विशालता को देखते हुए इन 4 खंडों के कई विद्वानों ने एक स्वतंत्र ग्रंथ भी मानते हैं। तो ऐसी जानकारियां हमें इस पुस्तक में मिली, और गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर से कृतज्ञ राष्ट्र ने 7 जून 1969 में जो को छोड़े गए अपने उपग्रह का नाम भास्कर 1 तथा 20 नवंबर 1981 में छोड़े गए प्रथम और द्वितीय उपग्रह का नाम भास्कर 2 रखा। भास्कराचार्य 65 वर्ष की अवस्था में वे यहाँ से चले गए, हमारा साथ छोड़ के। वे अब इस संसार में बेशक नहीं हैं, पर हमारे साथ हैं। गूढ़ चिंतन के माध्यम से हम सब के बीच हैं और आज भी विद्यमान हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मानवीय प्रगति के लिए हम उनको पथ प्रदर्शन के रूप में मानते हैं, पथ प्रदर्शक हो गए वे हम। तो ऐसी भारतीय ज्ञान संस्कृति और ज्ञान परंपरा के निर्माता पर ही दूसरा नाम जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं आर्यभट्ट। उनका भी बहुत बड़ा नाम है, शून्य की संकल्पना आर्यभट्ट की दूरदर्शिता थी। एक समय की बात की शैली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कल्पनाओं पर काबिज रहती है। दादी नानी द्वारा सुनाई गई कहानियों और लोक कथाओं की यह शैली हमें आश्चर्य, रोमांचक और कौतूहल की दुनिया में गोते लगाने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज तो बच्चे मोबाइल लेकर घूमते हैं, दादी नानी के पास बैठते तक नहीं है। दादी नानी की कहानियाँ सुनने का समय कब मिलता होगा? पर पहले ना मोबाइल था, ना ही कंप्यूटर था, ना ही, केवल गुरुकुल होता था जहाँ गुरु आपको ज्ञान देता था और गुरु माता आपको का मार्गदर्शन करती थी कि ज्ञान के बाद दिनचर्या कैसी रहेगी, वो गुरु माता बताती थी। पर ऐसे ऐसे लोग ही कितना हमारे लिए खोज कार्य कर गए, जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी। जंगलों में गुरुकुल होते थे, घरों के आसपास भी नहीं होते थे, तभी उसे गुरुकुल कहा जाता था, जहाँ केवल गुरु आपके साथ, गुरु अपने शिष्यों को लेकर जंगलों में रहते थे। गौरतलब है कि चाहे वे संस्कृत हो या यूनानी कहानी कहने की ये कला, कामोबेश सभी सभ्यता और संस्कृतियों में एक जैसी ही रही है। ये न केवल बाल चंचल मन बल्कि युवाओं को आज भी बरबस अपनी ओर खींच लेती है, मानव मन में सहज जिज्ञासा पैदा कर देती है। एक कहानी जब आप सुनते हैं, किसी भी नानी, दादी, माँ, पिता, किसी से भी सुनते हैं, तो वो अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसी के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी लोरियाँ ही तो शुरू करती हैं संस्कार पिरोना एक व्यक्ति में, एक बच्चे में। जब बच्चा पैदा होता है, माँ की छोटी छोटी लोरियाँ जिसमें एक संदेश होता है, माँ की छोटी छोटी कहानियाँ उसमें भी संदेश होता है, और साथ ही वे हमारे संस्कार, हमारे

अस्तित्व को खड़ा करने के लिए उसमें संस्कार पिरो रही हैं, और उन कहानियों के माध्यम से, चाहे वे रामायण से छोटा प्रसंग हो, चाहे वे गीता का प्रसंग हो, कहीं से भी वे ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आप में, हम में संस्कार पिरोते हैं। तो ऐसे ही दादी नानी की हर एक कहानी मनोरंजन और ज्ञान का पूरा पूरा एक पैकेज होता है। लोक रंजन का पटु लिए ज्ञान और नसीहतों का भरपूर खजाना जो हमारे को मिलता है। गंभीर कहानी कहने की उनकी ये शैली इतनी मनमोहक हुआ करती थी कि हम अपनी मटकती आँखों को भी घुमाकर खूब पूछे बिना नहीं रह पाते थे कि फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। राजा आया, रानी आई, कोई भी आया तो एक कौतूहल रहता है, एक जिज्ञासा रहती है कि इसके बाद क्या हुआ। इतिहास गवाह है कि मनुष्य जिज्ञासा और ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित रहा है। जब भी हमारे मन में कोई सवाल उठता है, सवाल करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वो ज्ञान बढ़ाता है। कब, क्या, कहाँ, क्यों हुआ, कैसे, जैसे शब्दों के इर्द गिर्द हम भटकते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगते हैं। कई बार जब हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो हम विज्ञान की दहलीज लांघकर आध्यात्मिकता और अन्य माध्यमों से अपनी खोज और सीखना जारी रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे अवसरों पर हम अक्सर मार्गदर्शन का समाधान की तलाश में किसी एक सर्वोच्च शक्ति की ओर मुड़ जाते हैं और स्वयं को कह उठते हैं, भगवान ही जानता है। जब हमारा बस नहीं चलता है, हमें उत्तर नहीं मिलता है, तो कैसे हम ईश्वर को साथ जोड़ लेते हैं और हम कह देते हैं ईश्वर ही जानता है या भगवान ही जानता है। ईश्वरीय मार्गदर्शन की तलाश की यह सदियों पुरानी परंपरा बेशक हमें मानसिक शांति और सुकून तो दे जाती है, पर समस्याओं के सभी संभावित समाधानों की खोज मानव जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता भी तो बनी है और बनी रही है। इससे हम अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान और रचनात्मक तरीके की खोज कर लेते हैं और अंधविश्वासों आदि से, जिनमें तर्क की कमी होती है, उसका शिकार होने से बच जाते हैं। समस्याओं के तार्किक हल ढूंढने की यह प्रवृत्ति हमें सीखने और सिखाने की एक कभी खत्म न होने वाली यात्रा की ओर प्रेरित करती है और लगातार स्वयं को बेहतर बनाने और भविष्य को संवारने में मदद कर जाती है। सवाल पूछना और तर्क वितर्क करते रहने से हम अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को तो जानते ही हैं, उसको समझने का प्रयास भी करते हैं, जिनसे इनकी गूढ़ गुत्थियाँ की जो गुत्थियाँ हैं उनकी तहों में जाकर उन्हें परत दर परत खोलने में कामयाबी भी मिलती है। हमारी जिज्ञासा हमें अपनी भौतिक सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने और असाधारण उपलब्धियों, जैसे पहाड़ पर चढ़ना, समुद्र को तैर के पार करना, चंद्रमा, मंगल और सूर्य की खोज करने जैसे दुर्गम दुष्कर कार्य भी मुमकिन कर दिए हैं। इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे हम खोज के इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हम और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचते जाते हैं। साथ ही हमारा ये खोजी हौसला दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है। अपनी गौरवशाली अतीत को याद करते समय हम अखंड भारत के उस प्राचीन शहर पाटलिपुत्र को भला कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो भारत के पूर्व में स्थित बिहार राज्य में अब राजधानी है। पाटलिपुत्र का इतिहास और संस्कृति इतना समृद्ध रहा कि हमारा ध्यान आज भी वहां जाकर बरबस केंद्रित हो जाता है। कभी कुसुमपुर के नाम से जाना जाने वाला ये पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो मैं अपना जो ये चर्चा है उसको बढ़ा रही हूँ, जहाँ आर्यभट्ट का जन्म हुआ, उनका जन्मस्थल रहा। और कुसुमपुर उन दिनों ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यह नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवशाली धरती रही है।

है। ये जानना दिलचस्प है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर में ही हुआ था, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया में आर्यभट्ट का योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, जो आज भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। बिहार में जैन धर्म की जन्मस्थली रही, बौद्ध धर्म की जन्मस्थली रही, भारत के इस राज्य में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है ये राज्य। इनके अलावा भारत में बिहार राज्य में कई ऐसे महान विद्वानों की जन्मस्थली है, जिसमें ज्ञान विज्ञान गणित दर्शन आदि विविध शाखाओं में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक गीत के साथ, हम कार्यक्रम को सजाते हैं।

0: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्भरन की प्रस्तुति में।
1: हेलो, पहला फोन।

0: जी हम नातिन लोग नमस्ते। अच्छा आवाज आना
1: हाँ खूब अच्छा
0: हाँ हम भी अच्छे हैं। तनी दुख में है।
1: कैसे काहे दुख में हवा?
0: भतीजी के उनका क्रियाकर्म आज के दिन होइल बा तो तनी दुख में है जा।
1: ईश्वर ओकर आत्मा के शांति
0: दे। देखा एक कहानी बोला था है?
1: बोला
0: राजा परीक्षित के
1: जी।
0: राजा परीक्षित के बेटा धनवान तो वो गैलन जंगल में लड़का लोग के संगे संगतिया लोग के संगे गैलन घूमे जंगल तो घूमे गैलन तो का देखत हवन सोना के मटुक टांगल बा तो जल्दी से लेके अपन सिर पर रख लेलन और तो कलिकाल रहल सोना सोना में कलिकाल बैठेला तो अपन सिर पर जब रख लेलक तो बौरनी धर लेलक चोकरवा के अब नहीं सकत का करी। अब जाते जाते जाते देखा था सांप सरप मर के पड़ल बा और एगो जोगी अपन अथी है तप करत हवन बस उठा के सपुआ कर गला में डाल देलक। जब डाल देलक तब बोले अच्छा कोई बात नहीं बाटे आठवा दिने यही सपुआ तोहरा दसी। तब अपन मटुक टांग के निकल निकल निकल गल फिर वहाँ से निकल गल का फिर अपन कपार स्थिर में हो गल। अब रोइते छोकरवा दुख में संगतिया लोग के संगे घरे लौटल। जब घरे लौटल तो राजा पूछा तो हम का भइल तब ऐसे के बात ऐसे है संगतिया लोग बोलन जा तो आठवा दिन तो सांप आई तो बिन दे वो तो नहीं जी अब कैसे का होई। तब गैलन ब्राह्मण यहाँ ज्योतिषी यहाँ गैलन तो बोलन कि एगो काम कर जोन सीमा से वो सपवा आई वो सरपवा जोन सीमा पकड़ के आई तो दोनों बगल लावा और दूध रख देवे के दोनों बगल तो जब पीते आई तो ओकर जवन लहर रहल वो कमती हो जाई। तो आवत हवन आते आते आते अठवा दिने बड़का कथा वार्ता सब भय लागल तो सांप छपल तो दोनों बगल के पीते पीते भूल गल के राजा के बेटा के बिंधे के बा
1: भुला गल।
0: तब ओहिरन तब गद्दी पर चढ़ लग रहा जोन फुलवा जब उनकर हाथ में रखा ही रहल वो फुलवा फुलवा में पतरा सन सुई नियर उ सरप पतरा सन सुई नियर हेल के उनकर डस देलक समा कस के मारे वाला नहीं उ जी जाए तो डस देलक। तो ब्राह्मण के बतावल बात रहल तो लैकवा जी गल ओकर बच गल तो हवे दूध लावा दोनों बगल रखत रखत पियत पियत पियत पियत उनकरा उ भूल गइलन जा जे तो इतना बड़ा भारी हमार में कैसे हुई तो उ तो बच गइलन। ये राजा परीक्षित के कहानी रहल जंगल में गए हल राजा के बेटा हाँ तो राजा परीक्षित हुआ पर ऐसे से राजा के कहानी ढेर बा राजा भोज के कहानी बा
1: जी
0: अथी के कहानी ढेरे कहानी बा समाज उतना नहीं जानेला भूल गए है।
1: कोई बात नहीं
0: सुनला ना कहानी
1: कोई बात नहीं
0: कोई के मटुक में कलिकाल बैठा रहल तो छोकरा जब सर पर डाल लेलक तो तब बौरा गइल अपन सिर पर पहन लेलक तब नहीं जाना था मरल सांप के जियल सांप।
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: धन्यवाद बहुत धन्यवाद ऐसा ऐसा कहानी लड़का लोग के सुनाई के चाही तब्बे जनियन जा कैसे नानी दादी के कहानी तोहर मार्गदर्शन करत हवा लड़का लोग के समझावत हवा के कुछ चीज देखबत अपन कपार पर नहीं डाल ले के नहीं तब पगला जेब। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। चलिए हम बातचीत जो हम कर रहे थे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टीय की रचना की और इस पुस्तक पर विश्व भर में गणित का पहला पुस्तक माना जाता है। आर्यभट्टीय में गणित और खगोल विज्ञान का की गहन चर्चा है। आर्यभट्टीय के गणित खंड विशाल और व्यापक हैं जिसमें अंक गणित बीज गणित समतल और गोलाकार त्रिकोणमिति अंश ज्ञात समीकरण घात श्रेणी

के योग और साइन की तालिका आदि जैसे विभिन्न विषयों की को शामिल किया गया है। वहीं इसका खगोल विज्ञान खंड, जिसे खगोल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, गूढ़ खगोलीय प्रेक्षणों और गणनाओं पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में उस अवधि में उपयोग में लाए जाने वाले कई खगोलीय उपकरणों जैसे छाया यंत्र, अर्धवृत्ताकार और गोलाकार कोण मापने वाले उपकरण, बेलनाकार छड़ी जिसे यष्टि यंत्र कहा जाता है, धनुषाकार और बेलनाकार घड़ियों आदि की चर्चा है। एक और फ़ोन कॉल है, हम लेते हैं, कट गया शायद। चलिए हम बात को जारी रखते हैं। गौरतलब है कि खगोल बिहार में पटना से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का यह नाम खगोल विज्ञान के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द खगोल से लिया गया है, जो आगे चलकर स्थानीय प्रभाव के कारण शब्द की मूल वर्तनी से थोड़े परिवर्तन के साथ खगोल के रूप में प्रचलित रहा। आर्यभट्ट ने उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण आधुनिक गणित का जनक माना जाता है। उन्हें गणित की एक विशेष शाखा बीजगणित, जो समीकरणों पर आधारित अभिव्यक्तियों की बात करती है, के विभिन्न विधाओं को विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। आर्यभट्ट के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से संख्या के रूप में शून्य का की अवधारणा है का प्रतिपादन है। जब हम कभी गीत भी सुनते हैं, मनोज कुमार की एक फिल्म है, उसमें वो कहता है, गीत में कहा गया है, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो जीरो भारत में शून्य जो दिया गया वो आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। इसीलिए उन्होंने गणितीय समीकरणों में से एक प्लेस होल्डर के रूप में रखा गया था। उन्होंने दशमलव का उपयोग करके संख्याओं की प्रदर्शित करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली को विकसित किया था, जिसका प्रयोग आज भी गणित के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। माना जाता है कि आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित बीज गणित की विविध संकल्पनाओं ने आधुनिक बीज गणित की नींव है, वही उनके ज्योतिमितीय कार्यों की समकालीन विश्लेषणात्मकता मानी जाती है। आर्यभट्ट का योगदान खगोल विज्ञान में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके सौर मंडल के मंडल ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का सटीक हिसाब लगाया और आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। वे पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के गोलाकार रूप और इसके घूर्णन सिद्धांत की यह परिकल्पना विज्ञान की प्रगति और युगांतकारी साबित हुई, जिसने ग्रहों के सौर्यमंडल गति को जानने, समझने और के प्रचलित तौर तरीके को सिरे से बदल दिया। आर्यभट्टीय के अनुसार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों के कारण पड़ने वाली छाया पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने पहली बार में ही ये बताया कि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो ऐसे ऐसे खोजपूर्ण कार्य आर्यभट्ट द्वारा किए गए। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस ये पुस्तक एक बहुत भंडार है ज्ञान का, ज्ञान विज्ञान के उन्नायक महर्षि बोधायन। हमने अपने दैनिक जीवन में तरह तरह की आकृतियां देखते हैं, अपने भिन्न प्रयोजनों के अनुसार उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। यह दरअसल गणित का जादुई दुनिया है, जिसमें हम संख्याओं, रूपों, आकृतियों और उनकी विशेषताओं, जब बच्चा छोटा होता है खेल खिलौने लाते हैं तो उसमें हम शेप्स और

0: चांद सितारे सूर्य मंडल की भी जो पूरी चार्ट्स मिलते हैं वो लाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। उस समय पर सोचिए कैसे होता होगा जब हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने खोज कार्य किया होगा कि सूर्य कैसे घूम रहा है, चंद्रमा कैसे धरती के चक्कर लगा रहा है और धरती कैसे अपनी धुरी पर चल रही है। ये सब आपसी रिश्ते, गुण व स्वभाव आदि का पता लगाने के लिए विविध प्रकार की गणनाओं का सहारा होते हुए हैं। विद्यालय में गणित की कक्षा दरअसल हमें दैनंदिन के जीवन के लिए तैयार करती है। हम इन कक्षाओं में अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के साथ बीज गणित, तरह तरह के कौशल जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो अरिथमेटिक, एल्जिब्रा, ज्योमेट्री आदि कहते हैं, तभी वो मैथ्स बनता है। तो ऐसे ऐसे अनोखे सवालों के बड़ी सरलता से सुलझा लेते हैं गणितज्ञों की द्वारा दिए गए। ऐसी शाखाएं दरअसल एक दूसरे के पूरक हैं जिनकी मदद से हम गणित के अनोखे सवाल सुलझा लेते हैं। चलिए हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल पहले लेते हैं। हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उनसे पूछते हैं कि गणित उनको कैसा लगता है। चलिए हेलो।
1: हेलो दीदी,
0: नमस्ते जी, प्रणाम, कैसी
1: प्रणाम।
0: हैं आप?
1: जी मैं अच्छी हूँ, आप अच्छी हैं ना?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक। हाँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के जो विद्वान हैं, ज्ञान परंपरा के निर्माता, उन पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की,
1: शून्य से शुरू हुआ था।
0: बिल्कुल गणित,
1: हाँ, गाने में ही कहा था जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
0: यही
1: भारत
0: मैंने उदाहरण दिया कि भारत ने
1: तब गिनती आई।
0: बिल्कुल, गिनती सीखने से पहले शून्य की चर्चा होती है।
1: हाँ, तो ये तो होती थी।
0: बिल्कुल।
1: और गणित ये एक कठिन ही विषय है गणित, क्योंकि हमारे समय में हम जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स नहीं होती थी, अरिथमेटिक होती थी।
0: जी इसीलिए मैंने कहा मैथ्स में तीन भाग हो जाते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अल्जिब्रा। तो हमें अल्जिब्रा बड़ा कठिन लगता था, एक्स और वाई कैसे जुड़ जाते हैं।
1: ये तो कठिन ही विषय है बहन जी, ये तो बहुत ही कठिन विषय है। जो जिनका मतलब जो लोग जिनका दिमागी में आ जाता है तो समझिए वो समझ गए हैं ये क्या है, लेकिन हम हमारे लिए तो ये एक कठिन ही विषय है। और आपने ये बहुत अच्छा कहा कि कहानियाँ बच्चों को सुनाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कहानियाँ जो है वो प्रेरणादायक भी सुनानी चाहिए उनको, और उनमें ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जिसे वो प्रेरित होकर वो भी वैसा बनने का प्रयास करें।
0: उनकी बिटिया ने एक प्रश्न किया कि
1: हाँ
0: कैसे ये ग्रह जो हैं अटके हुए हाँ। हैं, ये गुरुत्वाकर्षण हाँ। की कारण है।
1: हाँ।
0: हम कहते हैं सितारे ऊपर हैं तो सितारे गिरते क्यों नहीं है?
1: हाँ।
0: बिल्कुल, धरती गोल घूम रही है तो किस पर घूम रही है, आधार क्या
1: हाँ।
0: है?
1: प्रश्न पर प्रश्न
0: होते हैं, बच्चों के मन में जिज्ञासा जगाने का एक ही माध्यम है कहानियां।
1: वैसे मन बहलाने के लिए नानी दादी की हम जब छोटे थे तो सुनाते थे, लेकिन वो भी अपने हिसाब से हमें सुनाते थे, जो हम समझते थे हमने जो अच्छा लगा उसको अपनाया, जो हमें गलत लगा हमने उसको छोड़ दिया। तो, हाँ, तो बच्चों को भी प्रेरणादायक लगे से अभी के छोटी छोटी कहानियां, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी है बहन जी जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो सच्ची घटनाओं में घट जाती है। भारत में ऐसे बहुत प्रमाण है कि उनके
0: मॉरिशस में भी ऐसे प्रमाण है। देखिए अब साहित्य रचा जा रहा है तो छोटी छोटी कहानियों के आधार पे
1: लेकर ही रचा जाता है।
0: जब अभिमन्युनाथ जी ने लाल पसीना लिखा,
1: हाँ हाँ,
0: जब हाँ। रामदेव धुरंधर ने पथरीला सोना लिखा, तो उन बचपन से वो जो उन्होंने सुना अपने माँ, अपने हाँ। दादा दादी, अपने नाना नानी, या अभिमन्युनाथ जी कहते हैं उनके मामा हाँ। ने खेतों में काम किया
1: हाँ, और
0: कहानियां सुनी, उन वो कहानियां नहीं थी, वो दुर्दशा सह रहे थे खेतों
1: हाँ,
0: में
1: सह रहे थे वे, एक कैसे वो एक हकीकत एक
0: हकीकत थी,
1: वो। थी
0: तो वो हकीकत हाँ। आज प्रवासी साहित्य बन गया ना।
1: हाँ जरूर,
0: तो प्रवासी साहित्य इसी प्रकार बना, वो दूरदर्शन

0: इच्छा जो उन्होंने सही थी हमारे पूर्वजों ने, तो उसको कलमबद्ध करने के लिए कुछ ऐसे लेखक उभर आए जिन्होंने इसको कलमबद्ध किया, तो उनके मन में भी तो जिज्ञासा रही, पैनी नजर रही समाज पे कि क्या घट रहा है, तभी तो लिखा जाता है ना।
1: हाँ जी जी जरूर, ऐसे ऐसी अनेक कहानियां हैं, अनेक पुस्तक हैं कि जी। हम प्रेमचंद की कहानियां भी लेते हैं तो वो अपने जो गांव की जो स्थिति थी, देहाती गांव,
0: प्रेमचंद सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं।
1: उनकी कहानी तो बड़ी जीवंत कहानी थी, जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है,
0: क्योंकि वो समाज में जो घट रहा है उसी को तो उन्होंने कलमबद्ध किया, उसी को तो अपनी कहानियों में जोड़ा। तब देखिए जब हम गीत भी सुनते हैं जीवन की, इतनी सच्चाइयां गीतों में भी तो आती हैं, तो लेखक जब भी कलम चलाता है कहीं ना कहीं से तो उदाहरण उठाता है ना, कहीं ना कहीं उसके मन का कौतूहल जागता है तो वो कुछ ना कुछ कलम से अपने पृष्ठों पर लिख देता है।
1: गानों में भी बहुत ही सच्चाई सामने आती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जीवन की सारी सच्चाई सामने आती है। दीदी बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है आपने, बहुत क्या कहूं,
0: बस एक पुस्तक की पुस्तक की जानकारी है
1: पर बहुत सच है,
0: विस्तृत है। हम कोई भी पुस्तक उठाते हैं तो मुझे लगा आज ये हमारे श्रोताओं को जानना चाहिए कि आर्यभट्ट द्वारा शून्य का वो खोज हुई थी और ज्ञान विज्ञान के उन्नायक रहे महर्षि बोधायन, तो ऐसे ऐसे नाम ही आज के बच्चों को नहीं पता है,
1: नहीं पता है
0: बिल्कुल, उनको बताने की आवश्यकता है, तभी वे अपने इतिहास से
1: जो जानेंगे,
0: इतिहास को सुनेंगे तभी तो जानेंगे, जब सुन नहीं पाएंगे तो कैसे जानेंगे,
1: क्या जानेंगे बहन जी। जरूर बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी,
0: धन्यवाद आप लोगों का जो श्रोता बनकर सुन रहे हैं,
1: और हर सप्ताह एक प्रोग्रामों को
0: आप के द्वारा 10 लोगों को भी बताया गया, उसमें से 4 ने भी प्रश्न कर को के उत्तर को ढूंढने का प्रयास किया तो पहुंच गए ना हमारा
1: तो
0: उद्देश्य,
1: बहुत है
0: बस उद्देश्य सिद्ध होता है जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आगे बढ़ता है और बच्चों को साहित्य से जोड़े
1: इसको,
0: बिल्कुल जानकारियों को साझा नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ पाएगा।
1: हाँ जी धन्यवाद
0: जी, बहुत धन्यवाद। चलिए हम चर्चा को जारी रखते हैं, संस्कृत साहित्य के 8 सूत्रों का उल्लेख है जिनमें से बोधायन का शुल्प सूत्र अपनी मौलिकता के कारण विशेष महत्वपूर्ण है। बोधायन का शुल्प सूत्र वस्तुतः श्रोत कर्मों से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि संस्कृत में शुल्प शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी होती है, अपने नाम के अनुरूप ही इस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के माप और उसके निर्माण आदि विषयों पर व्यापक चर्चा उपलब्ध है। महर्षि बोधायन भारत के महान दार्शनिक और गणितज्ञ रहे, उन्होंने अपने जीवन काल में ही ये कोई 200 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की थी। सोचिए उस समय 200 ग्रंथों की रचना हुई जिनमें उन्होंने गणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, उदाहरण के तौर पर किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्गों का क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये महर्षि बोधायन का प्रेमय है। महर्षि बोधायन द्वारा प्रतिपादित इस कथन की छाप पाइथागोरस में भी स्पष्ट देखी जा सकती है। ऐसे ऐसे हमारे ज्ञानवर्धक और हमारे ज्ञान परंपरा के निर्माता रहे, जिनमें से आज कुछ का नाम मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ और उनके किए गए कार्यों को भी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के पथ प्रदर्शक भी रहे महर्षि चरक। हम में ज़्यादातर लोगों ने ये कहावत अपनी दादी या नानी से सुनी होगी कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है, स्वास्थ्य हर चीज़ से बढ़कर होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दरअसल हमारी प्रगति के लिए बेहद ही आवश्यक होता है, इसलिए हम भारत के लोग जो भी पुस्तक

में लिखा जाता है भारत के लोग, पर हम भी तो जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, ऐसा संकल्प करते हैं। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिस वन अर्थ वन हेल्थ के लक्ष्य की ओर बढ़ना। स्वस्थ रहने के लिए हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। हम नियमित योग करते हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन लेने का प्रयास करते हैं, संतुलित भोजन लेने का भी प्रयास करते हैं, पर अंदरूनी क्षमता विकसित करते रहे। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाता है। स्वास्थ्य की चर्चा होते ही एक बात जो अक्सर हम सबके जहन में आती है, तब जबकि आज की तरह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी जिसे कहते हैं का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य रोगों से भला कैसे लड़ता था। इस बात का जवाब प्राचीन भारत के प्रचलित आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा आदि के ज्ञान में छुपा हुआ है, जो भारतीय ऋषि मुनियों ने की देन है। आज भी हम एलोपैथी से ज़्यादा नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या है, जड़ी बूटियाँ और जो हमारे आसपास जो हमें मिलता है उन्हीं से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें और संतुलित आहार में भी कहा जाता है कि हमारा आहार ऐसा हो, औषधिपूर्ण हो, ताकि हम बीमार ही ना पड़ें और अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पिएं। इस बात का जवाब प्राचीन भारत के प्रचलित आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा आदि के ज्ञान में छिपा है, जो भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें दिया। और आयुर्वेद को लेकर पुराणों में एक आख्यान है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, पूरी कर ली थी, उन्हें हठात यह अनुभव हुआ कि धरती पर फैलने वाली महामारियों से उनके बनाए हुए मानव बड़ी संख्या से अपनी जान गंवा देंगे। माना जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तब स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के का रूप लेकर समुद्र से निकले थे और मनुष्य को इन बीमारी रूपी आपदाओं से बचने के लिए आयुर्वेद की रचना की थी। आगे ये भी माना जाता है कि महर्षि चरक, जिनका काल साक्ष्यों के अभाव में वैसे तो ठीक से विदित नहीं है, पर एक अनुमान के मुताबिक जनका काल दूसरी शती ईस्वी पूर्व में माना जाता है, भारतीय औषधियों के जनक थे, जिन्होंने पहले पहल उपापचय, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम, डाइजेशन से संबंधित विभिन्न रोगों को न केवल पहचाना बल्कि उनके निदान भी बताए। विज्ञान की भाषा में अपापच्य रोगों को शरीर की वे रासायनिक क्रियाएं हैं जिनके कारण हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा बनता है। तो ऐसे ऐसे रहे हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के निर्माता महर्षि चरक, कुषाण राजवंश के सम्राट कनिष्ठ के राजवैद्य थे। उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी। संस्कृत में रचित चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का एक विश्वकोश है, जो गद्य और पद्य की मिश्रित शैली से लिखा गया है। चरक संहिता कुल 8 भागों और 120 अध्यायों में विभक्त है। इनमें रोग नाशक और रोग निरोधक दवाओं तथा सोना चांदी लोहा पारा आदि धातुओं की भस्म एवं चिकित्सा के उनके उपयोगों का विस्तृत वर्णन हम पाते हैं। भारत का ये आयुर्वेद ज्ञान दुनिया के प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों का अग्रण्य आचार्य चरक ने रोगों की पहचान एवं नए दैनिक उपचारों
में

अपना जीवन समर्पित कर डाला। आचार्य चरक और उनके द्वारा रचित चरक संहिता ने चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में पद प्रदर्शक का कार्य किया। आयुर्वेद के प्रशंसकों के लिए चरक संहिता आज भी एक मौलिक स्रोत के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान के भंडार हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के निर्माताओं द्वारा ऐसा ऐसा ग्रंथ लिखे गए, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिनसे आज भी जनमानस को लाभ हो रहा है। एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे सजाते हैं, यज हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए इसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे।

0: उत्साहित हो जाएं जब दो मन।
1: श्रोताओं, अभी हमने बात की संतुलित आहार की और औषधियों की, पर स्वस्थ और संतुलित जीवन की कुंजी महर्षि पतंजलि का योग विज्ञान भी रहा। एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत कभी हमारे समाज में एक आदर्श के रूप में प्रचलित रही, जिसका मुख्य संदेश ये था कि केवल शिक्षा ही व्यक्ति को सफलता की ओर, प्रतिष्ठा और सम्मान की ओर ले जा सकती है। यह वह समय था जब समाज में शारीरिक श्रम अधिक था, मानसिक श्रम को उससे कहीं अधिक महत्व दिया जाता था और खेलकूद को प्रायः कमतर समझा जाता था। उस समय शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक ऊंचाइयों तक पहुंचने और शारीरिक श्रम से मुक्ति पाने का एक प्रभावशाली साधन भी माना जाता था। ध्यान देने की बात यह रही कि खेलने कूदने से लेकर हमारी पूर्व की ये सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आज केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व दिया जाने लगा है। खेल, व्यायाम, योग और ध्यान जैसे अभ्यास आज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य अंग से बन गए हैं। हमारा समाज यह भली भांति समझ चुका है कि शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना न केवल प्रसन्नता और सफलता बल्कि एक दीर्घायु और संतुलित जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। योग वस्तुतः इसी संतुलन को प्राप्त करने की कला सिखाता है और व्यक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता के विकास में सहायता भी करता है। आज की दुनिया जो कि एक मशीनी युग कहना गलत नहीं होगा, तकनीक ने हमारे जीवन में इतनी आसानियां दे दी हैं, इसको इतना आसान बना दिया है, लेकिन इसके कारण हमारा शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है और हम शारीरिक दृष्टि से निष्क्रिय होते जा रहे हैं। टीवी मोबाइल की चमक दमक से हम प्रकृति की सादगी और ताजगी से दूर हो चुके हैं। श्रोताओं, आज बाग बगीचों में कहाँ लोग मिलते हैं घूमते हुए, पर अगर हम समझ के चलें तो सुबह की जो सैर होती है उसका जो लाभ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और सुबह के समय योग व्यायाम करना कितना लाभकारी हो सकता है, प्राणायाम करना कितना लाभकारी हो सकता है। इसका असर ये हुआ कि आज इंसान मानसिक रूप से थका हुआ और शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करता है, तभी तो योग विद्या हमारे लिए एक वरदान के रूप में हम पाते हैं। इसमें अब कोई दो राय भी नहीं है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल तकनीकी या शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, स्वास्थ्य, एकाग्रता और आत्मचिंतन की भी विशेष महत्व हैं। योग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। संस्कृत में योग का अर्थ जोड़ना है। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधता है। जून में महीने में योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को। इसमें नियमित अभ्यास से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और स्थिर हो जाता है। योग वस्तुतः एक जीवन शैली है जो हमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और जागरूकता का पाठ पढ़ाती है। भारत में योग का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। भारत ने ये अनमोल ज्ञान पूरी दुनिया को दे दिया है। योग न सिर्फ व्यक्ति के लिए लाभदायक है बल्कि ये समाज की भलाई और समृद्धि का रास्ता भी दिखाता है। योग को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए श्रेय जो जाता है वह है महर्षि

पतंजलि। उनके जन्म को लेकर एक कहानी प्रसिद्ध है कि तपस्विनी की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे एक दिव्य बालक वरदान में दिया जो उसकी हथेली पर प्रकट हुआ। उसका नाम रखा गया पतंजलि। पतंजलि शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, पत यानी गिरना और अंजलि यानी हाथ। उसका मतलब है जो हाथों में प्रकट हुआ। एक और मान्यता के अनुसार महर्षि पतंजलि समृद्ध मंथन के समय नाग के रूप से प्रकट हुए थे और उनके सिर पर एक दिव्य मणि रत्न जटित था। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के समय में मौजूद थे। उनका कार्यक्षेत्र आज वाराणसी क्षेत्र के आसपास माना जाता है। योग सूत्र में कुल ये उन्हीं द्वारा लिखा गया योग सूत्र को इसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। पतंजलि तंत्र और महाभाष्य योग सूत्र और एक और पुस्तक भी लिखी गई, पर योग सूत्र उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं जिनमें योग के सिद्धांतों और अभ्यासों को बहुत संक्षेप में देखा गया है। आज हमने पतंजलि पर भी चर्चा की। आज हमने 5 ऐसे भारतीय ज्ञान परंपराओं के निर्माता के बारे में बात की है। समय की सुइयां बता रही हैं कि 5 बज चुके हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जानकारियां बहुत सी हैं पर आज के लिए इतना ही। एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। यज को धन्यवाद देते हैं सहयोग के लिए। आप सभी को शुभ संध्या।

0: MBC रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: जो बढ़ाए साहस वही तो है AM2 रेडियो मॉरिशस 5:03।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
1: देवी और सज्जनों, आपको रोशन की ओर से नमस्कार और आदाब। आप तो है हमारे श्रोता लाजवाब।

0: खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आपको कहेंगे सुस्वागतम और हमसे कीजिए दूरियां कम। जुड़ने के लिए अत्यंत धन्यवाद। और ये है पहला सेगमेंट खेल खिलाड़ी का, यानी 5:30 तक ये प्रोग्राम, ये पहला सेगमेंट चलेगा और इसको हमने टाइटल दिया है सिनेमा दिल से, जहां पर सिनेमा पर हम प्रश्न करेंगे और बेशक गाने भी चलाएंगे। जानने के लिए आज का विषय जो है, आप लोग तो बड़े उत्सुक होंगे, हमें तो ये पता ही है। तो चलिए, आज का जो विषय है, मेरे यार जरा बताना कौन सा है वो गाना। जी हाँ, मेरे मित्र जरा बताना कौन सा है वो गाना। आपको एक गाना ढूंढना है जो इस सेगमेंट के अंत में हम चलाएंगे। बिल्कुल, हर बार हम आपको एक हल्का सा क्लू देंगे। जो गीत आपको ढूंढना है उनमें दो धुन ऐसी हैं जिन पर कई साल बाद नए गाने बने। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक फिल्म आई थी 1989 में चांदनी, जिसमें श्रीदेवी नजर आई थी, उसमें एक धुन बार बार चलती है। वो धुन इस प्रकार है। और 2 साल बाद 1991 में इसी धुन पर यही जो संगीतकार थे शिवहरि जी, लम्हे फिल्म में वही संगीतकार ने वो गाना बनाया, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो। आपको तो पता चल गया होगा कि हम क्या चाहते हैं आप लोगों से। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 1996 में नदीम श्रवण की एक फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, जिसमें ये धुन था। और 4 साल बाद 2000 में धड़कन फिल्म बनी और इसी धुन पर ये गाना चला, तुम दिल की धड़कन में। तो ऐसे ही एक गाना आपको हम ढूंढने को कहेंगे जिसके धुन पर कई साल बाद नई फिल्मों के गाने बने। तो चलिए, आज का जो पहला धुन, आज का जो पहला क्लू है आप लोगों के लिए, ये इस प्रकार है कि ये एक 1980 का गाना है और म्यूजिक डायरेक्टर है अनु मलिक और गायक कलाकार है द हेवनली वॉइस मोहम्मद रफ़ी साहब। ये गाना है, तो आप सोच के बताइए कि कौन सा गाना हम चलाने वाले हैं बाद में, और जो जिसके धुन पर अगर ये गाना आप सुनेंगे तो उसका उसकी जो धुन है उस इस करीब वाला गाना, एक गाना हम चलाएंगे आपके लिए करीब फिल्म से लिया गया, बिल्कुल उसी धुन पर आधारित है ये। तो आप नंबर मिलाइए 4028085 पर, बताइए कि हम कौन सा गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था 1980s में, वो गाना हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक धुन उस गाने में है जो इस गाने में बिल्कुल रिजेंबल करता है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: संजीवनी और कुमार सानू जी की आवाजों में फिल्म करीब का ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना। और ये गाना आपने सुना होगा, ये अनु मलिक जी के म्यूजिक पर ही आधारित है। और वो गाना जो हम ढूंढ रहे हैं रफी साहब वाला, वो भी अनु मलिक ही ने म्यूजिक दिया था। अगर आप ये गाना सुनेंगे, चोरी चोरी जब नजरें मिली, ये एक धुन में आप इसे बदलेंगे तो ऐसा होता है। और इसी धुन पर वो रफी साहब वाला गाना शुरू होता है। अब तो आसान हो गया होगा। और जिन लोगों ने जवाब दिया, आप कॉटेज से आशा जी, अली जी फ्रॉम लिस्का लिए, इंदिरा जी फ्रॉम मौदाबे और विजय भाई फ्रॉम क्राबेट सेवास्तोपोल, लेकिन एक ही का अभी तक जवाब सही है और वो है कॉटेज की आशा जी। तो आप लोग फिर से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं दूसरा क्लू आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। और जो दूसरा क्लू है वो है उस गाने में, रफ़ी साहब के जो गाना है उसमें राज बाबर जी गाने में नज़र आते हैं। बिल्कुल राज बाबर गाने में नज़र आते हैं। नशे में धुत अपनी महबूबा के बारे में सोचते हुए, पर वहाँ महबूबा कहाँ, वहाँ तो कल्पना आयर खड़ी हुई है। अब तो बहुत ही आसान हो गया होगा कौन सा गाना हम ढूंढ रहे हैं। 402-808-5-102-1-101। और जो अभी फीसा वाला गाना चलेगा उसमें भी ये धुन आता है जो इस गाने को हम ढूंढने वाले हैं। उस गाने में भी, फीसा गाने में ये धुन है। आप जरा सुने और अनुमान लगाएं।
1: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Marxist.

फिजा का गाना और बहुत ही सुंदर सी फिल्म थी ऋतिक रोशन करिश्मा कपूर। और ये गाना आपने सुना, मैं फिजा हूँ, और ये धुन जो है उसी गाने पर आधारित है जो रफ़ी साहब के गाने हैं जो आपको ढूंढना है। और इस बार किन लोगों ने फ़ोन किया, चलिए उनका नाम लेते हैं। विल्मे से श्यामा जी, नोटरडाम से रेहाना जी, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स, लीला जी फ्रॉम वाशेगी, अनिता जी फ्रॉम मौदाबे और सरिता जी फ्रॉम कटरबोन। अब देखते हैं किसकी हो।

0: गिजीत, किन लोगों ने सही जवाब दिया ये अंत में आपको हम बताएंगे। एक अंतिम क्लू हम आपको देते हैं कि उस गाने में पूनम धिलन भी नजर आती हैं, अभिनेत्री हैं इस फिल्म में, और गाने के शब्द में दो गाने में दो शब्द आते हैं, जरा और हमनशी। अब तो आसान हो गया होगा, 4028085 पर फोन करें। और ये जो अगला गाना है बाजीगर वाला, ये भी इसी धुन पर आधारित है, जरा आप सुन के तो देखें।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

शिती की पहली फिल्म और शाहरुख खान का जो कि जो पहली फिल्म है जिसमें उन्हें अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर की तरफ से। और इस गाने में भी वही धुन है जो उस गाने में है।

0: आज जरा मेरे हम नशी। और जिन लोगों ने सही सही जवाब दिया वो है कॉटेज क्याशा जी, शमा जी विलमे से, रेहना जी फ्रॉम नोत्रेडाम, देवी जी फ्रॉम हाईलैंड्स, लीला जी फ्रॉम वाशेरी, सरिता जी फ्रॉम कथबोन, अनीता जी फ्रॉम अदालबिया, वाकवा से माला जी, क्लावेत सेबास्तपुर से विजय भाई, बुबासे से हरीश भाई, और यही इन्हीं लोगों ने सही जवाब दिया। आपको कहेंगे बहुत बहुत बधाई हो।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ,
0: और आपके लिए वही पूनम वाला गाना, और थोड़ी देर में दूसरा सेगमेंट आप लोगों के लिए।

आपने ये धुन सुना? यही धुन उस धुन में आधारित है, चोरी चोरी जब नजरें मिली। अब आपको समझ आ गया होगा कि अनुमलिक ने कैसा खेल खेला हमारे साथ।

ये धुन तो आप सुन रहे हैं, मैं तू फिजा है, हवा है यहीं की नहीं। ये भी अनु मलिक का ही संगीत है जो फिजा फिल्म में है।

0: 7 days a week, 24 hours a day.
1: Live.
0: This is Radio Marxis.
2: 5:28 हो गए हैं।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

0: खिलाड़ी हैं क्योंकि जिंदगी एक खेल है और उस खेल में हम ही सभी तो खिलाड़ी हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो छांव हो या धूप, चाहे खुशी हो या गम, चाहे सुख हो या दुख, हर हाल में हर मोड़ पर हमें खेलना है और खिलाड़ी बनना है। चलिए दूसरा सेगमेंट आ गया है, 6 बजे तक ये दूसरा सेगमेंट है और वो है मेरा सवाल तेरा कमाल। और इसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे फुटबॉल पर, स्पोर्ट्स पर और जनरल नॉलेज पर भी। और बेशक हम शुरुआत करेंगे स्पोर्ट्स के साथ और वो भी फुटबॉल और इंग्लिश प्रीमियर लीग। और प्रीमियर लीग में सरासरा मजा खिला हो गया क्योंकि कोई भी सस्पेंस बाकी नहीं रहा। आर्सेनल की जीत हो गई क्योंकि बोर्नमुथ ने सिटी को मुर्गा बना के रखा 1-1। अगर सिटी की जीत हो जाती तो कल बहुत बढ़िया मैच होने वाला था, लेकिन फिर भी आर्सेनल 3-3 बार रनर अप बना और चौथी बार के लिए कैसे रनर अप बनता, ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाती। तो आर्सेनल इज नाउ द चैंपियंस 22 ईयर्स आफ्टर आर्सेनल हैज बिकम द चैंपियन ऑफ इंग्लैंड। आपको याद है 2004 में द इनविंसिबल्स, यानी जो आर्सेनल उस समय था जिसमें चेरी ऑनरी बहुत ही तहलका मचा रहा था उन दिनों, तो उस लीग सीजन में कोई हार आर्सेनल की नहीं हुई थी, चाहे वो होम मैच में हो या अवे मैच, कोई भी हार आर्सेनल के हक में नहीं था, केवल जीत या ड्रॉ। तो चलिए लीग टेबल पर देखते हैं, तो पहले स्थान पर आर्सेनल द चैंपियंस विद 82 पॉइंट्स। और अगर कल आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को एवे हरा दिया तो वो 85 पॉइंट्स हो जाएगा। लेकिन सिटी हमेशा कहता रहेगा कि कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो 100 पॉइंट्स से चैंपियन बने, केवल सिटी ही, और 99 पॉइंट्स से लिवरपूल। दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर सिटी 78 पॉइंट्स, 4 अंक पीछे। तीसरे स्थान पर मजबूती के साथ 68 पॉइंट्स लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पर माइकल कैरिक का जो पोस्ट है वो कंफर्म हो गया, अब वो परमानेंटली मैनचेस्टर का कोच बन गया है। और चौथे स्थान पर अभी है एस्टन विला विद 62 पॉइंट्स, और पांचवें स्थान पर 59 पॉइंट्स लिए लिवरपूल। अगर कल लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड को हरा देता है और एस्टन विला सिटी से हार जाती है, तब एस्टन विला पांचवें स्थान पर आ जाएगी और लिवरपूल चौथे स्थान पर, क्योंकि गोल एवरेज के बलबूते पर लिवरपूल विल बी ऑन द फोर्थ प्लेस। लेकिन जो 5 टीम हैं, जो टॉप 5 टीम्स हैं, वो क्वालिफाई हो गई हैं चैंपियंस लीग के लिए, क्योंकि इंग्लिश प्रेजेंस इन चैंपियंस लीग उन्हें लाता है एक बहुत ही बढ़िया कोएफिशिएंट। छठे स्थान पर द सरप्राइज पक टीम बोर्नमुथ विद 56 पॉइंट और ब्राइटन 53 पॉइंट्स। अगर कल एस्टन विला की हार हो जाती है, लिवरपूल की जीत हो जाती है और बोर्नमुथ भी जीत जाती है, तो बोर्नमुथ विल प्ले इन द चैंपियंस लीग, क्योंकि एस्टन विला तो पहले से ही चैंपियंस लीग में उनकी क्वालिफिकेशन हो गई है, क्योंकि यूरोपा लीग जीत कर। लेकिन टोटनहम हॉटस्पर और वेस्टहम के बीच में क्या होगा, कौन जाएगा नीचे, कौन रहेगा प्रीमियर लीग में, ये अंतिम मैच निर्णायक होगा इन दोनों के बीच। केवल 2 अंकों का फासला है और टॉप स्कोरर के रूप में अर्लिंग हैलैंड विद 27 गोल्स इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरे स्थान पर 22 गोल लिए ब्राजीलियन इगो टियागो, जो ब्रेंटफोर्ड में खेलता है। तीसरे स्थान पर अंतोन सेमेन्यू 16 पॉइंट्स। चौथे स्थान पर 15 पॉइंट्स लिए चेल्सी का जाओ पेड्रो। तो चलिए अब आपके लिए प्रश्न पहला फुटबॉल पर ही, और वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग। और आपको तो पता है कि लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दोनों ने 20-20 बार चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और दोनों के पास 20-20 चैंपियनशिप्स का खिताब है। आप हमें बताइए कि तीसरे स्थान पर आता है आर्सेनल और चौथे स्थान पर आता है मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल दोनों के पास कितनी बार वे चैंपियंस बने हैं, कितने बार चैंपियन की ट्रॉफी है? आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के पास 402-808-5-400-80-85।
1: This is Radio Marches. Radio Marches.

जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, संगीत प्रेमी और खेलकूद लवर्स, ये है आपके लिए प्रोग्राम खेल खिलाड़ी। और हर सच्चे खिलाड़ी पर होती है सारी दुनिया फिदा। और आप भी तो एक

जहां दिल में मेरे है दर्दे डिस्को। सवाल था कि आर्सेनल ने कितने बार चैंपियनशिप का खिताब जीता है और मैनचेस्टर सिटी कितने बार इंग्लैंड में चैंपियंस बनी है ये टीम। तो सही जवाब है 14 टाइम्स आर्सेनल हैव बीन चैंपियन एंड मैनचेस्टर सिटी हैव बीन चैंपियन फॉर 10 टाइम्स। और सही जवाब दिया हरीश भाई फ्रॉम बुबासे और शोभा जी फ्रॉम वाकवा। चलिए अगला जो प्रश्न है आधारित है वादे के मुताबिक वर्ल्ड कप पर। 11 जून को वर्ल्ड कप का जो इनॉग्यूरल मैच है बिटवीन मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका, और ये जाएगा 19 जुलाई तक। 48 टीम्स पहली बार के लिए, 3 आयोजक टीम्स पहली बार के लिए, देश जो है 3-3, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा। तो चलिए आप हमें बताइए कि ब्राजील वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता है, 5 बार विजेता। ऐसे आप हमें बताइए ऐसी दो

टीम्स हैं, ऐसे दो देश हैं जिन्होंने, हर एक देश ने चार चार बार वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीता है। कौन से वो दो देश हैं बताइए हमें 4028085 पर, 4028085 पर ज़रा सोच के हमें बताइए कि कौन से वो दो देश हैं जिन्होंने चार बार वर्ल्ड कप जीता है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न, 4028085।

जी, हमने सवाल किया था कि ब्राजील वो एकमात्र देश है, वो एकमात्र टीम है जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद 4-4 बार ऐसे दो देश आते हैं, वो कौन से देश है? और वो सही जवाब है जर्मनी और इटली। लेकिन अफसोस, इटाली जो है तीसरी बार लगातार उनकी क्वालिफिकेशन नहीं हो पाई है वर्ल्ड कप के लिए, ना तो 2018 में, ना तो 2022 में, ना ही 2026 में, इस साल वो क्वालिफाई हो गई। क्या करें, हो जाता है कभी कभार ऐसा।

0: इन इटली के साथ बहुत ज्यादा ही हो गया है। और ब्राजील वो एकमात्र टीम है जिसने हर बार इस कंपटीशन में भाग लिया है, केवल ब्राजील ही। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया वो हैं क्लावेट सेवास्तोपोल से विजय भाई, इंदिरा जी फ्रॉम अदालबेया, मौराशो से दिला जी, संध्या जी फ्रॉम पोएंटोपिमो, नन्ना जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टोरेल से दीपा जी, इंद्रानी जी फ्रॉम लेस्कालिये और शोभा जी फ्रॉम बाकुआ। चलिए अब हम अगला प्रश्न आधारित करते हैं हिंदी मुहावरे पर। हिंदी मुहावरे पर जब हम आपसे कहते हैं कि वो मेरे लिए कितना प्रिय है, मैं उन्हें कितना चाहता हूं, तो मुहावरा बनता है वो मेरे आंखों का तारा है। तो आप हमें उस मुहावरे को, वो मुहावरा आपको ढूंढना है जिसका अर्थ इस प्रकार है, अपना ही आदमी नुकसान पहुंचाए। अपना ही प्रिय, अपना ही आदमी आपको नुकसान पहुंचाता है। और एक क्लू हम आपको देते हैं, रामायण का जो विभीषण है, आप तो आसान हो गए हैं, कौन सा मुहावरा है जो विभीषण से जुड़ा हुआ है, आप हमें बताइए राजा विभीषण से कौन सा मुहावरा जुड़ा हुआ है। 4028085 5
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।
0: जी करदा, आप लोगों को हम सुने।

0: जी हाँ, जब अपना ही आदमी नुकसान पहुंचाता है, आपको डिसीव करता है, आपकी हार का कारण बन जाता है, उस मुहावरे को हम क्या कहेंगे? व्हाट्सएप द्वारा एक मैसेज आया, आस्तीन का सर्प। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि हमने विभीषण वाला क्लू आपको दिया, राजा विभीषण वाला। सही जवाब है घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। विभीषण के कारण ही रावण का विनाश हुआ राम जी के हाथों द्वारा। और सही जवाब रोजबेल से नवीन भाई ने दिया, रोशनौर से गमंती जी, नीला जी फ्रॉम बाकवा, हरीश भाई फ्रॉम बुबासें, राजकुमारी जी फ्रॉम हिलविचा सैंपियर पहली बार के लिए, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स और इंदिरा जी फ्रॉम ऑडालबेया। चलिए एक अंतिम प्रश्न आपके लिए, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और वो भी रोड ट्रैफिक एक्ट पर। बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, ये तो आपको पता है ही। तो आपको हमें बताना है, एक गाड़ी में, एक कार में दो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होते हैं, एक आगे की ओर और एक दूसरा पीछे की तरफ। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर गाड़ी का नंबर होता है। बताइए जरा दिमाग पर जोर लगाकर कि आगे के जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो कौन सा रंग का होता है, और जो पीछे वाला गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है वो कौन सा रंग का होता है। 4028085 4200 85
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।

किस रंग का होता है, और वो है वाइट यानी सफ़ेद, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो काले रंग का होता है, और जो पीछे का रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो पीला रंग का होता है, येलो। और सही जवाब सुरेखा जी ने दिया मेनिल से, और नीला जी फ्रॉम बाकवा। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। जिन लोगों ने भाग लिया बहुत बहुत बहुत बार धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे आप दिलचस्पी बढ़ाते रहें और व्यायाम करते रहें ताकि आप लोग स्वस्थ व सुरक्षित हों और जिंदगी का खूब लें आप मजा। हेल्थ इज जस्ट मोर देन वेल्थ। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आपको।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोबासन रुजिल में नगर पालिका चुनाव की शुरुआत लुई टूसा ओंद्रे सर्वसम्मति के साथ मेयर चुने गए। सफाई और चिकुनगुनिया पर रोकथाम पर रहेगा ध्यान। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में मेयर और लोर्ड मेयर चुनावों की तारीखें तय की। कट्रोबोन पोर्टली वाक्वा फेनिक्स और क्यूपिप में सोमवार को होगा मतदान। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शांति, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अफ्रीकी सहयोग मजबूत करने पर अपील की है। ये बात कैबिनेट की बैठक में कल नोट की गई। मुकाम में पब्लिक सर्विस एक्सलेंस अवार्ड का आयोजन। मंत्रालयों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और डिसिप्लिन फोर्सेज को सम्मानित किया गया। आज से पहले जेद्दा में अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक। मंत्री शकील मोहम्मद ने यात्रियों की सुविधा और इंतजामों पर चर्चा की। कोंगो में इबोला का खतरा बढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति को बहुत गंभीर बताया। युगांडा में भी मामले सामने आए हैं। चीन के शांशी प्रांत में कोयला खदान में भीषण गैस विस्फोट। कम से कम 90 लोगों की मौत। बचाव अभियान जारी। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। नगर पालिका चुनावों की शुरुआत आज बोबासन रुजिल से हुई, जहां लुई टूसा ओंद्रे सर्वसम्मति के साथ मेयर चुने गए हैं। साल 2012-2013 के बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता रहे लुई टूसा ओंद्रे का कहना है कि उनकी प्राथमिकता शहर में सफाई की जो समस्या है उससे निपटना और चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में लोर्ड मेयर और मेयर के चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं। बोबासन रुजिल नगर पालिका में आज चुनाव लगाए गए, जबकि कट्रोबोन पोर्टली वाक्वा फेनिक्स और क्यूपिप नगर पालिकाओं में नए मेयर को चुनने के लिए सोमवार 25 मई को चुनाव आयोजित किए जाने वाले हैं। कैबिनेट ने नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी के परिणामों का जायजा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने शांति और सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी लगाई। इस बात का जायजा कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के कुछ अन्य अहम फैसले कुछ इस प्रकार हैं। कैबिनेट ने देश में मूसलाधार बारिश के दौरान लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, आपातकालीन सेवाओं तथा स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। नए प्रावधानों में खराब मौसम के दौरान आवाजाही, काम और सुरक्षा को लेकर साफ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। कैबिनेट ने साल 2026 के पब्लिक हॉलीडे में बदलाव की बात नोट की। अब गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। ये बदलाव मराठी मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया गया। कैबिनेट

0: ने पानी की पाइपलाइन बदलने की बड़ी परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू होने वाली इस काम के तहत गोंबी के शिमे वैंपिया इलाके में मुख्य पाइप बदली जाएंगी ताकि उत्तरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बेहतर हो सके। परियोजना अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। कैबिनेट ने मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी परियोजना की प्रगति को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बदले बिना किसी दूसरे टेलीफोन सेवा प्रदाता की सेवा ले पाएंगे। इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। सरकारी सेवा में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार को कल शाम मोका में सम्मानित किया गया। मंत्रालयों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और अन्य सेवाओं को एक भव्य समारोह के दौरान पुरस्कृत किया गया। जनता की सेवा में उनके योगदान को सराहते हुए ट्रॉफी सम्मान और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम से अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं। साल 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई ये व्यवस्था अब मध्यम स्तर की कंपनियों तक भी बढ़ाई जा रही है। ई इनवॉइसिंग का उद्देश्य कंपनियों की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। इस देश के आर्थिक सेक्टर में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुनिए।
1: कैथरबोन में हमारी मुलाकात सिल्वेन से हुई। उनकी कंपनी इलास्टिक एक स्थानीय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसे मॉरिशस की कंपनियों को अपने संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद देने के लिए तैयार किया गया है। पूर्व में देखें तो वेबसाइट, बिक्री, अकाउंटिंग तथा वैट इत्यादि सबके लिए एक प्रणाली थी जो कि एक ठेकेदार के लिए इनका संचालन करना काफी जटिल हो जाता है। इसलिए इन सभी को आसान बनाते हुए इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपनी बिक्री, स्टॉक खरीद या अकाउंटिंग सहित कई कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की सुविधा देता है। एक डायरेक्टर होने के नाते इस प्लेटफॉर्म पर आने पर आपको अपने टर्नओवर दिन, सप्ताह और महीने तथा वित्तीय साल के दौरान निकले गए बिल्स और इसके साथ ट्रेंडिंग बिजनेस भी प्राप्त होगा, जिससे कि पता चले कि किस ब्रांच ने अच्छा काम किया है। कैसे ऐसे छोटे मध्यम उद्योग भी हैं जो क्रेडिट पर काम करते हैं, तो यहाँ ऊपर आपको बिल मिला और नीचे आपको कितने पैसे चुकाए गए ये भी मिलेगा। मजूल्स के स्तर पर कई उपलब्ध हैं, जैसे ग्राहक का डैशबोर्ड, सप्लायर आइटम, सेल्स इत्यादि, जो एक वेबसाइट से जोड़ा जा सकता है। ई कॉमर्स के लिए एक अलग पैकेज है। वाकवा में अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकान में युवा शोएब अपने स्टॉक को संभालते हुए बिल्स का भी प्रबंधन कर रहा है। हाल ही में अपने कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उसने अपनाया है। इस नई प्रणाली के माध्यम से हम आसानी से सब कुछ डिजिटल बना पा रहे हैं और प्रक्रियाओं को भी आधुनिक किया जा सकता है। हम अपने अकाउंटिंग, स्टॉक सब का अच्छी तरह से संचालन कर पा रहे हैं। हमें MRA से पत्र मिला है कि सितंबर महीने से हमें इनवॉइसिंग का इस्तेमाल करना होगा। MRA की एक समर्पित टीम इस बदलाव में कंपनियों का साथ दे रही है। ये प्रक्रिया 2024 में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है कंपनियों के कारोबार के अनुसार। ये एक डिजिटल प्रणाली है जहां एक कंपनी अपने ग्राहक को एक इनवॉइस निकाल कर दे सकती है। इस इनवॉइस में पाए जाने वाली सभी जानकारियां MRA को प्राप्त होगा और टैक्सेशन के लिए एक QR कोड मिलता है, जहां जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 मिलियन से अधिक है उन्हें 2024 में इस प्रणाली में शामिल होने के लिए सूचित किया गया था, और जिन कंपनियों का टर्नओवर 40 से 80 मिलियन होता है उनके लिए जून तक का समय।
0: हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि

0: नगरपालिका चुनाव की शुरुआत आज बुबा सेंट रोजिल से हुई, जहां लुई टुसैन ओंद्रे को सर्वसम्मति के साथ मेयर चुना गया। उनको सुनते हैं।
1: Mais il y en a beaucoup de travail à faire. Il y a problème de chikungunya, beaucoup de problèmes. Et nous pouvons bien sûr l'aide de nos citadins. Ce que nous pouvons faire, c'est améliorer ce qui déjà existait. Parce que nous remarquons dans beaucoup la ville, il y a beaucoup de terrains dans des enfants abandonnés, terrains de foot, pas en a du monde. C'est là que nous travaillons, nous revenons, c'est pour faire ça ban du monde là, ban jeunes là, réintéresser au lieu qu'ils rentrent dans ce problème fléau de la drogue qu'ils ont aujourd'hui, une vilaine.
0: फोर्म लिटॉम प्रोग्रेसिस का कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था संभालने और लोगों को राहत देने के लिए जल्दी कदम उठाने होंगे। आज सुबह बन में एक प्रेस वार्ता में पुल बिहोशे ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने और बाजार में एक अधिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
2: फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के नेता ने चार कदमों का उल्लेख किया जो उनके मुताबिक सरकार को उठाना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति और दामों में बढ़ोतरी का सामना किया जा सके। इनमें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अतिरिक्त पदार्थों को जोड़ने और एकाधिकारों तथा कार्टेल्स के खिलाफ समर्थित कदम की कमी शामिल है।
3: Les créateurs qui puissent faire un effort et diminuer les taxes et TVA, les produits pétroliers importés. Et moi, j'espère que le gouvernement puisse aller vite à l'occasion de ce budget qui peut venir là. Depuis l'élection, au moins, la dépréciation de la roupie finit stabilisée. Sauf ces derniers jours. Là, malheureusement, il y a une appréciation de la roupie par rapport au dollar. Ils surveillent ça de près. Et la Banque de Maurice vient agir dans toute la mesure du possible pour aider nous de ce côté-là.
2: दूसरी तरफ पुल बिहोशे ने उम्मीद जाहिर की कि कंपटीशन कमीशन को अधिक हक देने के लिए कानून में सुधार लाए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा में तेजी लाने के महत्व पर भी बात की। हाल में आदरिया जीवाल द्वारा बुलाए गए प्रेस सम्मेलन पर भी सवाल किया गया। पुल बिहोशे ने कहा कि वे और आदरिया जीवाल साथ काम नहीं करते हैं।
0: बजट 2026-2027 की तैयारी के बीच रिफॉर्म पार्टी ने सरकार के सामने चार प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। शनिवार सुबह एबेन के हेनेसी पार्क होटल में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान महंगाई, चिकुनगुनिया के बढ़ते मामले तथा देश में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
2: भावी बजट के चलते रिफॉर्म पार्टी के लीडर होशी बादल ने सरकार को चार प्रस्ताव पेश किए ताकि जीवन खर्चों का सामना करने के लिए लोगों को थोड़ी राहत मिल सके।
4: TVA, seuil 3 millions qui visait à régater parce qu'il peut affecter tout le business de Maurice. Le taux hybride électrique, vrai hybride et électrique qui visait à retirer du tout pour qu'il ne pas dépenser 50 stécas là, l'eau diesel, l'eau l'essence. Troisièmement, l'eau, prix l'essence diesel, l'eau ça bout en plus qui nous veut dire prix augmenté à cause de la guerre, mais pas mettre du tout là, pas mettre TVA, l'eau ça bout qui inaugmenté là. Au moins, frise sa boute là, revoit sa situation avec cette policy, l'eau pension, qui pas adresse le vrai problème de sustainability.
2: बहुत जल्द रिफॉर्म पार्टी के साथ जुड़े नए लोगों की प्रस्तुति निर्धारित है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वो भावी ग्राम चुनावों के सिलसिले में तैयारी कर रही है।
0: हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चाएं हुई।
5: सऊदी अरब जेदा में हज के ग्रैंड सिंपोजियम का 50वां संस्करण आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई देशों के मंत्रियों, जिनमें शकील मोहम्मद भी शामिल थे, प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों और सऊदी अरब की उच्च हस्तियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान हज यात्रा के आयोजन पर बात की गई, विशेष रूप से स्वास्थ्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और हजियों के मार्गदर्शन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। हमने हज मंत्री तौफिक बिन फौजान अल रबिया और डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फताह बिन

0: लिमान मशत से मुलाकात की और मुर्शिद तथा सऊदी अरब के बीच पाए जाने वाले द्विपक्षीय संबंधों के चलते ये तय हुआ है कि मुर्शिदों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन विषयों पर कई कार्यशालाएं भी आयोजित की गई ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हज की व्यवस्थाएं और बेहतर बनाया जा सके। मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब तथा हज और उमरा के उप मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजन अल रबिया और डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशत के साथ अलग से मुलाकात की। चर्चाओं में अगले हज यात्रा की तैयारियों पर भी बात की गई, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना और मुर्शिद के हज यात्रियों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना है। इस्लाम के पांचवें स्तंभ हज को अदा करने के लिए 1500 मुर्शिद पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, जिसकी शुरुआत रविवार 24 मई से होगी।
1: कोंगो में फैल रहे एबोला को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरे का स्तर और बढ़ा दिया है। संगठन का कहना है कि देश के भीतर स्थिति अब बहुत गंभीर हो चुकी है। अब तक 750 संदिग्ध मामले और 170 से ज्यादा संदिग्ध मौतें सामने आ चुकी हैं।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एबोला के खतरे को बहुत ही उच्च करार दिया। एबोला के फैलाव पर काबू पाने के लिए अंतिम संस्कारों के वास्ते एक प्रोटोकॉल लागू किया गया है। 750 संदिग्ध मामले हैं और 177 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिकारियों ने हुक्म दिया कि सिर्फ खास टीमें लाशों को दफन कर सकती हैं। सभी स्वास्थ्य सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जुटावों में सिर्फ 50 लोगों की भागीदारी की अनुमति दी जा रही है। अभी तक एबोला के लिए कोई टीका या कारगर इलाज नहीं है। कुछ मुल्कों ने एबोला से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए पाबंदियां लागू की हैं। मकसद एबोला के संक्रमण पर नियंत्रण पाना है।
1: और भारत में गर्मी अपनी चरम पर है। उत्तर भारत में विशेषकर पारा 48 डिग्री को पार कर चुका है।
2: भारत की गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस के पार है। भारत के मौसम भवन ने चेतावनी जारी की कि ये स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है, खासतौर पर आने वाले 6-7 दिनों तक उत्तर पश्चिम पूर्व और केंद्र में कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। अस्पतालों और प्रांतीय प्रशासनों में फौरी हस्तक्षेप के लिए तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। इस मौसमी गर्मा की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में गर्म हवाएं और कम पानी है। डॉक्टर हाइड्रेशन पर जोर दे रहे हैं।
3: दिल्ली इज करंटली एक्सपीरियंसिंग हीट वेव वेयर द टेंपरेचर्स गो फ्रॉम 42 टू 43।
2: दिल्ली में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है और 48 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी महसूस की जा रही है। ऐसी स्थितियों में लोगों को उल्टियां हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन भी होता है। इस तरह की हालत को जल्दी इलाज की जरूरत
3: है। Have throw fits or seizures. It's a medical emergency where we have to rapidly cool the patient's temperature.
2: गए 4 दिनों में बिजली नेटवर्क ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की बहुत बड़ी मांग है। अधिकारियों ने सावधान रहने की मांग की। 14 सालों में इस मई महीने में दिल्ली में सबसे गर्म रात दर्ज हुई। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में ही चीन के शांजी प्रांत में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की जाने गई हैं। यह हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ जब खदान के भीतर 250 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। राहत और बचाव अभियान अब भी जारी, जबकि दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और बचाव कार्य में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हादसे की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।

चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। रात को और कल सुबह के दौरान देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, बेशक बाद में ऊंचे इलाकों और दक्षिण में कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। शाम को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ सकती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। प्रवाल रेखा के बढ़े समुद्र खराब रहेगा, खासकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:48 पर हो गया है, सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:35 पर।

0: देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यज, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

केवल नगर बेलरीव में, बेलरीव में 57 साल के 57 years old के श्री धर्मराज भगीरथी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें आदू के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी काला सुबह के 10 बजे उन्हीं के घर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मेसोनेट रोड रिविया दे जोंगी में, रिविया दे जोंगी में 80 साल के 80 years old के सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है। सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे जेसन जगनंदन के मकान रिविया दे जोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

चंद शोक समाचार रामदू रोड बोनाकर्मी 92 साल की 92 years old की तो दिलमुनी शंकर की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान बोनाकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM. एरोस लेन प्लेंडी पापाई में 47 साल के 47 years old के सुरेंद्र भिकारी की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें अजय के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ कल सुबह के 10:30 बजे उन्हीं के मकान प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. गेंस हिल इल्फोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के 57 years old के राजीव कुमार गोपुल की मृत्यु हो गई है. राजीव कुमार गोपुल की मृत्यु हो गई है. वे पहले मॉरिशस में HSBC में मैनेजर के तौर पर काम करते थे. उनकी अर्थी बुधवार 27 मई को मॉरिशस के समय अनुसार 3:30 बजे उठाई जाएगी फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में. शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: सीईबी की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सीईबी की तरफ से एक विज्ञप्ति, फोरेसाइड मो सलमान अंतेल्म, मो सलमान देसवायन, मो सलमान मुनियन, मो सलमान मोराबी, मो सलमान ओसेनी, कॉन बुम्बई, मो सलमान पियात, कॉन ले जूज, डर्बी स्ट्रीट, सैन लुक, बोर्क, ला ब्रासरी, ला कोलोम्ब, जास्मीन, एटली और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रविवार 24 मई 2026 सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक और बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। सीबी की तरफ से एक और विज्ञप्ति, CWA रुयौ, ला शामूज, एस्पास मेजों और सर्कल स्क्वायर और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रविवार 24 मई 2026 सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच में बिना पूर्व सूचित किए सीबी की सप्लाई को बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। सीबी इस असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी है।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
9: सभी प्रियजनों को अनीता का सादर नमन स्वीकार कीजिए. अभी आप रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं जहां आप भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं. भक्तों, इस विश्व में आने पर मानव जाति को कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: विद्या की वृद्धि, परोपकार, अनाथों का पालन तथा अपने संबंधियों की रक्षा. ये चार कार्य प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए. तो इन कर्तव्यों को अवश्य स्मरण कीजिएगा. अभी के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक भजन के साथ.

श्रोताओं, कहा गया है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अर्थात अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य के भीतर प्राणी मात्र की सेवा तथा कल्याण की भावना ही सही रूप में धर्म है। परोपकार व दया भाव ही धर्म की सर्वोत्तम स्थिति है। वेद आदि सत्य शास्त्रों में इसकी महिमा गाई गई है कि धर्म ही सत्य स्वरूप है।

प्रियजन, स्वामी दयानंद का कथन है कि संस्कार ही मानव के आचरण की नींव होती है। जितने गहरे संस्कार होते हैं उतना ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर होता है।

हो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टः मकान्यचनः, अर्थात ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण व चित तृप्त अर्थात काम रहित हो गया है, जो कूत स्थित अर्थात विकार रहित है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर या सुवर्ण खंड एक जैसा है, उसे योगरूढ़ अर्थात योगयुक्त कहा जाता है।

श्रोताओं, कहा गया है कि खिन्नता का अभाव, दक्षता अर्थात किसी कार्य को करने की कला होना तथा मन का ना हारना, ये सब कार्य सिद्धि के साधन हैं। तो इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपके ध्यान एवं साथ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

आइए अशरा ज़िलहज में बाल और नाखून के हवाले से एक हदीस समात फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िलहज का महीना शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो अपने बाल और नाखून ना काटे। बहवाला मुस्लिम शरीफ।

लब्बैक की आवाज़ें गूंजने लगी हैं, हज की खुशबू हर सू फैल रही है और बता रही है कि हज करीब आ रहा है। या अल्लाह पाक अगले हज में हमें भी हाजियों में शामिल करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो
0: मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: भोजपुरी,
4: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का
4: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
4: तड़का
5: भोजपुरी धमाल। आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी,
4: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का
6: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस आउरी रेडियो मनोरंजन पर। रात के 9 बजे था और अभी से लेके रात के 11 बजे ले भरपूर मजेदार कार्यक्रम भोजपुरी तड़का में आप सब कोई के स्वागत है। तो चला सामदी के रात है और सामदी के रात तब बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत सुने के एगो और ही मजा लगेला। तो जहां कहीं से भी साथ देवत हव तो प्यार से साथ देते रहिए और जे तोहरा मन में बा कोनो ऐसन गीत सुने के तोहर हियाँ कोनो ऐसा खास प्रसंग बा परिवार में कोनो लानी वैसे कोनो जन्मदिन बाते या हरदी के रात है और खुशी हवा कोई खातिर एगो गीत मांगे के तो जरूर हमनी के टेलीफोने करे सकबा 402-808-8585 402-808-5 पर। और संगे संगे मेसास विदा करे खोजत हवा तो 5251-7005 सेकंड दे सेकंड हैं स्वसन जी से गुस्सा। तो चला मजेदार गीत के कार्यक्रम संगे जुड़ जाइए और भरपूर मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा। तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा एगो बढ़िया गीत के संगे और है जोन गीत है पहला गीत संभावती दुमन के आवाज़।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार कार्यक्रम और सब कोई है ये इस पर करत हवन आतान करत हवन की कब एगो चुटकुला सुनाव कब तू हसब काहे नहीं हो चुटकुला के तो पिटारा खोलब और एगो ऐसन तड़का मारब के कार्यक्रम में चार चांद लगी पर है कार्यक्रम जस्ती जोली बनी तोहर पसंदीदा गीत के साथ तो चल अगला गीत जोन है चलाओ अब जा वाली देव खेत के उमा लता हरि नारायण खातिन जेकरा भैल बा 20 तारीख के 60 बरिस हा हो 20 तारीख के ऊ बन गल बा एक बढ़िया स्वासों तो बोले जैसे 60 पार कर दे लगता चला।

बहुत बहुत प्यार उमालता ओमलता जी के और हई जोन शुभकामना आवा था उनकर माता जी बगल से कुमारी जी जे दागोचे से साथ देवत हवन और सब हरिनारायण परिवार उनकर पति हवन धनंजय और संगे हवन उनकर बेटी अंजू मीमी बेटा हवन पत्तो संगे हवन नाती पोता और बहिन हवन प्रतिमा सुधा भाई हवन बोबी भौजी हवन कामिनी संगे हवन आयुष और सब परिवार संगे अस्ताबिया परिवार और हरिनारायण परिवार की ओर से तो चल राजीव मगर के आवाज में रखल है गीत तोहरा जन्मदिन के खास अवसर पर चलावब जा और कैसे नहीं चुटकुला सुनावब हो बढ़िया चुटकुला आई सुना ना चाचा हमनी के कौन दिन ऐसा फिल्मी अंदाज में हमनी के बोले हाँ हाउ गीत वास सुन ले हवा हम बोली कौन गीत चाचा अब पुराना गीत जो तुमको हो पसंद उही बात कहेंगे हाँ चाचा सुन ले है बहुत बहुत मजेदार गीत धत बीच में ने बोले कि हम जब बोलत हैं तो निमन से सुनिए जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे हाई गीत पूरा तू सुन ले हवा हम बोले हाँ चाचा सुन ले है बहुत बहुत मशहूर गीत है मुकेश साहब के आवाज में बोले हाई गीत में हाई कविता हाई कविता हाई में कवि जानत हवा कौन ची बोलता हम बोली नहीं चाचा तू समझ गई ले हवा कौन ची बोलता बोले हाँ पूरा निमन से समझ गले हई हाई कवि बोले अपन प्रियतमा से बोलता अपन प्रिय के बोलता कि हे प्रिय तोहर मुँह के लगी तोहर से के बहस करी तू जोन चीज बोला था वह हाइये का हो चाचा तू का कबाड़ा कर देला खाई बहुत जोली संगीत के

जन्मदिन बहुत एक खास दिन रहेला और इस साल में एक एक बार आवेला त चला बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चलता और जरूर तनी तनी हमर संगे पाशियंस रखिए काहे कि ढेर कोई टेलीफोन करता तो हये है तोहर प्यार तोहर विश्वास और बढ़िया गीत के संगे चला है जा पर अगला गीत चलाओ अब जाओ और मजेदार गीत हई सुना नोयन के आवाज में और हई गीत के मांग करत हवन विश्वानी जी। विश्वानी जी बहुत ही मजेदार गीत के मांग करले हवन सुना नोयन के आवाज में और हई गीत उनकर बहिन इंदिरा शारदा सहेली हवन नीला और प्रतिभा शोभा जी संगे हवन गीत आ गजाधर भी साथ देवत हवन तो चला है ये गीत करब जाओ उनकर खातिर और मजेदार कार्यक्रम संगे चचा के का बोलब चचा हमनी के बोले हाँ सब कोई बोला था लाइक वन अभी जोन रास्ता में चलेला बहुत एक खराब रास्ता में बहुत गलत रास्ता में चलेलन से लाइक वन लोग पर हमार कपार में एको बात नहीं आवता हम बोलनी कौन बात चचा बोले चला आजकल के जवान छोकरा छोकरी लोग तो बोले बुरा सीमा में चला था वन गलत सीमा में चला था वन हम कौन कौन प्रॉब्लम खड़ा कर दिले हैं हम बोले का है कौन चीज होल बोले चाची है तो हर चाची बुढ़िया हो गल बा हम बोले का है बोले हम जोन सीमा में चले ला बोले हाँ तू जोन सीमा में चले ला उस सीमा निमन नहीं बा गलत रास्ता पे चलता रहेला बूढ़ा अब का बताओ भाई बुढ़िया के कैसे समझाओ अब शादी के इतना बरिस में भी हमनी के जब देखा तब टोकते रहेला

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और चला अगला गीत जन है दाना जी नाव जी के आवाज में रखल और हाई गीत करब जा मोताबा से माफ करिएगा तयाक से हमनी के साथ देवत हवन है जा पर रफिक मोहित जी और रफिक मोहित जी हमनी के मांग कर ले हवन है अगला गीत के और हाई है दाना जी नाव जी के आवाज में रखल जीवन देवेला तो चला है ये गीत के संगे संगे आगे बढ़ब सा और मजेदार कार्यक्रम के संगे चाची के भी का बोलब जहाँ चाचा हमेशा ऐसन बतवा बोलते रहेला चाची खातिर चाची भी कुछ कमती नहीं हो जाने चाची हमनी के बोले शादी से अगाड़ी सोचले रही हमर शादी हो जाए तो हम अपन बुढ़वा के पैसा से तनी ऐश करब हमर आर्थिक स्थिति तनी अच्छा हो जाए हो पैसा ही पैसा मिलते रही और हम बहुत मजे से अपन जिंदगी काटब पर हम तो बर्बाद हो गई नी हम बोली का होल चाची काहे लोर चुआता तोहर आँख में हम का बोलब हम है बुढ़वा से शादी करके हमार आर्थिक स्थिति तब भूल जइयो हमार मानसिक स्थिति हिला के रख दिलक है बुढ़वा का बोलब

0: भोजपुरी तड़का
1: 9:26 और जितना कोई रात के काम करत हो बस पालतो रख के काहे के अभी ठंडा शुरू हो गल बा और एक बेरा चलावेला जब सच्चे के बहुत ठंडा लगेला पर चला हैजा पर गरमा गरम बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत चला था तोहर खातिर और हैजा नवीन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन नवीन लक्ष्मण जी और संगे हवन रोज बेल से चित्रा जी उनकर प्यारी पत्नी आज उनका मन करा था शिव के महिमा है गीत सुने के लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल और साथ देवत हवन उनकर सब परिवार मेबक से हवन निवेदिता और सच्चिदानंद जी मौडालबिया बगल से ललिता और धनराज चरण जी हमेशा साथ है देवेलन उनकर प्यारी बेटी स्वीटी संगे और न्यू ग्रोव से हवन राज और अमृता उबिलक गौबुआ से हवन रमेश और प्रीति जी तो बस साथ देते रहिए जा और हंसते मुस्कुराते हई सफर में आगे बढ़ब जा कौन दिन जानत हवा चाचा बहुत परेशानी में आगल कौन दिन हरदी में गल रहल अब तो जितना पसीना छूटे के शुरू हो गल तो खाई के बैठ गल रहलन अब खैते खैते खैते खैते जितना ओकर पसीना छूटे के शुरू करनी तो हम त्राका में चल नी हम तो बोलनी चाचा के कौन चे होल चाचा तबियत ठीक नहीं बाका बोला नहीं ठीक है तबियत तो ठीक है तो हम बोले तो का कौन चे होल बोले पेट तो बहुत भर गल बा तो हम बोले तो बस करिए काहे कितना इतना पूरी कितना खात हुआ तू बोले हाँ पर एविताशियों में लिखले रहल 7 बजे से 10 बजे ले जीने के टाइम है यानी रात के खाई के टाइम हाई ऐसे खात है अभी 10 नहीं बजल बा ना हम बोले अरे चाचा 10 बजे ले खाई के मिली हई बोल ले हवन हो 10 बजे ले खाई के नहीं बोल ले बा तोरा का हो चाचा इतना का करियो सब लोग आतान करत हवन इतना बेरा 3 घंटा से तू खात हव का जानी कितना पूरी खा लेलक

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी धड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम और है जहाँ पर नोएल फॉन्स से गीता जी हमने के संगे जुड़ गल हवन गीता बाई संगे हवन उनकर बेटा शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई उनकर बेटी हवन सुधा बाई और नातिन हवन बिजवी बाई दिया बाई और प्यारा मल्हार साथ ही साथ है जहाँ पर सिर्जा मिलफोर साइड से जुड़ गल हवन शांता सुकागी बहुत बहुत प्यार आप सबको के और संगे हवन उनकर पतो किरण बेटा हवन सुदेश गावीन सुजीत और अशोक साथ दिवत हवन उनकर नाती प्रवेश और संजना और महन हरपाल की आवाज में रखल अगला गीत करब जाओ उनकर खातिर और ही हंसते मुस्कुराते बस उसने हंसते रहिए कबो कबो तो लोट पोट हो जाइए हंसते रह ये चाहिला है ये जीवन है तो चलो आगे बढ़ब स चाचा और चाची के झगड़ा में का बोलब चाची कौन दिन खीस में आके चाचा के बोले हमार खातिन दूर दूर से रिश्ता आवत रहलन हमार कपार का जानी तोहर संगे तोहर हमनी के पसंद पड़ गल बोले हाँ दूर दूर के ही तो रिश्ता आई ना काहे के तोहर जोन पास के रिश्तेदार है वो तो सब तोहर लक्षण जाने लन सा
2: Yeah.

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का 9:42 मजेदार गीत के कार्यक्रम और जिले जिले हाई गीत हा उमेश दाऊ के आवाज में रखल बहुते मजेदार गीत। तो चला हंसते मुस्कुराते कार्यक्रम के आगे बढ़ावब स और अगला गीत जो है एगो बहुते प्यार से चलावब जा हई एगो ललना ह और हई गीत के मांग कर ले अवन शोभा जी काथो बोन से बोले हमर घर में एगो लक्ष्मी आल बा। तो चला नाना नानी दादा दादी मौसी मामू सब परिवार के ओर से चलावब जा हई बहुते मजेदार ललना और हई ललना हा लक्ष्मण बी के लक्ष्मी के आवाज में रखल सोहावन एल्बम से लेबल गई। आउरी चाचा के का बोलब चाचा बोले हाँ जानत हवा जमाना बहुते बदल गल बा। हम बोलनी कैसे चाचा बोले पहिला के जमाना में शादी में जूता चोरी करत रहलन। हम बोलनी हाँ चाचा आज भी देखबा चौथाड़ी के दिन में हाउ होला छोकरी लोग जीजा के जोन जूता हल्ले लेवेलन सा आउरी पैसा लेवेलन सा। बोले हाँ पहिला के जमाना और आज के जमाना एगो नींदे देवा थाई जाना था अब जमाना बदल अभी तनी नवा चीज करे के चाहिला। हम बोली कौन चीज करे के चाहिला चाचा बोले हाँ अब जाना था जूता नहीं चोरी करियो जीजा के पोताप चोरी करियो ढेर पैसा मिली। हाँ चाचा आई तो बड़ा बात बोला था वो तो सब बैंक बैलेंस तो हर नाम पे कर दे।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और अभी तनी घड़ी में तनी यानी 10 मिनट में 10 बजी और एक और घंटा रह जाए यानी 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चल अगला गीत जो हा लागी ना ही छूटे राम है गीत बहुत फेमस हो गल बा और है गीत चलावब जा चाची ललिता खातिन जे त्रियोले से साथ देवत हवन और उनका सब कुशल परिवार और आज तक जन्मदिन मनावत हवन विदुर विदुर के बोलब जाए जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई साथ हवन समीक्षा आर्यन उनकर मम्मा पापा और सब कुशल परिवार साथ देवत हवन सुदेवी जी देवीना ज्ञानी छोटी भाई आत्मा राम साथ हवन माला राम जावन भाई हरीश दादी प्रभावती छोटी पुलौजे से और चला है ये गीत करब जा श्यामा जी खातिन श्यामा जी हमनी के साथ है देवत हवन गाँव गोब से उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश उनकर दू गो भगिना और साथ हवन उनकर दू गो प्यारी सखी वीना रामफल और विश्वानी जी जे हमेशा हमनी के संगीत जुड़ल रहेलन और है ये गीत करब जा विजय बंधन खातिन जे हमनी के साथ देवत हवन क्लावेट से ऊ भी बहुत ही खुशी रहेलन है ये गीत सुने के उनकर पत्नी हवन रेखा और तीन गो बहिन चंदनी बिंदु कुमारी और उनका जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन लागी ना ही छूटे राम हई गीत गायत्री जी भी बहुत खुशी रहेलन तो चला हई गीत उनकर खातिन भी करब जा नोएल फॉन्स से और उनकर बेटा हवन अजय मामी हवन कल्याणी मोहन भौजी हवन शकुंतला मोह ताइलोंग से और खास सखी ईटा बाई खाती और चचा हमनी के जब देखा तब ऐसा ऐसा आइडिया देते रहेलन बोले जाना था आजकल सीमा में जितना लोग मिले लनसा ढेर काम में व्यस्त रहेला हम बोली हाँ चचा तो अच्छा बाना काम करे के चाहिला सलमा जाना था व्यस्त कौन सी चीज में रखेलन सा हम बोली नहीं चचा बोला दूसर के वही करे के दूसर कहाँ जाता दूसर के करता कब आवता कब जाता है सब में वही करे लन सब हम तोरा एगो नींदे देवत है आज के बाद जे तोरा कोनो पूछी का चलता तब बोल दिया हाँ कोई के संगे चलता तब देखिए फजीर सांझ उ तो सुतबे नहीं करी तोहर पाछे पाछे जब देख तब उ तक कुआड़ी

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार बढ़िया गीत और बढ़िया संगीत के संगे हैजा पर रंभा राम तोहल के आवाज में रखा लगला गीत जुबे दाल लो तो लेके जाए हाई एगो बढ़िया गीत है और चला हाई गीत के संगे आगे बढ़ब सा और भाई अबू और संगे हवन उनकर बेगमा फेज असलम आया जायान जहीरा और रईस खाला छोटी और आपी और उनकर पत्नी हई दुगो संगे जुड़ गल हवन और भाई आबू खातिन चलाओ अब जा हई अगला गीत चला हाई ये गीत कर अब जा नीता जी खातिन नीता खेदनी हमनी के संगे साथ है देवत हवन सैन जूलिया विलास से और उनकर सब खेदनी परिवार साथ देवत हवन उनकर खास सखी स्वादिका बिलवेदिया से तो बस साथ देते रहिए हैजा पर सुनीता जी भी हमनी के संगे हवन घों गोब बगल से खुशी रहलन लागे नहीं छोटे राम के गीत सुने के पर है तो अभी अभी हम चला देले हैं पत्राका ने करिए तोहर प्यार से नाम जोड़ा था कोंगो माँ से तोहर बहिन विमला और गुडलैंड से हवन बहिन अमृता और घों गोब से वीना जी तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और पप

पु भैया के का बोलब। कौन दिन गर्ल शिवाला मंदिर जा के भगवान से प्रार्थना करे शुरू कर दिलक। बोले हे भगवान, हमर गलती के सजा हमनी के नहीं दिए, हमर सब संगतिया के दिए। बोला ता ऐसे प्रार्थना के करेला हो।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और 10:05 और एक और घंटा रह गल बा रात के 11 बजे ले। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के मनोरंजन करे खातिर हम आप सब कोई के साथ देवत है। तो चलो अगला गीत जो है स्विट्जरलैंड से हमनी के साथ देवत हवन रंभा जी और सुदेश बोईजू के आवाज़ में रखल अगला गीत। और है गीत उनकर सब परिवार खातिन जे मोरिस में हवन और जे विदेश में हवन। तो चला आगे बढ़ब सा और चचा कौन दिन इतना भावुक हो गल हमनी के बोले एक दिन तो सब कोई दुनिया छोड़ के चल जाए और बस नीचे रह जाए ओकर पाप से भरल घड़ा। हम बोले का कौन घड़ा चचा? बोले हाँ जितना पाप कर ले हवा वो घड़ा। हम बोले कौन घड़ा चचा? बोले तोहर पोता फो

0: भोजपुरी तड़का
1: जलसा के रात जारी बाउरी मजेदार रात संगे आप सब कोई के साथ देवत हवन रत्ना और हाइजा पर रोजिल बगल से हमनी के साथ देवत हवन साजिद जी जुड़ गल हवन मजेदार कार्यक्रम के संगे संगे तो चलल लॉबियोस डालब जातनी ढोल बाजे के है गीत के संगे माचे के आवाज में रखल है अगला गीत उ मंगले हवन उनकर खास सखी हवन दीना सरोवर जे हमनी के साथ सुन

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:23 होगल बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हाई जाफू जो साग से संगे हवा नु माजी जितना कोई सुना थवन और हमारे एमबीसी के पूरा टीम खातिर अगला गीत के मांग करा थवन अभेद आनंद बीजन के आवाज में रखल संस्कृति हमारी। अब संस्कृति के तक का बोला चचा बोले जोन पत्नी अपन पति से डिड़ाला ओकरा स्वर्ग के प्राप्ति होला ओकरा स्वर्ग मिलेला त चाची दांत दबा के बोले हाँ और जोन पत्नी अपन पत्नी से नहीं डिड़ाला ओकर खातिर त धरती पे स्वर्ग हा।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: कर संगे 10:30 हुई के बाद और हाईजा पर पीतों से हमनी के साथ देवत हवन अमृता जी गणेश परिवार खातिन चलाओ अब जागला गीत सुनीता नंदकू के आवाज में रखल और संगे साथ हवन सोनिया और परी उनकर दू गो नातीन और बेटा विश्याम और पतो हवन मीनाक्षी और चाची के अभी जानत हवा तनिको ऐतने तनी कमती कमती देरी से शुरू होला ता ओकर मन ओकर जीवा बहुत तिल मिला जाला कौन दिन बोले चाचा के बोले हाय देखा ना हमर ऐतने तो तनी बहुत बहुत धीरे धीरे चलाता ता चाचा बोले हाँ ता जानत हवा तोहर जबान जितना तेजी से चलाता कनेक्टे कर दे अपन जबान से तो हाली हाली चले लगी

चला घूमते घूमते आगे बढ़ब सा और कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल दामाद बाबू और हई गीत करब जा सरिता जी खातिन का थो बोन से उस साथ देवत हवन तो चला सुनब जात दामाद बाबू। और आज तो सामदी के रात है, देर दामाद बाबू गल हवन फ्रेक कौते करे।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम सच्चे के बहुते बुरा जमाना चल आल बा। पर ऐसा बुरा जमाना में जब ऐसा धमाकेदार गीत चलेला तब मूड तनी टकाटक हो जाला और तनाव के दूर भगाए खातिर चला रोज रात के चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और अभी तक रात के 10:40 हो गल बा। चला अगला गीत हाली ले जा। और अगला गीत है रेशम के साड़ी और है गीत अनीता जी फ्री कॉम्फ्लाक से मंगले हवन। तो उनकर सब परिवार खातिर दोस्त खातिर चलावब जा है ये गीत।

चला अगला गीत है, गीत गवाई में, और है बिदमावती संपत की आवाज में रखल गीत, और है गीत के मांग कल हवन मीराबाई दमिया मौदालबिया से, सब दमिया और पादिया परिवार, बेटी और दामाद खातिन और उनकर पति खातिन।

बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया भोजपुरी संगीत और चला इसी के साथ आप फेज हमनी के संगीत जुड़ गल हवन लावेनिय सैंपियर से संतोष महादेव के आवाज में रखल अगला गीत उनकर नाम करब जा और संतोष महादेव के ही आवाज में रखल गरम मरमीट में गरम पानी और हये गीत करब जा माहिन जी खातिन जी हमनी के साथ देवत हवन और खास कर उनकर दीदी मान और सब जगमोहन परिवार खातिन।

ठंडा करा था तो गरम गरम पानी पिया और चला अगला गीत शांति जी खातिन चलाओ अब जाते हैं उसे साथ देवत हवन सब मराठी परिवार दागोजिया बगल से भगीना ओम अप दागोजिया से और सब सुने होला श्रोता खातिन गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल है गीत चला है जा पर सुदेवी जी हमने के संगे हवन वाकवा से चाची ललिता कुशल खातिन जे त्रियोले से साथ देवत हवन भाई आत्मा राम खातिन दीदी सुनीता शोभा हवन मैलेंगा से और सब राम रतन परिवार खातिन है ये गीत

तो चले आज के कार्यक्रम के हईजा पर समाप्त करब जा संतोष महादेव के आवाज में रखल आखिरी गीत अनीता लाल जी खातिन चलाओ अब जा उनकर गोगा गोगा परिवार इतु परिवार और लाल जी परिवार और सैपिया के महादेव परिवार खातिन और खास कर हये गीत रियोले के बिहारी हरि प्रेम जी खातिन चलाओ अब जा। और हये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हई जा पर समाप्त हो जाए। फेरों से भेट आप सा एगो और ही बढ़िया कार्यक्रम संगे। चला।

याद रखिए अभी थोड़ा घड़ी में यानी 11 बजे के बाद तू सुने सकबा पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल और हाई कार्यक्रम सजावल जाए नीतूषा की ओर से। और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। समस्त श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। श्रोताओं, आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आइए इस रात्रि के बेले में एक बार फिर आपका स्वागत सुनहरे पल कार्यक्रम में। आज जिन कलाकार से रूबरू करा रहे हैं वो अपने जमाने के वन ऑफ द मोस्ट, जैसे कहते हैं, बेस्ट कॉमेडियन माने जाते थे। आप थे राजेंद्र नाथ, याद आया आपको? तो चलिए आज की ये रात इनके नाम।

राजेंद्र नाथ बॉलीवुड के उन सितारों में से एक थे जिन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, अलग अंदाज और मस्त पर्सनालिटी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। राजेंद्र नाथ का नाम आते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्होंने हर फिल्म में अपनी कॉमेडी और एक्सप्रेशन से ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। उनका पूरा नाम राजेंद्र नाथ मल्होत्रा था और वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के सबसे मशहूर कॉमिक एक्टर्स में से गिने जाते हैं। उनका जन्म 8 जून 1931 को हुआ था और उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी याद की जाती है।

राजेंद्रनाथ का फिल्मी सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वो असल में एक एजुकेटेड और कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके भाई प्रेमनाथ भी एक बड़े एक्टर थे और उनकी बहन का रिश्ता लेजेंडरी कपूर फैमिली से जुड़ा था। फिल्मी माहौल होने के बावजूद राजेंद्रनाथ ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी हीरो बनने की रेस में खुद को नहीं डाला, बल्कि कॉमेडी और सपोर्टिंग रोल्स में ऐसी जान डाली कि लोग उनके सीन्स का इंतजार करते थे।

1950s और 60s के दौर में राजेंद्र नाथ ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, एन इवनिंग इन पेरिस, दिल दे के देखो, प्यार का मौसम जैसे फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज बहुत ही पसंद किया गया। उनके कैरेक्टर्स अक्सर थोड़े फनी, इनोसेंट और हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंट होते थे, जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देते थे। उनका फेमस पोपटलाल स्टाइल तो इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें उसी नाम से याद करने लगे।

वैसे राजेंद्र नाथ की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल और एनर्जेटिक थी। वो सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग से भी कॉमेडी क्रिएट करते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही मस्ती थी और उनके एक्सप्रेशंस इतने यूनिक होते थे कि छोटा सा सीन भी मेमोरेबल बन जाता था। उस दौर में जब कॉमेडी का स्टाइल ज्यादा लाउड नहीं होता था, राजेंद्र नाथ ने अपने अंदाज में इनोसेंस और चार्म को ऐड किया। इसी वजह से उनकी कॉमेडी भी वल्गर या चीप नहीं लगी, बल्कि फैमिली

फिल्मी करियर में उनकी जोड़ी के कई बड़े एक्टर्स के साथ खूब जमी, चाहे शम्मी कपूर हो, देवानंद हो या बिस्वजीत। राजेंद्र नाथ हर हीरो के साथ परफेक्ट कॉमिक सपोर्ट बनकर उभरे। उनके सीन्स फिल्मों का मूड हल्का और एंटरटेनिंग बना देते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि ऑडियंस हीरो हीरोइंस के सॉन्ग्स के साथ साथ राजेंद्र नाथ के कॉमेडी सीन्स को भी इक्वली एंजॉय करती थी।

राजेंद्रनाथ की एक और खास बात ये थी कि वो स्क्रीन पर कभी आर्टिफिशियल नहीं लगे। उनका अंदाज एक आम आदमी जैसा था जो अपनी फनी हरकतों से सबको हंसा देता था। इसी सिंप्लिसिटी ने उन्हें मैसेस के बीच पॉपुलर बना दिया। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, फनी हेयर स्टाइल्स और क्वर्की मैनरिज्म्स उनकी आइडेंटिटी बन गए थे। बॉलीवुड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा माना जाता है। उस दौर के कॉमेडियंस में उनका नाम जॉनी वॉकर, महमूद और जगदीप जैसे लेजेंड्स के साथ लिया जाता है। राजेंद्रनाथ ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।

जिंदगी के आखिरी सालों में वो फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन उनकी यादें और उनके कॉमिक सीन्स आज भी टीवी और सोशल मीडिया पर लोग बड़े प्यार से देखते हैं। 13 फरवरी 2008 को राजेंद्र नाथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी हंसी और उनका चार्मिंग कॉमिक अंदाज हमेशा बॉलीवुड लवर्स के दिलों में जिंदा रहेगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

You're listening RM Free Radio.